0: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो

ಪಂಚಮ ಪ್ರಭು ಮಾ

0: लिस्ट बनाने बैठेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। बहुत काम उन्होंने किए, देश को सुरक्षित कर दिया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सभी समाज के लिए कोई न कोई योजना बनाकर उनको लाभान्वित करने का काम ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया है।
1: पाटिल जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता रहे, क्योंकि आपके साथ तो उनका एक जो साथ और अपनापन रहा वो सिर्फ अभी 12 साल का नहीं, वो तो कितने समय पुराना हो गया, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। आपने क्या देखा कि इतना ज्यादा हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ कसीदे इन 12 सालों में भी, जब से सरकार बनी अब गिरेगी अब गिरेगी अब गिरेगी यही बात होती रही, और सरकार ने 12 साल कंप्लीट कर लिए।
0: देखिए, हमारा कहते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं, तो इन्होंने कोशिश तो बहुत कर ली, मगर जो उनकी लालसा थी कि सरकार को गिरा देंगे, सरकार बना लेंगे, मुझे लगता है शायद वो लोग जो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी होने की संभावना मुझे दिख नहीं रही है, क्योंकि पूरा देश मोदी साहब के साथ खड़ा है, और इसके लिए खड़ा है कि उनकी जो अपेक्षा थी वो पूर्ण करने वाला एक सक्षम व्यक्तित्व उनमें उसमें दिखता है, और ये मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि वो सपने नहीं दिखाते। अगर आप एक लाइन में देखेंगे तो आज तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने कोई आंदोलन नहीं हुआ कि हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए, गटर चाहिए या कोई भी चीज़ के लिए। उन्होंने डिमांड कोई करे उसके पहले उसकी आवश्यकता को समझ के समय के पहले उसको पूरा कर दिया। ये आज तक कभी कोई मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने अपने शासनकाल में कभी नहीं किया, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया है।
1: मोदी जी को इतना टारगेट क्यों किया जाता है? मतलब जब वो मुख्यमंत्री थे, किसी मुख्यमंत्री की इतनी चर्चा नहीं होती थी जितना विपक्ष उनकी चर्चा करता था, और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी सबसे ज्यादा टारगेट उन्हीं को किया जाता है।
0: देखिए, उनको लगता था कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा खानदानी अधिकार है, ऐसा वे समझते थे। आज एक आम आदमी में से, एक सामान्य आदमी अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँचता है, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अभी किसी से मैं बात कर रहा था कि 12 साल तो रिकॉर्ड हुआ, 12 साल बेमिसाल तो रही है, आज नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है।
1: तो यही तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास ही है जिसने यहां तक उनको पहुंचाया है?
0: नहीं, आत्मविश्वास तो उसकी तो प्राथमिकता है, मगर उसके साथ प्लानिंग है, वो जमीन से जुड़े रहते हैं, लोगों की क्या समस्या है उसको ध्यान देते हैं, उसको कैसे उनको मदद की जाए उसके लिए सोचते हैं, उनकी योजना बनाते हैं। टारगेट अगर महिला के लिए है तो महिला की योजना बनेगी, किसान के लिए तो किसान के लिए योजना बनेगी। हमारे देश में हम कहते हैं कि ये तो खेती प्रधान देश है, मगर आज तक कभी किसानों के लिए योजना नहीं बनी थी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पहली बार बनाई। यानी ऐसे कई आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे कि जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, ऐसी योजना बनाकर उन्होंने मदद की है।
1: पाटिल जी, अब हर घर जल और नल, ये योजना, मतलब ये विडंबना ही है इस देश की कि आजादी के बाद इतनी सारी चीजों पर बात होता था लेकिन तब भी महिलाओं को सिर पर घड़ा रखकर लाना पड़ता था। मैंने कई गांव में जाकर देखा उत्तर प्रदेश के कि महिलाएं इतना खुश होती थी। ये जो विजन है, और क्योंकि आपके मंत्रालय से संबंधित है, मैं थोड़ा ये समझना चाहूंगी कि ये विजन अब तक क्यों नहीं आ पाया किसी के दिमाग में, और अब इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है?
0: किसी को गरीब लोगों के बारे में सोचने का समय नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा है कि विकसित भारत 2047 एक टारगेट दिया है। हमारे यहाँ देश में घरों में टॉयलेट नहीं था, महिलाओं को सूर्यास्त के बाद में और सूर्यास्त के पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, अंधेरी ही रात में उनके ऊपर कई बार असॉल्ट भी हुए। कई लोगों को ये जो टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत कैसे बन सकता है? अगर घरों में टॉयलेट नहीं है तो विकसित भारत हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ विकसित भारत के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। 60 करोड़ लोगों ने अपनी आदत बदल दी, 9 करोड़ महिला रोज पानी के लिए जाती थी, उसी तरह यहाँ भी टॉयलेट के लिए बाहर जाती थी। तो जिस तरह से टॉयलेट का काम किया उसी तरह पानी का भी काम किया, हर घर में नल से जल, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। आज तक 70 साल में कांग्रेस के समय में कभी भी किसी के घर में पानी देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की। वो एक मोहल्ले में एक हैंडपम्प डाल देते थे तो उनको लगता था हमने पानी की व्यवस्था कर दी है। यहाँ तो हर घर में और वो भी हर पर हेड 55 लीटर पानी उसको मिले, अच्छा पानी, क्वालिटी का पानी मिले, पूरी क्वांटिटी में मिले, इसकी व्यवस्था करने की बात थी। 16 करोड़ घरों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पानी पहुंचा दिया। 3 करोड़ घरों में अभी जो पानी पहुंचाना है उसकी डेट भी तय कर ली कि दिसंबर 28 तक ये भी पूरा काम पूरा करना है। तो इससे हुआ क्या, जो 9 करोड़ महिला पानी लेने के लिए जाती थी, बोझ उठा के आती थी, उसमें मुक्ति मिली। 5.5 करोड़ घंटे उनके रोज पानी लाने जाने में उनके जाते थे, आज वो अपने फैमिली के दे सकते हैं, उसका आर्थिक उपार्जन में उसको खर्च कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात हुई। WHO का रिपोर्ट कहता है कि इसके कारण 3 लाख बच्चों की जान बची है। जो पानी के कारण, जो गंदा पानी आता था उसके कारण जो बीमारी आती थी, उसके लिए जो लोग अपना पैसा खर्च करते थे, वो 8.4 लाख करोड़ रुपया वो लोगों का बचा। तो यानी एक योजना उसके पीछे कितने लोगों का फायदा हुआ। महिलाओं को पानी की मुश्किल दूर हो गई, टॉयलेट बनाने से महिलाओं की सुरक्षा और प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो एक योजना के साथ महिलाओं को, युवाओं को, सबके ध्यान में रखकर ये योजना माननीय मोदी साहब भी बना सकते हैं और इम्प्लीमेंट भी वही कर सकते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो काम मोदी साहब ने किया है।
1: मुझे याद है पाटिल जी, लास्ट टाइम आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने वो जल संचय के बारे में बताया था। आप दिल्ली आए थे और आप बता रहे थे कि पीएम ने किस तरह से कहा कि ये जल संचय वाला जो प्रोजेक्ट है इसको कैसे हमें पहुंचाना है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है।
0: देखिए, जल संचय से जन भागीदारी से जन आंदोलन में परिवर्तित करना चाहिए और कर्मभूमि से मातृभूमि में जल संचय के लिए सहयोग करना चाहिए। ये दो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 6 सितंबर 2024 को कही थी, एक वर्चुअल मीटिंग में कही थी। हमारा पहला टारगेट था 31 मई 2025 तक 10 लाख स्ट्रक्चर बनाने का टारगेट था। हमने अचीव किया, 27,50,000 पर हम पहुँच गए। हमने नया टारगेट लिया 31 मई 2026 तक 1 करोड़ तक पहुंचने का टारगेट लिया और हम 1,55,00,000 तक पहुंच गए। इसमें मनरेगा में से करीब 10 लाख स्ट्रक्चर बने, बाकी सभी जो स्ट्रक्चर बने वो छोटे से लेके बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बने वो लोगों ने अपने पैसों से बनाए। और इसमें छोटे छोटे भी है तो बड़े भी है। एक कच्छ में एक एंकर स्विच वाला जो है, उनका नाम है दामजी भाई एंकर, शायद वो अभी नहीं रहे, उनकी फैमिली है, वो बॉम्बे रहते हैं मगर वो लोग कच्छ के हैं। कच्छ में एक भूखी नदी है, वो भूखी नदी में पानी नहीं है, उसको सफाई करनी थी, उसको डिसिल्टिंग करना था। उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके लिए खर्च किए। एक व्यक्ति अपने गांव में नदी के लिए इतना पैसा खर्च सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आह्वान के बाद ही हो सकता है। एक ऐसा आदमी है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हमारे देश तकलीफ में है, हम एक टाइम का खाना छोड़ दो, लोगों ने खाना छोड़ दिया। मोदी साहब ने कोरोना के समय में कहा कि एक भी आदमी भूखा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस देखिए, कितना पॉजिटिव सोच है। और सिर्फ सोच नहीं, उसको अमलवारी भी करवाने की ताकत रखते हैं। तो ये जो उनका काम करने की जो सिस्टम है वो आपको देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था, उन्होंने कहा था कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए, वो तो नहीं कर पाए, मगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नर्मदा से साबरमती और साबरमती से कच्छ तक जितनी नदियां, तालाब, सरोवर आए वो सबको पानी से भर दिया। और पहला रिवर लिंकिंग था, केन बेतवा दूसरा रहा, मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में 44,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 2030 में वो पूरा हो जाएगा। उन्होंने PKC की एक नया योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू की, वो भी शायद 1,00,000 करोड़ से बड़ी योजना है। राजस्थान की जो पानी की किल्लत है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से मोदी साहब काम कर रहे हैं तो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। और जो जल संचय की जो विशेषता ये है कि हम डैम बनाते हैं, डैम से पानी कैनाल में ले जाते हैं, तो कैनाल जहाँ तक पहुँचती है उसके अगल बगल के किसानों को फायदा होता है, मगर जो दूर दरार है, गांव दूर है, खेत दूर है, उसको पानी नहीं मिलता। जल संचय से हर गांव में जो बह के जाने वाला पानी खड्डे में जाता है, खड्डे से नाले में जाता है, नाले से नदी में जाता है, नदी से दरिया में चला जाता है। हमको उनको वहीं रोक देते हैं, खड्डे में ही बोर करके 100 फुट का उसमें पानी उतार देते हैं, खेत में भी 4x6 का खड्डा करके उसमें पत्थर डाल देते हैं। एक बारिश में 4 से 5 लाख लीटर पानी वो खेत में नीचे जमीन में उतर जाता है। इसके कारण जो किसानों के कुएं हैं, बोर है, उसमें पानी ऊपर आ गया, जल स्तर बढ़ गया, जल की क्वालिटी सुधर गई। गांव में भी ऐसा हुआ, गांव के भी जो कुएं थे या बोर थे उसमें भी पानी का स्तर बढ़ गया, क्वालिटी सुधर गई। तो ये जल संचय अपने आप में बहुत बड़ा काम इसके लिए कि हम हर जगह पर डैम बनाकर पानी नहीं ले जाएंगे, तो ये जल संचय की वजह से हमको वहाँ की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी।
1: आपको लगता है ये जो इसी तरह के विषय हैं, क्योंकि पुरुष तो बाहर नौकरी करने चले जाते थे या काम करने के लिए, महिलाओं को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी, चाहे वो टॉयलेट वाली बात हो या अगर घर में पानी नहीं आ रहा है, नल नहीं है, यही जो एक विमेन वोट जो बना कि पहले जो महिलाएं BJP के खिलाफ भी वोट करती थी, सारी की सारी महिलाएं अब मोदी मोदी करने लगी हैं। आपको लगता है यही वो वजह है?
0: एक वजह नहीं है, महिलाओं देखती है कि पहला आपको बताऊं, मैं गुजरात में जब आए थे उस टाइम में पावर नहीं आता था, महिलाओं को रसोई जल्दी बनानी पड़ती थी, जल्दी खाना खा के जल्दी बर्तन करके उनको वो बैठ जाती थी, और फिर उसके पास बहुत टाइम था और एंटरटेनमेंट के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। मोदी साहब ने आकर एक सिंगल फेज अलग से लिया, पूरे गुजरात में सभी घरों में कभी लाइट नहीं गई, तो उनकी व्यवस्था हो गई, तो बहनों को जल्दी रसोई करने की आवश्यकता नहीं, जल्दी खाना खा के फिर फ्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था।

0: देर तक बैठ सकती थी, वो टीवी देख सकती थी, उसको एंटरटेनमेंट के लिए एक साधन बन गया। तो इसके लिए महिलाओं को लगा कि नहीं, हमारे लिए चिंता की है, तो उनके जीवन में एक प्रकाश आ गया, ऐसा उनको लगा। आज देश में भी देखेंगे कि देश में अगर कोई भी पुरुष बाहर जाता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी, सबको लगता है कि सुरक्षित आ जाए घर में। ये सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को खत्म कर दिया, और जिस तरह से आज महिलाओं को उन्होंने प्रमोट किया, हर सेक्टर में प्रमोट किया, तो उसकी वजह से उनके मन में जो इच्छा थी, जो टैलेंटेड थी, मगर उनको मौका नहीं मिलता था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने महिलाओं को भी मौका दिया। सबसे पहले गुजरात में उन्होंने इलेक्शनों में, तो वहाँ जिला पंचायत, महानगर पालिका, नगर पालिका, तालुका पंचायत में 50% महिलाओं के सीट रिजर्व कर दी, वो पहला इंसिडेंस था। बाद में आप यहाँ देखिए कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के लिए भी 33% महिलाओं की सीट रिजर्व कर दी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं को एक विश्वास आता है कि कोई हमारे लिए काम करता है, कोई हमारी चिंता करती है। आज ये सभी महिलाओं मोदी साहब की चिंता करती है कि उसके विरोधी जो है उनको ठीक रखना, उनको सत्ता से दूर रखना, इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है।
1: आप गुजरात के सीएम के तौर पर मोदी जी और अब पीएम के तौर पर दोनों देखा आपने, कुछ अंतर आया है क्या पहले वाले मोदी जी में और अब वाले मोदी जी में?
0: मैं मानता हूँ कि पहले भी मोदी साहब सामान्य जन के लिए काम करते थे, आज भी वही काम करते हैं। वहाँ उनकी मर्यादा थी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री है, इसके लिए उनको एक काम भी उनका बड़ा है, तरीका भी थोड़ा बदल गया है। और मगर आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे भी जो काम करते थे उसको भी उन्होंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, और नई सोच के साथ, नई ताकत के साथ उन्होंने यहाँ पर भी कई योजना बनाई। हम कहेंगे कि अवकाश से लेकर पाताल तक हर जगह पे उन्होंने काम किया। हम चंद्र पर पहुँच गए, जो कभी हमारे लिए सपना था, तो उन्होंने कर दिया। आपको सुरक्षित करने के लिए जो फ्लाइट आई उसके अंदर भी महिलाओं को उन्होंने उनकी कमान सौंप दी। उसी तरह उन्होंने जमीन के ऊपर भी जो डेवलपमेंट के काम करने थे वो भी उन्होंने किए, सबमरीन भी नई नई बनाई, और जल को भी सुरक्षित करने का काम, यानी जल सीमा को भी सुरक्षित करने का काम भी उन्होंने कर दिया। आज भारत की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदल गया है। आज भारत के लोग बाहर जाते हैं तो उनको सम्मान मिलता है, पहले तो उनकी कोई दरकार भी नहीं करता था, वो अपमान करते थे, आज वो बात नहीं रही। ये जो जाने वाले लोग थे पहले भी और अभी भी, उनको ये बात समझती है, वो पूरी देखते भी है।
1: गुजरात का कई सारे वहाँ के किस्से जो हैं मैंने किताबों में पढ़े, और कई बार हमने जो मोदी जी के बचपन के दोस्त वगैरह उनके इंटरव्यूज देखे, कि मोदी जी एक तो हर किसी को याद रखते हैं नाम से, और दूसरा हर बात की बारीकी में, डिटेल में जाते हैं, काम के मामले में भी और वैसे भी। तो जब आप वहां पर थे गुजरात में, कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर उनको कुछ गलत बता दिया हो तो वो एकदम पकड़ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे तथ्य गलत बोला गया है?
0: वो तो पूरा देश जानता है कि बहुत शार्प है, उनको कोई गलत बता के उन्हें कोई ठग जाए ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। और उनका जो डिटेलिंग करने का काम है उसके अंदर कोई भी आदमी उनको कोई गलत कुछ बता भी नहीं सकता। और वो जो सुनते सबकी है और करते हैं अपने मन की, क्योंकि उनको अपने आप में भरोसा है, उनका प्लानिंग होता है, बहुत माइक्रो लेवल पे वो प्लानिंग करते हैं और परिणाम लाके देते हैं। गुजरात में पहली बार महानगर पालिका अगर किसी ने जीती थी, अहमदाबाद महानगर पालिका, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जीती थी। तो ये वहीं से उनकी जो शुरुआत हुई थी, वहीं से वो जीत के लिए ही उनका जन्म है, जीतते ही जाते हैं, उन्होंने कभी हार का मुंह नहीं देखा और ना कभी देखेंगे।
1: आपने कोई एक चीज जो उनसे सबसे ज्यादा सीखी हो, जिसको आपने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट आपने कर रखा हो? बिल्कुल,
0: एक बार 26 जनवरी का दिन था, आवाडांग में उनका कार्यक्रम था, और वो जो साफा लगाते हैं तो ये साफा मुझे लेके जाना था, और मैं 2 मिनट लेट पहुंचा, सिर्फ 2 मिनट। उन्होंने किसी से बंधवाना शुरू किया, जैसे उन्होंने अभी तो वो रखा ही था, हाथ में ही पकड़ा था, और मैं पहुंच गया था। मुझे उन्होंने कुछ बोला नहीं, मुझे ऐसे लगा कि सीआर ये कैसे चलेगा, मैंने कहा सॉरी सर। उन्होंने और कुछ भी नहीं बोला, मुझे आज तक भी वो 2 शब्द उनके, वो मुझे उसके घाव आज भी दिखते हैं। तो ये उनसे ये सीखा है कि समय पे ही काम होना चाहिए, हमें देर करने की कोई आदत ही नहीं होनी चाहिए। मेरे ऑफिस में भी मेरे हमारी मीटिंग जो होती है, मैं डॉट टाइम शुरू करता हूँ, समय पर पूरी करना, जो भी काम है उसको हमें आज करना है तो कल तक छोड़ना ही नहीं, आज ही पूरा करना। मेरे पास कोई भी फाइल आती है मैं सेम डे उसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये सब आदत है जो मोदी साहब ने सिखाई है कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और हम सामान्य लोगों को अवेलेबल होने चाहिए। उनसे सीखे हम, जो यहाँ कोई भी आके मिल सकता है, हमारे गेट पे किसी को रोकते नहीं है, किसी का नाम तक नहीं पूछते हैं, तो उसको लगता है कि मैं कोई प्रधान के यहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता के यहाँ जा रहा हूँ। तो ये सब बातें उनसे सीखी है कि लगाव लोगों से बढ़ना चाहिए, और उन्हीं के आधार पर जो टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, अभी मैंने प्रधानमंत्री मोदी साहब से सीखी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पॉलिटिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी उनसे ही सीखी है, उनका ही अनुकरण करके हम आगे बढ़ते हैं।
1: आपके इस एग्जाम्पल से तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने दो शब्दों में अपनी बात भी रख दी और आपको आज तक वो बात याद भी है। इसका मतलब तो वो बहुत सरल तरीके से अपनी बात बता देते हैं, लेकिन छवि उनकी ऐसी बनाई जाती है कि एकदम बहुत दहशत रहती है उनको देख करके।
0: नहीं, वो तो देखो अपने काम से मतलब रखते हैं। मैं एक इंसिडेंस आपको और कहना चाहूंगा। 2014 का लोकसभा का इलेक्शन वो लड़े, काउंटिंग में करीब 10-15 दिन का टाइम था। एक बार उन्होंने वहाँ के सभी सेक्रेटरी और जो गांधीनगर में है सभी आईएएस अधिकारी और सभी एमपी सबको स्पाउस के साथ बुलाया था हम, और वहाँ उन्होंने उनका कॉन्फिडेंट लेवल आपको उसमें दिखेगा कि उन्होंने कहा कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ। काउंटिंग के पहले 15 दिन पहले कोई व्यक्ति जो कभी दिल्ली नहीं गया वो कहता है कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, और मैंने इसके लिए बुलाया कि मेरे बारे में बहुत सी चर्चाएं होती है, बहुत सी अफवाहें चलती है। कोई कहता है कि मोदी जी ने किसी अधिकारी को गेट आउट कह दिया, किसी को फाइल फेंक दी, गुस्सा कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मैं आदमी हूँ, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, और मैंने आज तक कभी किसी भी अधिकारी को गेट आउट नहीं कहा, मैंने कोई भी अधिकारी के ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया, मैंने कोई भी फाइल कभी अधिकारी को फेंकी नहीं। मुझे अगर गुस्सा आया होगा तो मैंने वो फाइल लेकर साइड में रख दी होगी, इससे ज्यादा मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। आपके मन में होगा यहाँ सब अधिकारी की पत्नी बैठी है, उनको होगा कि मेरे पति को भी मोदी साहब ने डांटा होगा, मगर वो बता नहीं रहे होंगे घर में। पर मैं आपको कहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ उसके पहले मुझे एक क्लियर करना था, इसके लिए बताया। मगर वो क्लियर तो किया उन्होंने, मगर जो आत्मविश्वास प्रकट हुआ, कॉन्फिडेंट लेवल जो प्रकट हुआ कि मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उनका काम करने का तरीका है।
1: ये तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया। लेकिन पाटिल जी, इन 12 सालों में आपने, चलिए हर घर नल और पानी वाला तो आप ही का डिपार्टमेंट है, लेकिन इस डिपार्टमेंट के अलावा ऐसा कौन सा माइलस्टोन आपको फैसला लगता है या सरकार की कोई नीति लगती है जो हमेशा मतलब याद रखी जाएगी?
0: वो एक चीज नहीं है, मैंने कहा ना फिर से महिलाओं के लिए हम बात करेंगे, तो वो रोटी जो रसोई करती थी तो लकड़े पर करती थी, धूम्र से मुक्त कर दिया मोदी साहब ने महिलाओं को, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा अगर घर में है तो उसका भी फेफड़ा बचपन से ही वो वीक हो जाता था, तो सिर्फ महिलाओं के लिए बच्चों के लिए भी उसके अंदर काम हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आपने देखा होगा आयुष्मान में लोग बीमार पड़ते थे, घर में नहीं बताते थे, उनको लगता था कि बेटे को पता चलेगा, खर्च होगा, बेटे के पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेगा, मकान बेचेगा, खेत बेचेगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कर्जदार बने, और वो जो भी दर्द है उसको छुपा लेते थे। बहुत तकलीफ होती थी तो बाहर जाके खेत में जाकर रो लेते थे और घर में नहीं बताते थे, आंसू लेके नहीं आते थे। मोदी साहब ने कहा कि मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए 5 लाख रुपए तक का जो ट्रीटमेंट है उसका पैसा मोदी साहब ये योजना से कर रहे हैं। ये भी आपको दिखेगा कि ये भी अपने अपने बहुत बड़ी योजना ये भी बनी है। किसानों के लिए कभी कोई योजना नहीं बनी, उनके लिए भी 6,000 रुपया साल में 3 बार डाल देते हैं, बिल्कुल समय पर देते हैं। और युवाओं के लिए भी उन्होंने कितनी कोशिश की, पहले तो नौकरी लगाना है तो आपको किसी की सिफारिश चाहिए, पैसा चाहिए, जमीन दे देनी पड़ती थी। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर उसके केस भी चल रहे हैं। यहाँ पारदर्शिता से जो वो अभी उन्होंने 51,000 बच्चों को अभी रोजगारी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया, एक सेकंड में पूरे देश में 50,000 लोगों का हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। ना उसको कोई सिफारिश करनी पड़ी, ना किसी को कोई पैसा देना पड़ा, ना जमीन देनी पड़ी। तो उससे युवाओं को भी विश्वास हो गया कि यह आदमी युवाओं के लिए भी कुछ करना चाहता है, और वो युवा कोई निराश ना हो जाए, उसके पहले उसको कोई चांस मिल जाए, तो उसके लिए भी उनकी कोशिश रहती है।
1: ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है हमेशा कि मतलब देश में आर्थिक सुनामी आ जाएगी, अर्थव्यवस्था डिरेल हो चुकी है, तमाम चीजें ऐसी बातें बताने की कोशिश होती है, उस नैरेटिव को कैसे देखते हो आप?
0: जब पूरे विश्व में सभी जगह युद्ध चल रहा है, एकमात्र हमारा देश है वो भी माननीय मोदी साहब की जो पॉलिटिकल जो सेंस है उनकी, उनकी जो विदेश नीति है उसके कारण हम बिल्कुल शांति से रह रहे हैं। पूरी दुनिया में युद्ध है, एक जगह नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, मगर हम बिल्कुल शांति से रहे, हमें कोई भी युद्ध का डर नहीं लग रहा है, हम न्यूज तक नहीं देखना चाहते कि युद्ध में क्या हो रहा है। तो ये जो पोजीशन परिस्थिति जो आई है वो तो मोदी साहब की वजह से है। तो ये जो ग्रोथ है ऐसे समय में, कोरोना के समय में, कोरोना के बाद में, युद्ध के समय में, इतना GDP जो आया है वो खुद ही रिकॉर्ड है। मनमोहन जी तो अर्थशास्त्री थे, उस टाइम तो हम 11वें नंबर पे थे, हमारी आर्थिक व्यवस्था 11वें नंबर पे थे, मोदी साहब ने 5वें पर लाई और 3रे पर लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये भी उनको कहकर लाए हैं, हमने कहा कि हमने कुछ किया और हो गया, ऐसा नहीं है, पहले से उन्हें कह दिया कि मैं ये नंबर पे देश के अर्थतंत्र को लेके आऊंगा। तो ये व्यवस्था करना तो हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, महिलाओं का

0: आपको धन्यवाद दिया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीआर पाटिल जी, क्योंकि ये जो बातें आपने बताई इसीलिए बहुत ज्यादा अहम ये बातचीत थी कि मोदी जी के साथ ये अपनापन और जो पल आपने बिताए हैं, बहुत ही कम लीडर्स ऐसे हैं जो उनके साथ इस तरह से बारीकी और करीबी के साथ में रहे, इसलिए ये बातें शायद कोई और नहीं बता पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पराशर। अब सुनिए मोबिक्विक के संस्थापक बिपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत।
3: नमस्कार। 26 मई 2014, यही वो तारीख थी जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपने, उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ भारत की सत्ता संभाली थी। तब से लेकर अब तक 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में जनता ने दो बार आशीर्वाद मोदी सरकार को दिया है। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। इन 12 साल में हमने कई नीतियां देखी, जमीन पर उतरती हुई नीतियां देखी, सभी के फोकस में, सभी के केंद्र में आम आदमी था और एक ऐसी ही नीति थी डिजिटल इंडिया को लेकर। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होने वाला है, नीतियों में क्या कुछ बदलाव संभव है, क्या कुछ बदलाव की उम्मीद करते हैं। और इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोबिक्विक के फाउंडर और सीईओ विपिन प्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है विपिन आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अभी के समय में अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें और 12 वर्षों में अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखें तो आपने जिस तरीके से आपका सफर रहा है उसमें आप अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे करते हैं?
4: पहले तो शिशिर जी धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में इन्वाइट करने के लिए। और मोबिक्विक जो मैंने कंपनी स्टार्ट की थी करीब 17 साल पहले, उसमें से 12 साल मोदी सरकार के अंदर ये कंपनी खड़ी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सन 2014 में ही मोबिक्विक को सबसे पहली फंडिंग मिली थी और उसके बाद मोबिक्विक ने करीब करीब 2000 करोड़ रुपए पिछले 12 साल में डिफरेंट तरह के इन्वेस्टर से उठाए और बिजनेस बनाया। तब हमारे पास आई थिंक 30 लाख या 40 लाख यूजर थे। आज की डेट में मोबिक्विक प्लेटफॉर्म 18 करोड़ यूजर यूज करते हैं पूरे भारत में। तो इन नंबरों से ही आपको समझ आ जाएगा, इन आंकड़ों से, कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इकोनॉमी है वो किस हद तक उसकी ग्रोथ हुई है। मुझे याद है 12 साल 15 साल पहले जब आप मोबाइल फोन पे कॉल करते थे तो सोचना पड़ता था कि कितने की कॉल पड़ेगी, मैसेज करना है तो कितना पैसा लगेगा। आज के समय में आप नहीं सोचते। आज के समय में अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक नहीं भागते, आप फटाक से अपना फोन निकालते हैं और UPI से डिजिटल पेमेंट करते हैं। करीब करीब 4 में से 1 भारतीय या 3 में से 1 भारतीय ऑलरेडी डिजिटल पेमेंट्स के साथ जुड़ चुका है, जिसमें मोबिक्विक ने एक बहुत बड़ा सफर और बहुत बड़ा योगदान दिया है। बट इन सब के पीछे जो नीतियां हैं जिनसे ये पॉसिबल हुआ है उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पहले डिजिटल आइडेंटिटी नहीं होती थी, हम राशन कार्ड लेके घूमते थे। अब आधार जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, पैन जो डिजिटल आइडेंटिटी बनी है, मोबाइल फोन के रेट सस्ते हुए हैं, फिर जो UPI का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, तो उससे मोबिक्विक की बिजनेस को बनाने में बहुत बहुत बड़ा हाथ है। उसके बिना मुझे लगता नहीं है ये संभव भी था।
3: तो मतलब 17 साल के आपके सफर में, 12 साल मोदी सरकार के, और इन 12 साल में जो डिजिटल इंडिया का सफर रहा उसमें काफी हद तक आपके अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिली। और आप ही के नहीं, ऐसे कई ऐसे पेमेंट सिस्टम, पेमेंट एग्रीगेटर की हम लोग बात करें वो सिस्टम में आए, उन्होंने काम को आगे बढ़ाया। अगर मैं 3 प्रमुख नीतियों की बात करूं 2014 से लेकर के 2026 के बीच में, वैसी कौन सी 3 बड़ी नीतियां थी जिन्होंने आपके कारोबार को, कहने का मतलब कि डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ाने में मदद की?
4: तो इनमें काफी नीतियां थी, बट सबसे पहला मैं ये मानूंगा कि कोई भी सरकार जब किसी बिजनेस के साथ काम करती है तो हम जब बिजनेस सरकार से बात करते हैं तो उनकी नीतियों को और उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करते हैं। तो 12 साल पहले ही हमें समझ आ गया था कि ये सरकार डिजिटल इंडिया की एक पॉलिसी लेके आएगी और उसको हर एक लेवल पे इम्प्लीमेंट करेगी। एंड आई थिंक वो जो डिजिटल इंडिया की जो एक मुहिम बनी जिसके अंतर्गत ये सब हुआ कि आधार, पैन, जनधन अकाउंट्स खुले इतने सारे, अभी हर पर्सन के पास

0: हर इंसान के पास अकाउंट है, तब नहीं थे। तो ये जो नीतियां थी डिजिटल इंडिया के अंडर, जो एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया इंडिया में, डिजिटल DPI कहते हैं इसे, इसका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब तक एक इंसान अपनी डिजिटल में पहचान नहीं बना सकता, तब तक वो डिजिटल पेमेंट भी नहीं कर सकता, और अब डिजिटल लोन भी नहीं ले सकता, डिजिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। इन सबको जो साथ में जोड़ा गया है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि इवन बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज में भी आज तक अचीव नहीं हुए।
1: एक जो बड़ी पहल जिसको हम कहें जैम ट्रिनिटी की, हम लोग बात करें, आपने अभी जनधन की बात की थी, आपने आधार की बात की, आपने मोबाइल का बात की है, और 2015 से हमने देखा कि जैम ट्रिनिटी किस तरीके से समाज के आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक जो भी सरकार की योजना है उसका फायदा पहुंचाने में मदद की। इस जैम ट्रिनिटी को आप कैसे देखते, क्योंकि एक समय जैसा आपने खुद कहा कि एक मोबाइल फोन को लेकर के हम एक बार सोचते जरूर थे, और हमें वो भी दौर याद है जो आज से अगर मैं 20-25 साल पहले जाऊं, जब 16 रुपए का एक कॉल होता था तो लोग कहते थे मिस कॉल मार देना। वो मिस कॉल मार देना आज भी हमारे मोबाइल कल्चर का एक पार्ट है। ये अलग बात है कि अब हम उस मोबाइल पे 16 रुपए की चिंता नहीं करते, बल्कि मिस कॉल मार देना एक बात कहते हैं। ये मिस कॉल मार देने से जनधन, आधार, मोबाइल, ये ट्रिनिटी को आप किस तरीके से देखते हैं, समाज के आखिरी पायदान पर व्यक्ति जो है उस तक सामाजिक योजनाओं का फायदा पहुंचाने में?
0: इसमें सबसे पहले जो मोबाइल की मैंने बात की कि जब इंडिया में 4G आया या 5G आया और नए ऑपरेटर्स आए, जैसे जियो आया या एयरटेल ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, इसके ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी का पुश था सरकार की तरफ से कि आपको, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है, तो सबसे पहले हर बंदे के पास, हर पर्सन के पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, और उसके अंदर डेटा और कॉलिंग ऑलमोस्ट फ्री होनी चाहिए, और वो हुआ, आप हमने पिछले 10 सालों में देखा है। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। इंडिया आज की डेट में दुनिया के आई थिंक नंबर 1 या नंबर 2 डेटा कंज्यूमिंग कंट्रीज में है। हम डेटा यूज करने से पहले सोचते भी नहीं है, जबकि यही 10 साल पहले कोई भी ऐप डाउनलोड करने से पहले या कोई वीडियो देखने से पहले आप सोचते थे कि इस पे कितना GB डेटा, MB डेटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बिकॉज इस चीज को हर दर्जे के लोगों तक पहुंचाना, वही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा है आधार। तो आधार के ऊपर तो ऐसा है कि डिजिटल आइडेंटिटी जब तक नहीं होगी तब तक आपका अकाउंट भी नहीं
1: खुल नहीं
0: खुलता,
1: सकते।
0: तो ये उसको पूरा डिजिटाइज करना और उसके प्रोसेसेस को इस तरह से स्ट्रीमलाइन करना कि कोई भी पूरे देश में, उस दिन मुझे अपने आधार में कुछ चेंज कराना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैं एक नियर बाय एक बैंक में एनरोलमेंट सेंटर में गया और मैंने वहां पे अपना ऑथेंटिकेशन किया और मुझे कुछ एड्रेस चेंज कराना था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया। इस तरह की सुविधा हमारे देश में नेशनल लेवल आज तक कभी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिससे आप ये देख सकते हो कि ये आइडेंटिटी है इस पर्सन की और इस आइडेंटिटी के ऊपर आप इसका अकाउंट खोल सकते हो। हमारा देश अभी भी गांव में बसा है, हालांकि शहरों ने काफी तरक्की की है, बट करीब 30-35% आज भी गांव में है और सेमी अर्बन है। हर इंसान बैंक में जाके कंफर्टेबल नहीं रहता था, और बैंक भी जो होते थे, जो इंस्टीट्यूशंस होते थे, वो हर एक का अकाउंट खोलने में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। ये सच्चाई है, क्योंकि अगर किसी की तनख्वाह कम है या उसके अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं तो उसका अकाउंट खोलना मतलब आपको एक लॉस उठाना है। तो उसके ऊपर जो जनधन अकाउंट्स की पॉलिसी बनी, जिसके ऊपर हमारे बैंकों ने काम किया और सबके अकाउंट खुले, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आज की डेट में मेरा ये मानना है कि 90% लोगों के पास बैंक अकाउंट है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में आप छोटा बच्चा देखो, आप एक बूढ़ा देखो, कोई रिटायर्ड पर्सन देखो, आप गांव में चले जाओ, आप किसी को भी डिजिटल पेमेंट इसीलिए कर पाते हो क्योंकि उनके पास बैंक अकाउंट।
1: तो एक डिजिटल सिस्टम का एक ये भी फायदा हमें इस स्वरूप में देखें कि जब पहले कहा जाता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता था और 15 पैसे लोगों तक पहुंचते थे, आज हम बात करते हैं कि लाभार्थी का जो भी बेनिफिशियरी है उसकी पहचान साबित हो जाती है डिजिटल माध्यम से, और डिजिटल माध्यम से ही लेन देन हो पाता है। ये जो हमारे पास रिसोर्सेस का जो एक बेहतर इस्तेमाल है, ये डिजिटल माध्यम से और भी बेहतर तरीके से हो पाया, इसका फायदा आप किस तरीके से देखते हैं? गवर्नमेंट की बजटिंग की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, फिस्कल प्लानिंग की बात करें, उसमें उसका योगदान किस तरीके से
0: देखिए, डिजिटल का सब

0: सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल बिल्कुल साफ होता है और डिजिटल में पेपर का यूज मिनिमम होता है और इसीलिए डिजिटल में लीकेज बहुत कम होता है। वरना हमारे देश में जहाँ पे इतने गरीब लोग हैं, सरकार हमेशा से उन पे पैसा खर्च करना चाहती थी और खर्चती है भी, और 12 साल पहले भी खर्चने की कोशिश करती थी, बट वो उन तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि वो इतने स्टेप से जाता था, इतनी लेयर से जाता था कि वो, जैसा कि आप बता रहे हैं, 1 रुपए की जगह 15 पैसे। बट अब जब सरकार ने डीबीटी बनाया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन अकाउंट सबके पास है, तो आपको किसी को गैस की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको बिजली की सुविधा के लिए पैसे देने हैं, आपको खाने की सब्सिडी देनी है, किसी भी तरह की सब्सिडी देनी है, आपके पास उस इंसान की पूरी डिटेल्स हैं, उनके बैंक अकाउंट हैं, उनकी आइडेंटिटी है, आप डायरेक्टली उनके अकाउंट्स पे एक क्लिक करके पैसा ट्रांसफर कर सकते हो।
1: विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल रिवोल्यूशन की हम लोग बात करें, उसमें बहुत सारे हो रहे बदलाव पे आपने चर्चा की। आपका आभार, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोबिक्विक के संस्थापक विपिन प्रीत सिंह के साथ पत्रकार शिशिर सिन्हा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷങ്ങൾ കേന്ദ്ര വാർത്താ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ പരിപാടിയുടെ ശബ്ദലേഖനമാണ് കേട്ടത്.

0: തത്സമയ വിവരണം ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം. ഡൽഹിയിലെ
1: कि मैंने अभी बताया कि पिच के बारे में, बैटिंग पिच है, पाटा पिच है बिल्कुल, तो डेफिनेटली 140 से तो अबव ही जाएगा, 180 तक का टारगेट जरूर होगा भारतीय टीम का. लेकिन इसके साथ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के स्पिनर्स भी कोई कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि स्मृति मंदना जब उनके सामने नासर संधु और सादिदा आती है ना, तो उन्होंने 3 मैचेस में 2 बार उनको आउट किया है. लेकिन आज हमारी स्मृति मंदना को इनसे बचना होगा, इन खुल के खेलना होगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, बात करें हम स्मृति मंदना, हरमनप्रीत कौर, हमारी दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, तो ये एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इनको पता है कि किस तरीके से खेलना है, कहाँ उनको लैक करके उसको इम्प्रूव करना है ड्यूरिंग द मैच. लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स, जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, उनको भी कैसे लेके साथ चलना है. और उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो फातिमा है पाकिस्तान टीम की कैप्टन, वो उनको नी इंजरी है. सो हमारी टीम को ये पता है कि उनको नी इंजरी है, तो ये एक बेनिफिट भी हमारी टीम के लिए है.
2: जी हाँ, बिल्कुल, इस मैच से पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वो नहीं खेलेंगी. आपने पाकिस्तान के कुछ स्पिनर्स की चर्चा की. 2025 के बाद से सादिया इकबाल ने 12 मुकाबलों में 14 विकेट लिए हैं. फातिमा सना के नाम 13 विकेट हैं, जबकि नासरा संधू जिनका आप जिक्र कर रही थी, उनके नाम 9 विकेट हैं. तुबा हसन एक और ऐसी गेंदबाज जो मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करती हैं. मुना, अगर भारतीय बल्लेबाजी की थोड़ी चर्चा करें, जिस तरीके से शेफाली फॉर्म में हैं, जनवरी 2025 के बाद 21 मुकाबलों में 677 रन उनके नाम हैं, और वनडे वर्ल्ड कप में एंट्री के बाद से लाजवाब फॉर्म कैरी कर रहे हैं. स्मृति, हम सब जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट्स की बड़ी प्लेयर हैं, यहाँ किस तरह का स्टार्ट देख रही होंगी, क्योंकि पिच पर काफ़ी चर्चा हो रही है, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है, आते ही स्टार्ट करेंगी या कुछ ओवर देखेंगी?
3: देखिए, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 84 रन बनाने के बाद स्मृति एक भी अर्धशतक नहीं बना पाई है लास्ट 6 पारियों में. इसके अलावा शेफाली की भी बात करें, जोहानिसबर्ग में जो 64 रन बनाए थे, उसके बाद से उनका बल्ला भी उस तरीके से नहीं चला है जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है. तो यहाँ पर क्योंकि ये विश्व कप है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, एक भी मैच में आप कोताही नहीं बरत सकते. तो राइट फ्रॉम द वर्ड गो, शुरू से पहली गेंद से ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी होगी. ये T20 क्रिकेट है, वनडे विश्व कप हमने जीता, वो अतीत की बात हो गई है. ऑलमोस्ट जो फलक्रम है टीम का वो वही है, टीम वही है ऑलमोस्ट. तो इन्हें पता है, जिसको कहते हैं ना, बीन देयर डन दैट, एक खिताब हम जीत चुके हैं, हमें पता है खिताब कैसे जीते जाते हैं. तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो स्ट्रेटजी है, जो कागजों पर बनती है, उसको मैदान पर, रणनीति पर अमल करना जरूरी होगा. और यहाँ पर चूंकि आपने बल्लेबाजी चुनी है, तो आपको शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाना होगा. और ये पाकिस्तान के खिलाफ मैच है, तो थोड़ा कैरिड अवे होने से भी यहाँ बचना बहुत जरूरी होगा.
4: Right, and we are told we have another listener joining us right now with us. Namaskar, good evening. स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में. अविनाश जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप?
5: पहले से अगर दबाव में डाल दे तो विपरीत टीम को तो बहुत ही हमला जरूर फायदेमंद होगा.
4: Right, I'll take that question straight to our expert, Colonel Gupraj. Would you want to address that? Richa Ghosh coming in at number 3 is his ask or suggestion. How good or bad do you think that is in terms of placement at number 3 for Richa Ghosh over there?
6: Well, what I feel is that we've got a very settled first 4-5 batsmen, and they are experts in their position. And Richa Ghosh may not be a good option to send at number 3. Let her play at number 6 or 7 at whatever stage she comes, so that she can get good quick runs in the later part of the innings. And Harmanpreet, Shefali Verma and Mandana, they are good players. They will, you know, manage on top along with Jemima Rodriguez.
4: Right. I'll just take a question with Vaishali also. आपके पास आऊंगी मैं. आनंद ने अभी बहुत अच्छी बात रखी थी कि 13-3 का आंकड़ा है, 13-3 का आंकड़ा भारत के पक्ष में अगेंस्ट पाकिस्तान. इंडिया पाकिस्तान इज ऑलवेज अ वेरी बिग थिंग बिकॉज इट्स इंडिया पाकिस्तान, बट इन टर्म्स ऑफ द क्रिकेट एंड हाउ द क्रिकेट ऑफ दीज टू नेशंस हैज इवॉल्वड, डू यू थिंक इट इज नो मोर अ फाइट और अ राइवलरी बिटवीन, इफ यू टॉक स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ हाउ द टू नेशंस टुडे स्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग द काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग?
1: आई थिंक इट्स अ माइंडसेट, क्योंकि अगर एक प्लेयर अगर खेल रहा है तो उसके साथ साथ हमें ना सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसका किस तरीके की अचीवमेंट्स है, उसने क्या क्या एक्सपीरियंस है उसके पास और वो कैसे प्ले करता है, रेदर देन हम अपनी पॉलिटिक्स साइड में रख के देखें तो. एंड उसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरह का फील्डर है, कितना अच्छी बैटिंग करता है और वो कितना इन्वॉल्व है टीम के साथ, और वो सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं. और अभी मैं एक और चीज़ ज्वाइन करना चाहती हूँ इसमें कि ऋचा घोष के बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे, तो ऋचा घोष हमारी इंडियन टीम के लिए एक्स फैक्टर है क्योंकि वो उस जगह पे खड़ी है जो जहाँ पे उनको कहीं भी भेजेंगे, किसी भी डाउन पे भेजेंगे, वो वहाँ जाके अपने आप को शो करती है. हमेशा हमने देखा होगा कि ऊपर का बैटिंग लाइनअप खराब हो जाता है हमारा कभी कभी, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन एक ऋचा घोष ऐसी है इस टीम के अंदर जो हर दिन अपने आप को शो करती है एंड वो बैटिंग करके दिखाती हैं. और उसके साथ जेमिमा रोजर्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें उनको पाकिस्तान के साथ बैटिंग करना बहुत ही मज़ेदार लगता है. और उनने जो एशिया कप में 2022 में जो खेला था उन्होंने 53 की नाबाद बारी खेली थी उनके साथ, और वो मुझे लगता है कि वो आज उतने ही जोश में भी होंगी.
2: जी बिल्कुल, अगर हम अपने श्रोताओं के लिए भारत की प्लेइंग 11 की बात करें तो स्मृति मानधना हैं, शेफाली वर्मा हैं, जेमिमा रॉड्रिग्स हैं, हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान, भारती फुलमाली, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, श्रियंका पाटिल, श्रीचरणी और क्रांति गौड़. इस टीम के साथ खेल रही है टीम इंडिया. थोड़ी बात हरमन की जाए, हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तान, इनकी कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप में 19 में से 13 मैच जीते हैं, 6 हारे हैं और 2025 के बाद से 19 मुकाबलों में 486 रन बनाए हैं. मोना एक ऐसी खिलाड़ी जो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रही हैं, बीच में कुछ एक मैचेस में अच्छी पारियां खेलती हैं, लेकिन टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं. क्या लगता है इस बड़े मंच पर दबाव होगा उन पर?
3: देखिए ये कहना तो गलत होगा कि दबाव नहीं होगा, और खासकर अब ज़्यादा दबाव होगा क्योंकि हम वनडे में विश्व चैंपियन हैं, और उस लय को बरकरार रखने का दबाव जो होता है भारतीय क्रिकेट में हर कोई जानता है किस तरीके से कैसे होता है. हरमन की हम बात करें तो एज अ बैटर मुझे अभी भी उनकी वो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग याद आती है जब अकेले दम पर उन्होंने मैच जिताया था. अभी हम बात भी कर रहे थे कि टूर्नामेंट से ठीक पहले 2 हाफ सेंचुरी लगाई है उन्होंने, अनुभव है. रवानगी से पहले एक प्रेस इवेंट में उनसे पूछा गया था कि क्या ये आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, यू वांट मी टू रिटायर व्हाई. तो ये एक बॉडी लैंग्वेज होती है कप्तान की, जहां आक्रामकता दिखानी होती है वहां वो आक्रामक रहती है, और मुझे लगता है हरमन वो एक धुरी है जो इस पूरी टीम को जोड़ के रखती है, और एक कप्तान के तौर पर उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है भारतीय महिला क्रिकेट में. तो मुझे लगता है कि वो दबाव जरूर होगा, लेकिन उस दबाव से कैसे पार पाना है उस खेल की वो अब माहिर हो चुकी है.
4: राइट, एंड वेलकम टू यू मोना. Just to take that question forward, because आप जवाब देना चाह रहे थे about how the cricket of both the countries has evolved and whether possibly India का cricket शायद ज़्यादा उच्च हो गया है compared to Pakistan का cricket.
3: साक्षी, आपने जो सवाल पूछा था कि दोनों देश कहाँ ठहरते हैं महिला क्रिकेट में, ये आपका क्वेश्चन था, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय टीम खासतौर पर WPL आने के बाद से या फिर एक्सपोजर की हम बात करें तो लगातार खेलती आ रही है, और पाकिस्तान 2 साल में 1 या 2 श्रृंखलाएं खेला है. जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है उसको तो मैं कहूंगी बेमेल ही श्रृंखला है, उसमें शायद सबसे फास्ट हाफ सेंचुरी बनाई फातिमा सना ने. लेकिन जो हार्ड टेस्ट होते हैं किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले, उनसे होकर पाकिस्तानी टीम नहीं गुजरी है. और भारतीय खिलाड़ी न सिर्फ WPL, आप हंड्रेड्स में देख लीजिए, आप बिग बैश में देख लीजिए, भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं तो काफी अनुभव हो गया है बड़े मुकाबले खेलने का, और वर्ल्ड कप फाइनल तक खेल चुके हैं. तो बहुत ही फर्क है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम देखें या प्लानिंग वाइज भी हम देखें या कहां पर दोनों टीमें खड़ी हैं और बोर्ड का कितना सपोर्ट है पाकिस्तान में महिला क्रिकेट को और भारत में, तो काफी फर्क पड़ता है. आप कितने साउंड होकर उतर रहे हैं मैदान पे, वो काफी मायने रखता है. तो मुझे लगता है यहां पर निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा काफी भारी है.
4: राइट,
2: गेंदबाजी की बात करें तो श्रीचरणी पर सबकी नजरें होंगी. 2025 के बाद से 20 मुकाबलों में 28 विकेट और दीप्ति शर्मा, एवरग्रीन दीप्ति शर्मा के नाम 23 विकेट हैं, और अरुंधति रेड्डी ने 20 खिलाड़ियों को आउट किया है. श्रीचरणी की थोड़ी बात करते हैं कर्नल, काफी नई खिलाड़ी हैं लेकिन रनों पर अंकुश लगाना हो, मिडिल ओवर्स में विकेट लेना हो, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती हैं इस वर्ल्ड कप में.
6: देखिए श्रीचरणी इज अ वेरी गुड बॉलर, कंट्रोल से बॉल करती है, फ्लाइट करती है, एंड आपने WPL में भी अगर इनका परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने ऑलमोस्ट हाईएस्ट विकेट टेकर थी, तो शी इज़ वेरी गुड. एंड ऑल्सो इन दीज लास्ट फोर मंथ्स दैट वी बीन टूरिंग साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, शी इज़ टेकन लॉट ऑफ विकेट्स, 2 विकेट्स, 3 विकेट्स इन एवरी सेकेंड इनिंग शी इज़ टेकन, सो शी इज़ वेरी

0: बट वॉट इज मैटर ऑफ कंसर्न इज द फॉर्म ऑफ दीप्ति शर्मा.
1: बिल्कुल सही, मैं इसी सवाल पर आ रहा था. स्ट्रगल कर रही हैं.
0: या शी हैज जस्ट टेकन इन वन मैच 5 विकेट्स. इन रेस्ट ऑफ द मैचेस शी इज नॉट दैट ओल्ड दीप्ति शर्मा दैट वी नो हर टू बी. पर आज उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करेगी. एंड बट आई हैव गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन श्रियंका पाटिल ऑल्सो. शी इज बोल्ड वेरी वेल इन WPL एंड ऑल्सो इन द प्रैक्टिस मैचेस दैट वी हैड इन इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका. So these three spinners we are looking at, and Arundhati, the fast bowler, also she's done well. So our bowling is quite good when we compare ourselves with Pakistan.
2: Right, since we're talking of Deepti Sharma abhi, Deepti Sharma just requires 5 more wickets to go past actually Thipacha Puttawong of Thailand to become the leading wicket taker in women's T20. Mona, aapke paas aa jati hu is baat se ki a moment of pride, kyunki hum Indian women's cricket ke evolution ki baat kar rahe hain. Deepti Sharma today stands at accomplishing a feat where she could become the record holder in terms of the number of wickets. 5 more wickets to go and she becomes the highest wicket taker in women's T20 cricket.
1: Mona, is sawal ke jawab par aayenge. Caller hamare saath jud gaye hain. Ji, swagat hai karyakram mein aapka.
3: Ji, namaskar aadab.
1: Ji, namaste.
3: Ji, main Mustaqim Mutwa baat kar raha hu Gujarat se.
1: Ji, bataye kya batana chahte hain aap?
3: Ji, sabse pehle to hum Akashvani ka aabhari hain ki aap radio pe cricket commentary prefer kar rahe hain.
1: Ji.
3: और उम्मीद है कि आगे आने वाले भारत के जो मैचेस हैं इंग्लैंड जिम्बाब्वे और आयरलैंड उसकी भी कमेंट्री होगी रेडियो पर.
1: जी हाँ, इस विश्व कप में भारत के सभी मैचों का प्रसारण हम आपके लिए लेकर आएंगे.
3: जी जी, और भारत के मेंस टीम के भी मैचेस की भी कमेंट्री रेडियो पर जरूर लाए सर.
1: आप इस मैच से जुड़ा क्या बताना चाहते हैं?
3: आज तो बस भारत ने टॉस जीता है और भारतीय टीम को शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि भारत की टीम 170-180 रन का टारगेट खड़ा करेगी और भारत मैच जीतेगा.
1: जी हाँ, करोड़ों भारतीय प्रशंसक टीम इंडिया को शुभकामना देना चाहते हैं. जी मोना, दीप्ति शर्मा के बारे में आप बता रही थी.
4: जी बिल्कुल, आपने बात की रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़ी हैं और पर्सनल माइलस्टोन्स इतना ज्यादा जब आप क्रिकेट खेलते हैं अक्रॉस द फॉर्मेट और ये T20 में खासतौर पर दीप्ति शर्मा का जो प्रदर्शन रहा है, जैसे अभी सर बोल रहे थे कि उतना उस कॉन्फिडेंस में वो नहीं दिख रही है, उस लय में वो नहीं दिख रही जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी. लेकिन बड़े मैच की खिलाड़ी हैं और बैक ऑफ माइंड चाहे वो कितना भी बोले कि हमारा ध्यान नहीं रहता है पर्सनल माइलस्टोन पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ माइंड रहता ही है कि अभी इतने विकेट बाकी हैं. तो बड़े मैच की खिलाड़ी है, बड़ा टूर्नामेंट है और सही समय पर पीक करना उन्हें आता है. तो उम्मीद हम यही करते हैं कि न सिर्फ वो माइलस्टोन बल्कि इस टूर्नामेंट में भारत को बहुत डीप ले जाने में भी वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.
1: वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भारती फुलमाली की एंट्री होती है प्लेइंग 11 में, क्या हम इस टूर्नामेंट में बैटिंग ऑर्डर में शफल देख सकते हैं? क्योंकि एक ऐसी प्लेयर हैं जो किसी भी ऑर्डर पर आकर तेज तरार पारी खेल सकती हैं.
5: अगर मैं भारती की बात करूं तो ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया ए में जो उन्होंने खेला था उन्होंने नाबाद 50 प्लस स्कोर किया था एंड वो कंटिन्यूस करती हुई आ रही हैं. दैट्स व्हाई वो इस टीम के अंदर आज प्लेइंग 11 का हिस्सा है और उसके उनके अंदर एक खासियत और है कि उनके अंदर पेशेंस भी है. जैसे कि हम देखें, अगर कंपेरिजन करें शेफाली वर्मा और भारती का, तो शेफाली के पास उतना पेशेंस नहीं है जितना कि भारती के पास है. और मान सकते हैं कि पहला मैच खेल रही हैं लेकिन पहला मैच हो सकता है उनका ज़िंदगी का मैच हो और वो इसी मैच से आगे भी आएं. तो मेरी तो यही उम्मीद है कि वो 50 प्लस स्कोर करें और हो सकता है कि जहां भी वो ओपनिंग या फर्स्ट डाउन आए तो वहां पे अपने आप को प्रूव करें.
2: Right, I'll come to you now, Colonel Bhupraj, and ask you, does India go in as heavy favorites in the game today?
0: Oh yes, we are heavy favorites and I'm hoping for a one-sided match.
2: One-sided, wow. Mona ji?
4: Hands down, बिल्कुल इंडिया फेवरेट है. और जैसे हम बार बार बात करें कि इस पाकिस्तान के लिए सब कुछ निर्भर करता है उनकी कैप्टन पर, वो आज कैसे खेलती है. और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि टूर्नामेंट से पहले मैंने एक बार उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने कहा था कि उनके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी हैं. काफ़ी कुछ कूल डिमेनर जो महेंद्र सिंह धोनी का है वो उसी तरह से कप्तानी में विश्वास रखती है. तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि सफलता के मामले में धोनी की वो नक्शे कदम पर ना चले और आज बिल्कुल भारत फेवरेट रहे.
1: कर्नल भूप राज, आपसे समझना चाहेंगे, भारत और पाकिस्तान की टीम जब भी मैदान पर उतरती है और विश्व कप का जब मंच होता है गहमा गहमी बहुत बढ़ जाती है. और हम देख भी रहे हैं कि पिछली बार जब दोनों टीमें पुरुष विश्व कप में खेली थी तो किस तरीके का माहौल था. यहाँ पर क्या इंटेंसिटी आप फील कर रहे हैं?
0: देखिए इस बड़े मैच में थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है दोनों टीमों के लिए, बट लेटली अगर आप देखिए तो इंडिया बोथ मेंस एंड वेमेंस में बड़े आराम से जीत रहा है, तो वो जो टेंशन इंडियन प्लेयर्स में है वो थोड़ी सी कम होगी इस बार, एंड मेरे ख्याल से हम लोग अच्छा खेलेंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम अच्छा खेलेंगे। वैशाली, क्विक आपसे टेक लेना चाहेंगे, भारतीय बल्लेबाज किस तरीके की शुरुआत की उम्मीद कर रहे होंगे? हमने शेफाली की बात की, स्मृति की बात की, हमने ये भी चर्चा की कि स्मृति का फॉर्म उनके साथ नहीं है, जो टीम दक्षिण अफ्रीका खेलने गई थी, जो इंग्लैंड में वो बल्लेबाजी करके आई हैं, लेकिन हम सब जानते हैं वो बिग मैच प्लेयर है।
5: जी बिल्कुल, और मैं यही उम्मीद करती हूँ और बाकी फैंस भी यही उम्मीद करते होंगे कि जो पावर प्ले है उसका भरपूर फायदा उठाया जाए, और जितने रन्स हम लूट सकते हैं उतने रन्स हम लूटे, हमारी टीम वो उसके बाद जब हमारी शेफाली वर्मा मारने को आती है ना तो वो रुकती नहीं है, ये हमने काफी टाइम तक देखा है। और स्मृति मन्ना का जब बैट चलता है वो ग्लांस करती है, जिस तरह से वो स्लाइस करती है बैट को, और उसके साथ साथ जैसे वो कवर ड्राइव लगाती है, वो रुकनी नहीं चाहिए आज के मैच में।
1: हम सब उम्मीद करते हैं कि आज भारत रुकेगा नहीं। तो विश्लेषण, आंकड़ों और उम्मीदों का यह सफर यहीं थमता है, लेकिन असली रोमांच अब शुरू होने वाला है। बर्मिंघम का मैदान तैयार है, खिलाड़ी तैयार हैं, और करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। भारत और पाकिस्तान की टक्कर में अब हर गेंद इतिहास लिख सकती है। वैशाली आपका, कर्नल भूपराज आपका और मोना आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
5: थैंक यू।

0: मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
1: मैं आशीष चरंगू, अपने साथी कमेंटेटर दर्पण तिकिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप का 10वां संस्करण शुरू हो चुका है 12 जून से, और अब तक इस प्रतियोगिता के, इस विश्व कप के 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं और आज 6वां मुकाबला है, जो कि अब से थोड़ी ही देर बाद भारत और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की टीमों के बीच शुरू होने वाला है एजबेस्टन बर्मिंगम पर। और इस मैच में टॉस जीता है भारत के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने, और टॉस जीतकर जैसा कि तमाम खेल के जानकारी अनुमान लगा रहे थे कि जो भी कप्तान टॉस जीतेगा पहले वो बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगा इस पिच पे, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए ये उपयुक्त फिलहाल काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। और हरमनप्रीत कौर ने भी ठीक वैसे ही किया, टॉस जीतने के बाद उन्होंने बल्लेबाजी करना पसंद किया, उसका फैसला किया। और जो 11 खिलाड़ी आज वो टीम में उतारे गए हैं वो हैं स्मृति मांधना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर जो कि टीम के कप्तान हैं, भारती फुलमली, ऋचा घोष टीम के विकेट कीपर, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरनी और श्रियंका पाटिल। तो ये है भारतीय टीम, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो कप्तान हैं वो हैं फातिमा साना, मुनीवाली टीम के विकेट कीपर गुल फिरोजा, आयशा जफर, साइरा जबेन, नतालिया फरवेज, आलिया रियाज, रमीन शमीम, नाशरा संधू, सादिया इकबाल और तास्मिया रुबाब। तो ये है दोनों टीमों का लेखा जोखा। फिलहाल बीच मैदान पर भारत के दोनों ही प्रारंभिक बैटर्स स्मृति मांधना और शेफाली वर्मा बीच मैदान की तरफ अग्रसर होती हुई, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारत के तमाम जो खेल शायकीन हैं, खेल के जानकार हैं या खेल प्रशंसक हैं, उनको यही उम्मीद होगी कि ये जोड़ी भारत को एक अच्छी शुरुआत दे। और जैसा कि हमने देखा भी है कि 2024 के विश्व कप के बाद स्मृति और शेफाली की जोड़ी ने सबसे ज़्यादा 762 रन बनाए हैं T20 मुकाबलों में, और कमोबेश वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद आज इन दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों से होगी। तो फिलहाल मैं स्वागत करूँगा अपने साथी कॉमेंटेटर दर्पण तिकिया का।
2: Right, it is India versus Pakistan and we are all set to call the live action. The thing is that today must be a good day for India because they won the toss, and Ashish, let me tell our listeners that India had lost 8 consecutive tosses before this match in T20Is, and therefore things have started.

0: presses forward as Jemima Rodriguez unwards it off towards extra cover. End of the first over. 7-1.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा?
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने एक ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान पर, और अब स्मृति मंधना का साथ देने के लिए बीच मैदान पर जेमिमा रॉड्रिक्स हैं। 25 वर्ष की उनकी उम्र, मुंबई में जन्मी और पिछले 8 वर्षों से लगातार भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और न केवल उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है बल्कि एक बहुत गहरी छाप उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम पर अब तक छोड़ी है। 126 मुकाबले जो इससे पूर्व उन्होंने खेले हैं उसमें कुल 2732 रन उन्होंने बनाए हैं, और औसत की यदि बात करें तो 30 से ऊपर का उनका औसत और स्ट्राइक रेट लगभग 129 की। काफ़ी उम्मीदें भारत को इस अनुभवी जोड़ी से, और देखना यह है कि ये जोड़ी अब किस तरह से यानी पारी को आगे बढ़ाती हैं। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत फातिमा के द्वारा, और फातिमा साना की इस गेंद को स्क्वायर लेग के दिशा में खेल दिया एक आसान से रन के लिए वहां पर स्मृति मानधना ने, और इस एक रन के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोल लिया और भारत का स्कोर इस एक रन की मदद से अब बढ़कर 8-1 विकेट के नुकसान पर। जेमिमा अगली गेंद का सामना करेंगी और देखना यह है कि यहां पर क्या वो स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोरबोर्ड को गतिमय रखेंगी या फिर कुछ हाथ खोलकर पावर प्ले में बड़े स्ट्रोक लगाना पसंद करेंगी। फिलहाल फील्ड प्लेसिंग के लिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है वहाँ पर, ये देखते हुए कि बीच मैदान पर इस समय जो दो बैटर्स हैं वो एक बाएं हाथ का स्मृति मंधना और जबकि दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जेमिमा रॉड्रिक्स। एक स्पिन स्लिप के साथ गेंदबाजी करते हुए इस समय फातिमा साना जो कि टीम के कप्तान हैं, हालांकि कल चोटिल हो गई थी घुटने में, नेट प्रैक्टिस के दौरान घुटने पर गेंद आकर के लगी थी और काफ़ी संशय था कि वो आज का मुकाबला खेलेंगी या नहीं, लेकिन फिलहाल पूरी तरह से फिट। अगले गेंद फ्रंट फुट पे जाकर इस गेंद को सीधे बल्ले से हल्का सा पुश कर दिया, लेकिन मिड ऑन पर फील्डर मौजूद हैं, बाईं तरफ जाकर उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को समाप्त कर दिया। भारत टॉस जीतकर एक विशाल स्कोर खड़ा कर देना चाहता है, एक बड़ी चुनौती यहां पर रखना चाहता है।
0: And immediately Pakistan make a change. They call Muniba Ali, the wicketkeeper, onto the stumps. She is called for the helmet and she is going to now stand on the stumps because Jemima Rodriguez stepped out of her crease to play the first ball in order to try and alter Fatima Sana's length. So proactive Pakistan today.
5: अच्छी कप्तानी वहां पर फातिमा साना की। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार कट करने की कोशिश, गेंद ने बल्ले का भीतरे किनारा लिया और एक बाउंस के बाद जाकर विकेट कीपर मुनीबा अली के पैरों में जाकर गेंद टकराई और उसके बाद डिफ्लेक्ट हुई, और निश्चित रूप से जेमिमा रॉड्रिक्स को संभल कर खेलने की आवश्यकता है। यहाँ पर फातिमा साना ज़रूर प्रसन्न हैं कि जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने एक परेशानी में डालने की जो कोशिश की थी उसमें कामयाबी हासिल की। अगली गेंद देकर फातिमा साना टीम की कप्तान पाकिस्तान की एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, इस बार स्टंप के नज़दीक से गेंद, थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ ऑफ मिडल स्टंप की तरफ आती है, उस गेंद को सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर पुश किया, गेंद को वहां पर फील्ड किया, रन बनाने का कोई प्रश्न नहीं। पिछली 3 गेंदों पर कोई भी रन नहीं बना पाई हैं जेमिमा रॉड्रिक्स, अब तक 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और खाता अभी तक नहीं खुला है। शफाली वर्मा का पहले ही ओवर के दौरान आउट होकर जाना भारत के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो पावर प्ले में अच्छा खासा एक गति भारतीय स्कोर बोर्ड को दे सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सादिया इकबाल ने पहले ही ओवर के दौरान उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। फातिमा साना की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को फ्रंट फुट पे आके हल्के से पुश किया, ऑन साइड पर मिड ऑन पर फील्डर सीधा थ्रो स्टंप्स के ऊपर, लेकिन स्टंप के आसपास कहीं भी गेंद नहीं थी और डाइव लगाते हुए जेमिमा ने अपना इस मैच का पहला रन पूरा किया। भारत 9-1 विकेट के नुकसान पर।
0: 3 things happened there, Ashish. First of all, the ball went to mid-on where Alia Riaz fielded it. She hit the ball towards the stump. She hurled it towards the stumps, I should say. And the ball did not hit the stumps. Rather, it hit Jemima. Before that, whilst Smriti Mandhana was taking the run, she had to go around the baller. Fatima Sana, in order to try and field the ball, came in her way, which is interesting. It could spark some sort of debate. Anyhow, next delivery of the over on.

0: body line delivered on the shorter side of good length allows Smriti to pull it towards the long leg fielder, where Sadia Iqbal moves towards her left, picks it up, hurls it back to the wicketkeeper. Whilst all that is done, a single has been taken, 2 overs done. 10 for 1, our team India.
1: तो कुल मिलाकर इस ओवर के दौरान मात्र 3 ही रन आए और निश्चित रूप से पाकिस्तान की तरफ से एक बढ़िया शुरुआत की जा सकती है. अब तक पहले दो ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हैं उन्होंने भारत के तेज तरार बैटर्स को और एक विकेट बदले में हासिल कर लिया है, वो भी शेफाली वर्मा जैसी तेज तरार बैटर का. तो देखना यह है कि तीसरे ओवर में क्या कुछ हो पाता है, क्या सादिया एक...

0: की इस गेंद को फिर से गेंद की पिच के नजदीक जाकर हल्के से पुश किया, कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर गेंद फील्ड होती हुई बिना किसी रन के। स्मृति मानधना से काफ़ी उम्मीदें हैं। यदि आप स्मृति मानधना को देखें तो एक शतक भी उनका T20 मैचेस में अब तक नजर आता है। इसी में चकली गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को प्लेस करते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: बेहतरीन अंदाज में फ्रंट फुट पे जाकर बिल्कुल गेंद की पिच के नजदीक पहुंचकर गैप को तलाशने में पूरी तरह से कामयाब रही इस अवसर पर स्मृति मानधना, और इस ओवर में अब तक 2 चौके भी लगा चुकी हैं। कुल मिलाकर 8 रन अब तक आ चुकी हैं। दो गेंदें अभी बाकी बची हैं सादिया के इस ओवर में, जबकि स्मृति का अपना व्यक्तिगत स्कोर इन 2 चौकों की मदद से फिलहाल दोहरे अंक में 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर। वो अगली गेंद, इस बार गेंद को पूरा सम्मान दिया, फ्रंट फुट पे जाकर गेंद को बल्ले के नीचे आकर के टकराने दिया और गेंद को वहां पर फील्ड किया गया ऑफ साइड में बिना किसी रन के। अंतिम गेंद लेकर सादिया एक बार फिर से तैयार। 30 वर्ष की उनकी उम्र और ICC रैंकिंग में पिछले कुछ समय से शीर्ष स्थान पर हैं, और जैसा कि थोड़ी देर पहले दर्पण बता रहे थे कि अब वो दूसरे स्थान पर पहुंच चुकी हैं। अगली गेंद को फिर से हल्के से ड्राइव किया था ऑफ साइड पे, लेकिन इस बार गेंद को फिर से 30 गज के दायरे के अंदर फील्ड किया गया। ओवर की समाप्ति हुई।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: जानिए आभा के बारे में। यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: So 18 for 1, half of the power play done, 3 overs done, 18 for 1 India at the loss of the wicket of Shefali Verma. And looks like Tasmia Rubab has now been summoned by Captain Fatima Sana. Tasmia Rubab, who's a left-arm seamer and a bit of an unknown quantity, because she's today playing only her 3rd T20I, and she has played 2 matches before this, 1 in this year, the other one back in 2024. So she's a bit of an unknown quantity. Wears number 10 on her back. Runs into bowl this one from over the wicket. Full length delivery. Jemima Rodrigues drives this one towards mid-on and runs down in the search of a single, which Smriti Mandhana thought was non-existent. And hence Mandhana said no. She sent Jemima back from halfway down the pitch. Jemima makes it safely home, and after that holds her hand up in apology. She had punched this one straight to mid-on, and Smriti Mandhana did not see the need to run. Rodrigues says that it was her fault. However, this shows a bit of desperation. Next delivery, she goes for a big shot and completely miscues it, and the catch has been put down. No! Takes it on the second attempt. Does Natalia Parvez, and India lose their second wicket. This was delivered on the fuller side of good length. It was angling away from the right-hander, not too far from the off stump. And for some reason, Jemima Rodrigues, who had faced 5 dot balls before this, that desperation was showing. She pressed forward and tried to hike it, tried to slog it. That is not her strength. She's known for playing those straight-batted shots, a technical sound player. However, she went for a slog. The ball hit the outer half of the bat, went straight up, and Natalia Parvez ran in a few steps from extra cover, settled underneath it, yet she juggled it. She did not catch it on the first attempt. The ball popped out of her hand and she grabbed it on the second attempt. The score is 18 for 2 after 3.2 overs. The start for India has not been great.
0: निश्चित रूप से भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। टॉस जीतकर जिस तरह की उम्मीद थी भारत को, कि टॉस जीतने के बाद भारत एक विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहेगा और शुरुआत से ही कुछ तेज तर्रार अंदाज में रन बटोरेगा, लेकिन यहां पर भारत की शुरुआत तो ज़रूर अच्छी हुई। पहले ओवर की पहली गेंद पर शफाली वर्मा ने छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद उनका विकेट चटकाने में सादिया कामयाब रही थी पहले ही ओवर के दौरान, और इस समय एक और झटका भारत को चौथे ओवर के दौरान लग चुका है। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर जब जेमिमा रॉड्रिक्स वापस पवेलियन लौट चुकी हैं, और कहना होगा कि अब यहां पर थोड़ी बहुत मुश्किलें भारत के लिए बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। क्या यहां से भारतीय पारी को संभालने में कामयाब रहेंगे हरमनप्रीत कौर। और हालांकि बल्लेबाजी के लिए अभी काफ़ी अच्छा खासा लाइनअप है भारत के पास, लेकिन फिलहाल जो तमाम दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो हरमनप्रीत कौर के पास है। हरमनप्रीत कौर जो कि एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी जो कि 10वां विश्व कप खेल रही हैं और साथ ही साथ 5वां ऐसा अवसर जबकि वो कप्तानी कर रही हैं T20 विश्व कप में। आते ही उन्होंने अपना खाता खोला और जो एक दबाव होता है पहले रन का, उसे अपने आप को उससे पूरी तरह से मुक्त कर लिया वहां पर दर्पण।
5: वेल आई हैव गॉट टू से दैट तास्मिया रुबाब वाज अ बिट जेनरस, डिलीवर्ड अ हाफ वॉली ऑन हर पैड्स एंड देयरफॉर हरमनप्रीत कौर वाज एबल टू टक इट टुवर्ड्स स्क्वायर लेग एंड पिक अप दैट कंफर्टेबल सिंगल। सो कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आउट देयर इन द मिडल, रिमेंबर द इनिंग स्टार्टेड विद द फर्स्ट बॉल सिक्स। शेफाली वर्मा टुडे बिकेम द फर्स्ट बैटर टू हिट अ फर्स्ट बॉल सिक्स इन अ वर्ल्ड कप मैच इन वुमेन्स T20 क्रिकेट। बट हाउएवर आफ्टर दैट Pakistan have come back well. They have dismissed Shefali. They have dismissed Jemima. India are 19 for 2 after 3.5 overs. Two fielders allowed outside the 25-yard circle in the first 6 overs. Currently, they are deep backward square leg and deep backward point. Smriti Mandhana to face. This one is delivered on a length outside the off stump. And in a very measured manner, Smriti plays it away from the body but in a very controlled manner towards cover. She has looked steady. She has looked sturdy. She has hit a couple of boundaries already, but the important thing is that Smriti Mandhana has not looked rushed, unlike the other two batters who have gotten out. Next delivery from Tasmia delivers this one on a good length and it nips back in sharply. However, Mandhana had it covered. It finished near the middle end leg, 106 kilometers per hour, which means Tasmia is pretty brisk. However, Mandhana was able to tuck it towards the gap at square leg and pick up a comfortable single. Harmanpreet Kaur today is playing her 40th match in a T20 World Cup and she's among the top 5 players when it comes to most matches played in this World Cup, the T20 format in women's cricket. Meanwhile, the next delivery, a slower one by the looks of it from Tasmia Rubab, angled away and finished outside the off stump. However, Harmanpreet was able to get her bat behind it and nudge it back towards the bowler. Fourth over done, 20 for 2, Team India.
0: So Harmanpreet ne waha ek run banane ke saath hi 727 run bana liye hai T20 Vishwa Cup mein, jo ki Bharat ki Mitali Raj ke 726 run se ab ek run aage ho gaye hain. To T20 Vishwa Cup mein sabse zyada run banane ka shrey ab Harmanpreet Kaur ke नाम दर्ज हो चुका है। और हमारे स्टेटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी बता रहे हैं कि जेमिमा रॉड्रिक्स के लिए छठा अवसर था जबकि वो एक के स्कोर पर अपनी 127 पारियों में अब तक आउट हुई हैं और 37वां ऐसा अवसर जबकि वो सिंगल डिजिट में आउट हुई हैं। तो जेमिमा के लिए निश्चित रूप से ये मैच याद रखने वाला निश्चित रूप से नहीं है, हालाँकि हाल फिलहाल में उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किए और ODI विश्व कप की बात करें तो वहाँ भी उनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार था, लेकिन आज उनका बल्ला नहीं चला। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होती हुई शमीम इस समय स्थान पर हैं सादिया इकबाल के और देखना ये है कि क्या वो अपनी टीम के लिए कुछ और सफलता हासिल कर पाती हैं। रमीन शमीम तैयार, इस बार ये गेंद घुटनों के बल बैठते हुए स्वीप कर दिया, फील्डर गेंद के पीछे बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, और गेंद सीमा रेखा से जाकर टकराती हुई 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: साहिरा जवीन ने हालांकि दौड़ तो काफी लगाई थी लेकिन गेंद की रफ्तार उनसे काफी ज्यादा तेज थी, फ्लाइटेड गेंद थी थोड़ी सी और उस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए स्वीप कर दिया था बहुत ही खूबसूरती के साथ। जानते थे कि वहाँ फील्डर मौजूद हैं लेकिन उनके बगल से गेंद को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली थी इस अवसर पर स्मृति मांधना ने। 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्मृति इस चौके की मदद से।
5: The interesting thing, Ashish, is that Pakistan have quickly gone to Shamim, who's an off spinner. She's by no means a frontline bowler. She does bowl her off breaks, but she's considered more of a part-time option. Meanwhile, Saira Jabeen, who dived awkwardly in order to try and stop that ball, landed in a very clumsy manner and she seems to have hurt herself. The team physio for Pakistan is currently on the field and she's attending Saira Jabeen. Looks like she's good to continue. Shamim, meanwhile, prepares herself to deliver what will be the third ball of the fifth over. India 24 for 2. Smriti Mandhana facing.
0: अगले गेंद लेकर एक बार फिर से तैयार हैं शमीम और इस बार इस गेंद को खूबसूरती के साथ खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा से बाहर दनदनाते हुए चार रनों के लिए
1: ये लगा आभा का चौका।
0: इस चौके की मदद से भारत का स्कोर अब 28 दो विकेट के नुकसान पर 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद और इन 28 रनों में चार चौके और एक छक्का शामिल है। भारत जैसा कि आप जानते हैं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रहा है एच वेस्टर्न पर पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी महिला T20 विश्व कप के अपने इस पहले मुकाबले में। एक बार फिर से तैयार वहां पर रमीन शमीम बाएं हाथ से ऑफ स्पिनर गेंदबाज और इस बार क्रीज के बिल्कुल कोने से ही गेंद हल्के से गेंद को पुश किया ऑफ साइड पर और गेंद को वहां पर पॉइंट की दिशा में इससे पहले कि फील्ड किया जा सके आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल ली और इस एक रन की मदद से हरमनप्रीत ने अपने और अपने टीम के खाते में एक रन का इजाफा किया बल्कि स्मृति मंदाना थी माफ़ कीजिए वहाँ पर और इस एक रन की मदद से उनका व्यक्तिगत स्कोर पहुँचा अब 20 पर। तो 14 गेंदों में 20 रन स्मृति के। हरमनप्रीत तैयार हैं इस समय अगली गेंद का सामना करने के लिए।
5: The good thing is Smriti has looked good. They brought in the off spinner probably to counter the left hander, but she has looked unhurried and she has already struck two boundaries. Now over to Harmanpreet, who gets a flighty delivery which was delivered from over the wicket, just 70 kilometers per hour. So good air given there by Shamim. However, the length allowed Harmanpreet to get onto the front foot, push it towards long on and pick up a single. 30 on the board now for India. One ball remaining in the fifth over. Around the wicket goes Shamim and delivers this one with a round armish action, tries to deliver the quicker one, however once again in a very unhurried languid manner Smriti taps it towards extra cover. No runs to be had of that delivery. This over produced 10, 30 for 2 after 5.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: ICC വിമൻസ് T20 ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് 2026 ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബർമിംഗ്ഹാമിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരണമാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിവരണം വാർത്തകൾക്ക് ശേഷം തുടർന്ന് കേൾക്കും. ഇപ്പോൾ സമയം 7 കഴിഞ്ഞ് 24:57. മലയാളത്തിൽ വാർത്തകൾ.
7: ആകാശവാണി നമസ്കാരം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ലിൻസ സിറാജ്.

0: talking about. And Smriti Mandhana, another good thing was that she stepped out of her crease after the ball had left the bowler's hand, and therefore there was absolutely no chance for Rubab to make any sort of adjustment. The next delivery on a good length, this time Mandhana very cleverly hangs back because she was expecting the bowler to shorten her length. However, Rubab did not do that, and in the end it has been tucked away neatly towards square leg for a comfortable single. Mandhana on to 35, India 61 for 2. Next delivery is a fuller length delivery, this time around from Tasmia Rubab, and there's a chance of a run out. However, a big desperate dive from Smriti Mandhana ensures that she is home and the run has been taken. She gets up, dusts herself off, takes her gloves off, and then gives a thumbs up to her partner at the other end, saying that I'm safe and sound, don't you worry about anything. It was on a fuller length in line with the stumps, and Harmanpreet Kaur went onto the back foot, and after that she used her wrists to close the face and dinged it towards the empty mid-wicket region. The bowler herself ran, picked it up and hurled it back towards the stump. Alas, she could not score a direct hit, or else Mandhana might have been in trouble. The next delivery is a bit of a cutter delivered on the shorter side of good length, allows Harmanpreet to hang back and swish across the line. The ball goes towards deep backward square leg, allows for a comfortable single, which takes India's score to 64 for 2 after 9.4 overs. So pretty eventful. These middle overs are turning out to be just like you predicted, Ashish.
1: जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो मोमेंटम अब इन दोनों बैटर्स को हासिल हो चुका है, क्या उसको जारी रख पाएंगे. फिलहाल अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप की तरफ हटते हुए सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलने में कामयाब रही थी. हालांकि वहाँ पर प्रोटेक्शन है, फील्डर ने गेंद को रोका सीमा रेखा से करीब करीब 8-10 गज अंदर, लेकिन तब तक आसानी के साथ एक रन के लिए दोनों बैटर्स ने अपना छोर बदल लिया था.
0: So the score moving to 65 with that. 9.5 overs are done. Harmanpreet Kaur on 20. She is back on strike after that single that was taken by Smriti Mandhana. Last delivery of the 10th over coming up. Here comes Rubab and beats the bat. It was angled away towards the offside and hung back did the Indian captain. Went for a cut shot but did not make contact. At least that is what we felt on the first look. However, Rubab has made a polite inquiry for caught behind. The umpire has denied it. Then she has a conversation with her captain Fatima Sana, possibly discussing the possibilities of opting for DRS. However, Fatima Sana denies it. They do not opt for DRS. Remember, two reviews per side per innings are allowed in this particular World Cup. End of the 10th over, 65 for 2 India.
1: भले ही एज वेस्टर्न पर महिला क्रिकेट में जो औसत स्कोर है वो 138 का है, लेकिन भारत यहाँ पर कम से कम 150-160 का लक्ष्य पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा करना चाहेगा, और देखना यह है कि क्या उस इरादे में कामयाब भारतीय टीम हो पाएगी या फिर नहीं. फिलहाल 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 65 रन बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और निश्चित रूप से कहना होगा कि 18 पर जब भारत का दूसरा विकेट गिरा था उसके बाद से लेकर अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी की है, और देखना यह है कि इस साझेदारी को, इस तरह की बल्लेबाजी के क्रम को वो और कितना देर जारी रख सकते हैं. नाशरा संधू के नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद स्वीप कर दिया स्मृति ने, और स्मृति के इस स्वीप के बाद जैसे ही गेंद को वहां पर फील किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा के नज़दीक, तब तक आसानी के साथ एक रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया. 37 पर पहुंच चुकी हैं स्मृति अब 28 गेंदों का सामना करने के बाद, और कप्तान हरमनप्रीत 22 गेंदों का सामना करने के बाद 20 के व्यक्तिगत स्कोर पर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हैं. हमारे स्टैटिस्टिशियन तुषार त्रिवेदी बता रहे हैं कि हरमन और मंदना ने दोनों ने ही अब तक T20 मुकाबलों में 86-86 छक्के लगा चुकी हैं. अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को कट किया, लेकिन खूबसूरती के साथ वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गुलफिरोजा ने. शानदार क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन गुलफिरोजा के द्वारा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे अगर जरा सी भी चूक होती तो शर्तिया 4 रन वहां पर भारत को मिल सकते थे, लेकिन फिलहाल भारत इस 1 रन के साथ संतुष्ट। हरमनप्रीत भी 1 रन के साथ संतुष्ट। 67 पर भारत 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप की तरफ हटते हुए गेंद को स्वीप करना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को पूरी तरह से चूकी, अक्रॉस द लाइन खेला था, गेंद पैड पर टकराई, लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद पैड पर टकराई थी, जिसकी वजह से कोई अपील नहीं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से ओवर द विकेट, और इस बार कदमों का इस्तेमाल करके गेंद की पिच के नज़दीक पहुंचकर गेंद को वहां पर खेल दिया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन दौड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए बहुत तेज़ी से पलट लेंगे इससे पहले कि गेंद को फील्ड किया जा सके और थ्रो किया जा सके। इन 2 रनों के साथ भारत अब 69 2 विकेट के नुकसान पर। कुछ देर पहले जो औसत रनों की रफ्तार 5.85 के आसपास मंडरा रही थी, वो अब 6.47 रन हो गई है, और दोनों के बीच साझेदारी भी 51 रनों की हो चुकी है 45 गेंदों का सामना करने के बाद। पहली अर्धशतकीय साझेदारी भारतीय टीम की आज इस मुकाबले में।
2: Right, fifth delivery of the 11th over, and Smriti Mandhana unfolds an exquisite inside-out drive, gets 4 for it.
3: ये लगा आभा का चौका.
2: Delivered on a good length, however, Smriti Mandhana shimmied down the pitch, as they say in cricket commentary often. She put her dancing shoes on, shuffled towards the leg side, and that allowed the bat to come through. Inside out she went, the ball into the gap between long off and cover, and skipped away to the boundary. Mandhana into the 40s now. Next delivery, once again she uses her feet, steps out of her crease, however Nashra Sandhu darts one into her pads in order to ensure that she cannot free her arms. However, Mandhana is able to clip that one away towards deep mid wicket, pick up a single. End of the 11th, 74 for 2.
4: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
5: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
4: तुम हो ही भुलक्कड़।
5: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
6: बोलिए मत, जानिए आभा के बारे में।
7: आभा
6: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: बेटी मांगना ने 44 रन बना लिए हैं, मात्र 6 रन दूर है अपने अर्धशतक से, और अगर ये 6 रन वो बना लेती हैं तो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में ये उनका 34वां अर्धशतक होगा। और वैसे भी दर्पण उनके बारे में कहा जाता है कि इंग्लैंड में बल्लेबाजी उन्हें खासी रास आती है, 2021 के बाद से अब तक कुल मिलाकर इससे पूर्व 6 अर्धशतक वो जड़ चुके हैं। तो नए ओवर की शुरुआत शमीम के द्वारा, पहली गेंद और इनसाइड आउट, इस बार इस गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में है लेकिन कोई भी फील्डर आसपास नहीं, लंबी दौड़ वहां पर क्षेत्र रक्षक लगाते हुए गेंद को 1 या 2 गज अंदर रोका, और रिले थ्रो के द्वारा गेंद पहुंचती हुई वहां पर नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ, लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए स्मृति ने। स्मृति इन 2 रनों की बदौलत अब 46 के व्यक्तिगत स्कोर पर। भारत का स्कोर बढ़कर हुआ 76 2 विकेट के नुकसान पर। 11.1 ओवर की समाप्ति के बाद बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण, और निश्चित रूप से पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह के क्षेत्र रक्षण को सराह रहे हैं। एक बार फिर से शमीम की अगली गेंद और इनसाइड आउट, इस बार फिर से 30 गज के दायरे के अंदर जो फील्डर खड़े थे उनके ऊपर से गेंद निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र से। हालांकि आलिया रियाज वहां पर पहुंचे थी, लेकिन उनके लिए कोई मौका नहीं था।
3: ये लगा आभा का चौका।
1: इसके साथ ही अर्धशतक पूरा हो चुका है स्मृति मांधना का। स्मृति मांधना का ये 5वां अर्धशतक है T20 विश्व कप में, और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 34वां अवसर कुल मिलाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, और पाकिस्तान के खिलाफ यदि बात करें तो ये उनका 2रा अर्धशतक। क्या शानदार बल्लेबाजी की है। शुरुआत में भारत को झटके जरूर लगे, शेफाली वर्मा जो बल्लेबाजी के लिए उनके साथ आई थी प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, मात्र 6 रन बनाकर वो वापस पवेलियन लौटी थी। जमीवमा का बल्ला आज ज़्यादा चला नहीं, 1 रन का उन्होंने योगदान दिया, और 18 के कुल स्कोर पर वो पवेलियन की राह पकड़ बैठी। लेकिन के बाद से हरमनप्रीत कौर के साथ मिलकर स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर ने शानदार बल्लेबाजी की। अगली गेंद, गेंद को लॉफ्ट कर दिया, और एक बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर लॉन्ग ऑन की दिशा में।
3: ये लगा आभा का चौका।
7: माफ कीजिएगा, 4 रनों के लिए वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर पहुंची थी एक बाउंस के बाद, और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके, 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मुजाहरा इस समय करते हुए नजर आ रही हैं स्मृति मांधना, अपने हाथ पूरी तरह से खोल बैठी हैं इस अवसर पर वहां पर पाकिस्तान के गेंदबाज रमीम शमीम के खिलाफ। रमीम शमीम एक बार फिर से तैयार, इस बार फिर से गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। गेंद को खेलने के प्रयास में इस बार पूरी तरह से चूक गई थी,

0: दम के ऊपर से गिल्लियां जरूर बिखेर दी थी वहां पर विकेटकीपर मुनीबा अली ने, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। पिछला पैर बिल्कुल क्रीज के अंदर मौजूद था स्मृति का, और किसी तरीके की कोई क्षति की संभावना वहां पर भारत को नहीं थी। स्कोर अभी भी टिका हुआ भारत का 84, दो विकेट के नुकसान पर, दो गेंदों का आना बाकी है। उत्साह में वो गिल्लियां जरूर बिखेरी थी मुनीबा का, मुनीबा ने एक दबाव डालने की कोशिश की थी स्मृति के ऊपर, लेकिन स्मृति का पिछला पांव अंगद की तरह क्रीज में पूरी तरह से डटा हुआ था।
1: Two things. First of all, these are first signs of turn. This is the first ball that we have seen spinning in this particular match. The second thing is Smriti Mandhana had lunged forward and she had to stretch her back foot backwards as she realized that there was an opportunity of some sort of stumping, and in that she seems to have sprained her groin. She has currently taken her gloves off and she is down on the floor. The team physio has been summoned and Indian fans would hope that this is not anything serious. However, Pakistan might need to pull their socks up because this is some ordinary cricket for them. Right throughout this over, we saw that the offside field was up in the circle. Remember, there's a 25-yard circle in women's cricket and you're only allowed four fielders outside of it. Barring long off, everybody outside the circle was on the leg side, and with turn, Smriti Mandhana went inside out, which is one of her strengths, and Pakistan should have realized that this is the area that she will be looking to target, and yet they were bowling the off spinner and had the offside field up. So it was some ordinary cricket from them. Mandhana picked up a couple of boundaries in that direction, and after that, when they pushed one fielder back, Mandhana very cleverly went over mid-on and picked up a boundary in that direction as well. So some smart cricket. It has been a responsible innings, a class act from Smriti Mandhana all throughout the day today. She's currently batting on 54, and the good news is that the physio has done her job. Mandhana is back on her feet. 4,387 runs in T20 internationals against her name. She is the second highest scorer in all of women's T20 internationals. Only Susie Bates ahead of her with 4,720 runs. Next delivery of the over from Ramin Shamim. Delivers this one with a flatter trajectory so that Smriti Mandhana cannot use her feet. Delivers this one outside off as well. Mandhana rocks back and then wards it off towards the point fielder.
0: 145 ke lagbhag strike rate Smriti ka aur 54 run ab tak unke khate mein. Agle gend is baar off stump ki taraf pehle se hi shuffle karke aa chuki thi aur chaturai ke saath Shamim ne halaki gend को थोड़ा उनसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एन वक्त पर बल्ला अड़ाने में कामयाब रही एक रन के लिए, इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सकता डीप पॉइंट के क्षेत्र में। इसी के साथ ओवर की भी वहां पर समाप्ति हुई 85, दो विकेट के नुकसान पर। 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है, और साझेदारी की अगर बात करें तीसरे विकेट के लिए तो वो निश्चित रूप से इस समय काफ़ी बढ़िया 67 रनों की साझेदारी 53 गेंदों का सामना करने के बाद इन दोनों बैटर्स ने अब तक भारत के लिए अर्जित कर ली है। तो ये साझेदारी यहाँ से अगर और विकराल रूप लेती है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें दर्पण निश्चित रूप से बढ़ती चली जाएंगी। शुरुआत में ज़रूर ऐसा लग रहा था कि आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान के गेंदबाज भारतीय बैटर्स को कुछ परेशानी में डालने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हरमनप्रीत का बीच मैदान पर पदार्पण हुआ, एक विश्वास जो टीम में आया, उसके बाद जो एक साझेदारी पनपी वहाँ पर स्मृति के साथ, उसने कहीं ना कहीं अब भारतीय समर्थक दर्शकों को एक राहत की सांस दी है। सादिया इकबाल नए ओवर की शुरुआत करती हुई पहली गेंद को खेलने की कोशिश वहां पर स्मृति मंदाना की तरफ से, लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर थी और वाइड का इशारा वहां पर आता हुआ, बिना किसी हिचकिचाहट के लगभग 81 किलोमीटर की रफ्तार की ये गेंद थी, और कहीं ना कहीं इस बार अपनी दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाई थी सादिया। इस एक अतिरिक्त रन के साथ भारत का स्कोर बढ़कर के 86, दो विकेट के नुकसान पर, 3 अतिरिक्त रन उसमें शामिल है। अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच के नज़दीक पहुंचे और गेंद को लॉफ्ट कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन उनके हाथों से टकराती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई 6 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का छक्का।
0: सायरा जबीन वहां पर थी, उनके लिए एक मौका था लेकिन अपने उस हाथों में उस गेंद को कैद नहीं कर पाए। गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद छिटकती हुई सीमा रेखा से बाहर चली गई और इस तरह से ये एक और जीवनदान और साथ ही साथ भारत और स्मृति के लिए ये 6 रन। इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़कर के 93-2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद एक बार फिर से तैयार वहाँ पर। भारतीय इस जोड़ी ने अब तक काफ़ी मुतासिर किया है, खासतौर से स्मृति जिस तरह से अब बड़े शॉट लगा रही हैं और किसी तरह के का जो दबाव अपने ऊपर महसूस नहीं कर रही, वो भारतीय टीम के लिए निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। स्मृति 2 बारी ड्रॉप हो चुकी है, 27 के व्यक्तिगत स्कोर पर और फिर 55 के व्यक्तिगत स्कोर पर, 2 जीवनदान। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्मृति ने अब तक भारत के लिए 62 रन अर्जित किए हैं 40 गेंदों का सामना करने के बाद। सादिया की अगली गेंद और इस बार हरमनप्रीत ने बहुत ही आसानी के साथ पैडल स्वीप के अंदाज में गेंद को खेल दिया फाइन लेग की दिशा में। फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, गेंद सीमा रेखा को जाकर टकराती हुई 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: 2 फील्डर्स ने वहां पर कोशिश जरूर की थी, दौड़ जरूर लगाई थी लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से ज्यादा तेज थी। सादिया के इस ओवर में पहली गेंद वाइड थी और उसके बाद बल्ले से अब तक 11 रन आ चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 12 रन अब तक इस ओवर में भारतीय बैटर्स बटोर चुके हैं। फातिमा साना थोड़ा सा निराश होती थी, पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत ज़रूर मिली थी लेकिन कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा उठाने में पाकिस्तान के गेंदबाज कामयाब नहीं रहे। पिछली 12 गेंदों में 30 रन बने हैं जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल है। शानदार प्रदर्शन स्मृति और हरमनप्रीत कौर के द्वारा और इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को पॉइंट और कवर के बीच में से प्लेस करते हुए 4 रन हासिल कर लिए हरमनप्रीत कौर ने।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: क्या बेहतरीन अंदाज में इस चौके को हासिल किया। 30-10 के दायरे के अंदर 4 फील्डरों की एक लंबी कतार मौजूद थी लेकिन उनके बीच में पॉइंट और कवर क्षेत्र के बीच में गेंद को प्लेस करते हुए उस चौके को अपने पक्ष में किया। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़कर के आप 100 रनों का आंकड़ा भारतीय टीम पार कर चुकी है 12.4 ओवर की समाप्ति के बाद। विकेट अभी भी उसके 8 सुरक्षित हैं। सादिया की अगली गेंद इस बार फातिमा साना के द्वारा, जो शर्तिया 4 रन प्रतीत हो रहे थे उसे 1 रन में तब्दील कराने कामयाब रही फातिमा साना, बल्कि 2 रन वहां पर लिए अंतिम गेंद पर और इन 2 रनों के साथ स्कोर भारत का बढ़कर के अब 104 दो विकेट के नुकसान पर।
3: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
7: Massive over the previous one, 19 runs coming of it. Pakistan had brought Sadia Iqbal back because they understood that they need a wicket, they need to break this partnership. However, India have put their foot on the gas pedal. They are accelerating and they are looking to run away with it. Last 2 overs in totality have produced 30 runs. Smriti Mandhana on 64 of 41 and Harmanpreet Kaur, who was scoring at less than run a ball before that over, has also now upped the ante. She's on 30 of 26 deliveries. Ramin Shamim is given another over, which is an interesting ploy. They have the option of Nashra Sandhu, but looks like Pakistan are reluctant to bowl the left-arm spinner to Smriti Mandhana, who is ready to take everything on now. Off spinner to Harmanpreet Kaur and almost produces a chance. This was delivered with a flighty trajectory outside off on a drivable length, and Harmanpreet Kaur did not use her feet. Rather, she flayed her hands away from her body, got a bottom edge, a thick bottom edge, and the ball deflected onto her back leg. Luckily, not onto the stumps. Hence, the partnership is still intact. Next delivery, she uses her feet. It was delivered on a good length near the off stump. However, Harmanpreet Kaur was able to use a vertical bat in order to push it down to long on and pick up a comfortable single. With that, the Indian captain has moved to 31 of 28. 105 for 2 are India. Pakistan have used 5 bowlers so far. Sadia Iqbal, Fatima Sana, Tasmia Rubab, Ramin Shamim and Nashra Sandhu, which means they do not have a lot of flexibility going towards the death overs. Now around the wicket to the left-hander comes Ramin Shamim. Delivers this one outside off, and Smriti Mandana was almost expecting it, hence she shuffled towards the offside, then sat down on a knee and unfurled the sweep shot. However, she could not find the kind of connection that she was looking for. The ball

0: hit the top edge of the bat and then clattered into the grill of her helmet. We might see the mandatory concussion test following. Yes, indeed, the team physio is out in the middle. Going through the protocols, he would be asking Smriti Mandhana a few questions, making sure that she's not showing any symptoms of concussion. But the replay on my monitor shows an interesting thing, that Ramin Shamim released this one along with the seam, which means she wasn't looking to spin the ball on that occasion, because what we saw previously, that whenever she has tried to spin the ball and delivered it outside the off stump, Smriti Mandhana has gone inside out and hit her over the cover or extra cover region very skillfully, in a very exquisite, very stylish manner. Therefore, she's looking to bring the ball into the left-hander, but almost as if Mandhana expected it, and hence she made that shuffle towards the offside and attempted the sweep. Faulty execution, yes, but the shot selection was spot on.
1: जी, एक अच्छा द्वंद गेंद और बल्लेबाजी के बीच में नजर आ रहा है इस समय बर्मिंगम के एजबेस्टन के मैदान पर, और भारत ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 105 रन बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर 13.3 ओवर की समाप्ति के बाद। 64 रन बनाकर स्मृति मांधना खेल रही हैं, 42 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये रन बनाए हैं और 8 चौके और 2 छक्के शामिल हैं, लगभग 152 का स्ट्राइक रेट उनका है। और हरमनप्रीत कौर जो कि टीम की कप्तान हैं, 31 रन 28 गेंदों का सामना करते हुए उन्होंने अब तक बनाए हैं, 4 चौके उसमें शामिल हैं और 110 के आसपास का स्ट्राइक रेट उनका भी है। दोनों के बीच साझेदारी की यदि बात करें तो बढ़िया साझेदारी अब तक दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में तीसरे विकेट के लिए पनप चुकी है। 87 रनों की साझेदारी, 62 गेंदों का सामना करते हुए इन दोनों बैटर्स ने भारत की टीम के लिए यहाँ पर अब तक बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी वजह से भारत अब एक बेहतर स्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में नज़र आ रहा है। अगर आप भारत और पाकिस्तान महिला टीमों के बीच T20 मुकाबलों की बात करें तो कुल मिलाकर दोनों के बीच इससे पूर्व 16 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 13 भारत के पक्ष में और 3 पाकिस्तान के पक्ष में। और T20 विश्व कप की यदि बात करें तो 8 कुल मुकाबलों में इससे पूर्व भारत ने 6 और पाकिस्तान ने 2 मुकाबले जीते हैं। तो कुल मिलाकर अगर पे आप देखते हैं दर्पण, तो भारत का पलड़ा भारी है, और जैसा कि पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था इस मैच के शुरुआत से, शुरू होने से पूर्व, कि भले ही चिर प्रतिद्वंदी हैं भारत और पाकिस्तान की टीम, लेकिन इस मैच में पलड़ा भारत का ही भारी रहने वाला है। हालांकि शुरुआती झटके भारत को जरूर लगे, लेकिन उसके बाद स्मृति मंदाना ने और हरमनप्रीत कौर ने अपनी टीम के लिए पारी को बखूबी संभाला, और जिस तरह से उन्होंने अब तक 87 रनों की साझेदारी कर ली है तीसरे विकेट के लिए, भारत अब एक बेहतर स्थिति में इस मुकाबले में नजर आ रहा है। ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान पर चलता हुआ थोड़ी ही देर में वो संपन्न होगा, और 13.3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत ने 7.78 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब तक 105 रन बटोरे हैं 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी की यदि बात करें तो गेंदबाजी में कुल मिलाकर 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल पाकिस्तान की टीम ने अब तक किया है। सादिया इकबाल ने 3 ओवर किए हैं, कोई मेडल नहीं, 34 रन 1 विकेट उनके नाम, 11.33 का उनका इकोनॉमी रेट। फातिमा साना जो कि टीम की कप्तान है, उन्होंने अब तक 2 ओवर किए, कोई मेडल नहीं, 11 रन कोई विकेट नहीं, 5.50 का उनका इकोनॉमी रेट। अब तक की सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज रही हैं फातिमा साना टीम की कप्तान। तास्मिया रुबाब ने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, कोई मेडल नहीं, 18 रन 1 विकेट उनके नाम, 6 का उनका इकोनॉमी रेट। और रमीम शमीम ने अब तक 3.3 ओवर की गेंदबाजी में 25 रन दिए हैं, 7.14 का उनका इकोनॉमी रेट। ड्रिंक्स इंटरवल के बाद की पहली गेंद शमीम के द्वारा, और इस बार फिर से इनसाइड आउट खेलते हुए स्मृति मंदाना ने गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: भारतीय समर्थक दर्शक इस समय बर्मिंगम के एजबेस्टन ग्राउंड पर झूमते हुए, जिस अंदाज में स्मृति और हरमनप्रीत इस समय बल्लेबाजी कर रही हैं, दर्शक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए हैं, और हो भी क्यों ना, एक शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा इन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अब तक देखने को मिला है। 109 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर। 14वें ओवर की अभी 2 गेंदों का आना बाकी। अगली गेंद, और फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद की पिच के नजदीक पहुंचे, गेंद हवा में है, और इस बारी लपकने में कोई कोताही नहीं, वहां पर पाकिस्तान के खिलाड़ी ने गेंद को लपका, फातिमा साना ने जो कि टीम की कप्तान है और इसके साथ ही पारी समाप्त करती स्मृति मांधना के 68 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर भारत को तीसरा झटका लगता हुआ 109 के कुल स्कोर पर। लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी की है स्मृति मांधना ने।
0: She will get a standing ovation from the Indian spectators as she makes her way out of the ground, and she deserves it. Yes, she got two lives. She was dropped a couple of times. However, in life, it is about what you make of the opportunities that come to you. And Smriti Mandhana made the most of it today. 68 of 44, 9 fours and 2 sixes, only 16 dot balls in that innings. And she has steadied the ship after the early jolts. Well done, Smriti Mandhana. The interesting thing was that the drinks break was scheduled for the end of the 14th over, but because she was hit on the helmet in this particular over, the umpires rightfully called drinks early. And during that drinks break, we saw an animated conversation in the Pakistani huddle. And who was talking? It wasn't Captain Fatima Sana who was doing the talking. It was rather head coach Wahab Riaz. Now, if you have been following cricket, you know Wahab Riaz as a left-arm seamer who used to play for the Pakistan men's team. You would remember him from the 2011 World Cup semi-final where he took a fifer. More on that later. Meanwhile, Bharti Fulmali has made her way to the middle. Ramin Shamim delivers this one with a flighty trajectory on the pad line on the fuller side of good length. Bharti allows it to come close to her, nudges it into the vacant space in front of square leg and picks up a comfortable single. She's off the mark. 14 done. 110 for 3 India. Now remember folks, at the end of the 10th over, India was 65 for 2, which means in the last 4 over, if my math is correct, they've scored 45. So there has been an upsurge. There has been an increase in the net run rate. The intent has been there. However, the opposition is also realizing that the match is slipping away from their hands. And hence you saw that animated conversation from Wahab Riaz. And it seemed to have lit up a fire. Fatima Sana with that brilliant catch helped dismiss Smriti Mandhana. More on that after this ball. Sadia Iqbal begins her final over, delivers this one from around the wicket on a good length outside the off stump, in the channel outside off, I should say. Bharti Fulmali moves her back leg across, gets behind the ball and then uses a vertical bat to ward it off towards backward point. So a dot ball to mark the start of the 15th over. Next delivery from Sadia Iqbal, and Bharti Fulmali has been stumped. Or so it appears. The Pakistanis are celebrating and Fulmali wears an expression of doom and gloom on her face. Once again, Sadia Iqbal producing goods. India losing 2 wickets in quick succession, and the pendulum swings again. She anticipated that the batter would step out. Perhaps it was a little bit too soon from Bharti Fulmali. Maybe she should have looked at a few deliveries and tried to play herself in. But then they say that hindsight is always 6x6. She stepped out and tried to swing for the hills. The ball delivered on a good length in line with the off stump after pitching spun to evade the swinging bat, and wicketkeeper Muniba Ali did the rest. Bharti Fulmali is out for 1. India 110 for 4.
1: दो लगातार झटके भारतीय टीम को लगते हुए एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत अब बहुत तेजी के साथ विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ड्रिंक्स इंटरवल दर्पण हुआ और उसके बाद से जो स्क्रिप्ट है इस मैच की बहुत तेजी के साथ पलटती हुई नजर आ रही है एजबेस्टन के मैदान पर। फिलहाल ऋचा घोष जो कि भारतीय टीम के विकेट कीपर हैं, समय बीच मैदान पर शानदार खेल का प्रदर्शन उन्होंने वार्म अप मैच में किया था इंग्लैंड के खिलाफ। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को बैकफुट पे जाकर स्क्वायर कट कर दिया, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
1: जहां से वो पारी छोड़ी थी कमोबेश वहीं से उसकी शुरुआत करते हुए ऋचा घोष एजबेस्टन पर, और फील्डर वहां पर बैकफुट पॉइंट पर मौजूद जरूर था लेकिन उसके सामने से गेंद को प्लेस करते हुए गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने में कामयाब रही इस अवसर पर ऋचा घोष। ऋचा घोष ने चौके की मदद से अपना खाता खोला। भारत 114 4 विकेट के नुकसान पर, 3 गेंदों का आना बाकी है। सादिया इकबाल का एक कामयाब ओवर रहा है अब तक। आखिरी गेंद इस बार अराउंड द विकेट आते हुए कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद के पिच के नजदीक पहुंचते हुए ऋचा घोष ने इस गेंद को हल्के से पुश कर दिया मिडाउन की दिशा में खड़े हुए फील्डर की तरफ और एक रन आसानी के साथ बटोर लेंगे इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सके। 115 चार विकेट के नुकसान पर। 22 वर्ष की उम्र ऋचा घोष की सिलीगुड़ी से आती है जहाँ पर बहुत ज्यादा महिलाएं क्रिकेट खेलती हुई संभवतः आपको नजर नहीं आएंगी लेकिन ये उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं महिलाओं में से हैं जिन्होंने अपने लिए और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के लिए नाम पैदा किया है। महिला क्रिकेट का जहां तक सवाल है फील्ड पेसिंग में थोड़ा परिवर्तन वहां पर हरमनप्रीत कौर के लिए इस समय ऑफ साइड पर एक खिलाड़ी थर्ड मैन शॉर्ट थर्ड मैन एक बैकवर्ड पॉइंट एक कवर और दो खिलाड़ी इस समय बिल्कुल सीमा रेखा पर नजर आ रहे हैं लॉन्ग ऑफ और वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में अगली गेंद और इस बार हल्के से गेंद को पुश किया लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है वहां पर फातिमा साना गेंद को फील्ड कर लेंगी और एक रन तब तक बटोर लेंगी हरमनप्रीत कौर। इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर अब हुआ 116 चार विकेट के नुकसान पर। एक और बड़ी साझेदारी की आवश्यकता भारतीय फुलमली जो कि एक लंबे अरसे से भारतीय टीम में हैं थी बल्कि पदार्पण उनका हुआ था 2019 में लेकिन बहुत ज़्यादा मुकाबले उन्होंने भारत के लिए नहीं खेले थे मात्र 6 मुकाबले से पूर्व 7 वर्षों के बाद टीम में वापसी की थी अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट और वुमेन्स प्रीमियर लीग खेलने के बाद लेकिन आज उनका बल्ला ज़्यादा चला नहीं बहुत जल्दबाजी में वो स्लो खेल बैठी थी और स्टंप आउट होकर वापस पवेलियन लौटी थी। अंतिम गेंद पर एक रन और भारत को ओवर की समाप्ति 15 के बाद भारत 117 चार विकेट के नुकसान पर।
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं मुझे लगा तुम लाए हो
3: तुम हो ही भुलक्कड़
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली
5: जानिए आभा के बारे में
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: Just like a roller coaster, this match continues to go through thrilling bends, twists and turns. Just as my co-commentator Ashish said that India is holding sway, came the drinks break and after that, Pakistan came back with a couple of quick breakthroughs. As a result, we head into the final 5 overs with India's score reading 117 for 4. How many more will India be able to get? Nashra Sandhu, the left-arm spinner, begins the 16th over, delivers this one with a flighty trajectory. The ball dips on a full length near the off stump. It was delivered from around the wicket and Richa Ghosh is able to drive it towards the extra cover region and pick up a comfortable single. With that, Ghosh has moved to 7. She started off her innings in a sprightly manner, hit a 4 of the first ball that she faced. The next delivery, Harmanpreet Kaur uses her dancing shoes, gets down to the pitch of the ball. It was delivered on the shorter side of good length, outside the off stump, and then very deftly pushes it towards the extra cover fielder. No runs to be had on that occasion. So just the single of the first couple of balls of Nashra Sandhu's over. The next delivery, hurled in with a flatter trajectory at the off stump, and Harmanpreet Kaur opens her shoulders and then stabs this one towards the fielder who is stationed in front of point. No runs to be had of that one as well. 118 for 4. The score remains at a couple of dot balls at this stage of the innings, like gold for Pakistan. Next delivery, Harmanpreet Kaur unfurls what is widely known as her favorite shot, the sweep shot. It goes aerial before the leg side sweeper can get to the ball. It bounces a couple of times and that allows 2 runs and there is an overthrow. However, Harmanpreet Kaur, was she alive to the possibility of a third run? Remains to be seen. She was running very gingerly and had almost overrun by the looks of it. And therefore, it appears that she has not taken the third run, which was definitely on due to the overthrow. Harmanpreet Kaur would retain strike. Next delivery of the over, she backs away from the stumps and then unfurls a robust cut shot. However, the ball goes straight to the fielder station in front of point. Another dot ball, which means 5 deliveries into the 16th over. Just when you thought that India would be accelerating, this over has produced only 3 runs so far. The last ball, India would want a boundary. Nashra Sandhu would want to tidy up with a good ball, A good ball would be anything less than a boundary for her. Delivers this one outside off, and Harmanpreet Kaur unfolds the sweep shot. However, a very good diving effort at the mid-wicket boundary keeps her down to two. By the looks of it, it's Aisha Zafar who has dived to her right and saved what looked like a certain boundary. So only two runs of the final ball as well. That over produces only five. A good one for Pakistan. India would want more than five runs and over at this stage. 122 for four.
1: 16 ओवर के बाद 122 चार विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर है. जैसा कि आप जानते हैं कि टॉस भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जीता था और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पहला विकेट भारत ने 6 पर गंवाया, दूसरा 18 पर, तीसरा 109 पर और चौथा विकेट भारत का 110 पर गिरा था. तीसरा और चौथा विकेट ड्रिंक्स इंटरवल के फौरन बाद गिरा और दर्पण, जैसा कि अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि जब भी कोई ब्रेक होता है क्रिकेट में तो उसके बाद बहुत भावना बढ़ जाती है कि जो कंसंट्रेशन होता है, जो एकाग्रता होती है बैटर की, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और उसका खामियाजा अक्सर बैटर्स को भुगतना पड़ता है. और कोचिज अक्सर कहते हैं कि जब भी ड्रिंक्स ब्रेक हो या किसी भी तरीके का व्यवधान हो और उसके बाद खेल शुरू हो तो थोड़ी देर तक आप अपनी एकाग्रता को वापस हासिल करने की कोशिश कीजिए और फिर बड़े शॉट के लिए जाइए. फिर अलग लेके गेंद और इस बार इस गेंद को इनसाइड आउट खेलना चाहते थे ऋचा घोष. बहुत अच्छे तरीके से गेंद बल्ले पर आई नहीं, काफ़ी देर गेंद हवा में थी, लेकिन एक रन जरूर मिल जाएगा इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सके. इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़कर के 124 चार विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर.
0: यू आर राइट आशीष दैट आफ्टर अ ब्रेक द बैटर शुड टेक टाइम, बट द क्वेश्चन इज Do we have time in T20 cricket? Harmanpreet Kaur, meanwhile, on strike. She is looking desperate and she unfurls an aerial flick shot. There's a fielder down there and she's caught it at the brink of the boundary. Fatima Sana punches the air in delight. She has dismissed her counterpart. The Pakistani captain gets out. The Indian captain, Harmanpreet Kaur, was looking desperate for a big shot. We talked you through it in the previous over as well. She shuffled towards the offside and hence that delivery was received by her on her pads. She unfurled an aerial flick shot and almost cleared the square leg boundary, almost being the key word. However, Natalia Parvez, who was stationed in the deep, hopped up and caught it. A good catch and India have now lost their fifth wicket. 1, 2, 3, 4, 5.
1: शानदार कैच वहां पर लपका नतालिया परवेज ने और कहना होगा कि कप्तान ने कप्तान का विकेट ले लिया. पाकिस्तान के कप्तान फातिमा साना गेंदबाजी के मोर्चे पर थी और हरमनप्रीत ने एक बार फिर से गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में सीमा रेखा से बाहर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार अपने प्रयास में वो कामयाब नहीं रही, उचित दूरी नहीं दे पाई और गेंद को वहां पर बहुत ही खूबसूरती के साथ नतालिया परवेज ने अपने हाथों में कैच किया और हरमनप्रीत की पारी को समाप्त कर दिया. 36 के कुल स्कोर पर ये 36 रन 35 गेंदों का सामना करने के बाद हरमनप्रीत कौर ने बनाए थे. और अब दीप्ति शर्मा, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से आती हैं, वो इस समय बीच मैदान पर हैं. 16.2 ओवर के बाद भारत 123 पाँच विकेट के नुकसान पर. 92 पारियों में 1210 रन उन्होंने अब तक बनाए हैं, लगभग 105 का स्ट्राइक रेट है. और दीप्ति शर्मा ने पिछले ओडीआई विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन किया था, न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी, जिसकी वजह से वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही थी. तो देखना ये है कि इस T20 विश्व कप में क्या कुछ कर पाती हैं. फिलहाल पहली ही गेंद पर आकर के उन्होंने अपना खाता खोल लिया 2 रनों के साथ और इन 2 रनों की वजह से अब भारत का स्कोर बढ़कर के 125 पाँच विकेट के नुकसान पर.
0: That one was delivered from around the wicket by Fatima Sana onto the pad line. Deepti Sharma using her wrist to flick it away towards the mid-wicket region, and the running between the wickets was pretty impressive. This is something that Deepti has worked upon. Talk more about that after this ball. Fatima Sana once again around the wicket with the keeper up to the stumps, runs in, delivers this one on a drivable length, and Deepti Sharma hits it aerial. Luckily for her, the ball bounces before it goes to the extra cover fielder. It was a slowish ball from Fatima, just 92.2 kilometers per hour, and Deepti Sharma will breathe a sigh of relief. 105, her strike rate, as Ashish just told you. However, that is a thing.

0: herself or set her eyes, as we say. Meanwhile, on the other end is Richa Ghosh, who's known to explode from ball one. One delivery remaining in the 17th over. Ghosh on strike. He runs in, does Fatima Sana, this time from over the wicket. Keeper still up to the stumps, and an Orai delivery. This one from the Pakistani skipper, way down the leg side. Muniba Ali, the wicket keeper, did really well to dive towards her right and ensure that the ball was stopped. Otherwise, it could have gone on to kiss the boundary cushions in the fine leg region as well. It ends up being only a wide. Claire Polosak, the umpire, extends her arm to signal that. So an extra run and an extra delivery to India. 127 for 5. Final delivery of the 17th over coming up. Here comes Fatima Sana. Delivers a leg cutter. However, the length is very short. A long hop at the pad line, and Richa Ghosh swipes her bat across in order to put this one towards the deep square leg region, where the fielder dives and stops it near the boundary, and hence Ghosh can get only a couple of runs of it. End of the over. 129 for 5.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में। यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: पाकिस्तान के कप्तान फातिमा साना का एक कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ। गेंदबाजी के विशेषण की बात करें तो 3 ओवर, कोई मेडल नहीं, 18 रन और एक सफलता जो कि उन्होंने अपने पिछले ओवर के दौरान हासिल की। हरमनप्रीत कौर के रूप में सबसे इकोनॉमिकल गेंदबाज हैं अब तक इस पारी में पाकिस्तान की टीम का, जहां तक सवाल है। हरमन की यदि बात करें तो ये 12वां अवसर, जबकि वो प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान के द्वारा आउट की गई T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में, और पाकिस्तान के खिलाफ ये दूसरा अवसर था जबकि प्रतिद्वंदी टीम के कप्तान ने उन्हें आउट करके पवेलियन चलता किया हो। नए ओवर की शुरुआत नाशरा के द्वारा, और पहली गेंद को वहाँ पर खूबसूरती के साथ 2 रनों के लिए खेल दिया। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ करके पहुँचता हुआ 131, 5 विकेट के नुकसान पर 17.1 ओवर के समाप्ति के बाद।
0: दीप्ति शर्मा वॉज a little bit slow to turn around for the second run and hence almost found herself in trouble. However, a big dive saved her. It was Diana Beg who was stationed at deep backward square leg. She ran towards her right and picked that ball up and hurled a flat throw towards wicketkeeper Muniba Ali. Diana Beg is not a part of Pakistan's playing 11 today, but she's on the field as a substitute fielder. Next delivery from Nashra Sandhu, flatter trajectory. Deepti Sharma wanted to step out of her crease. However, she aborted that plan as soon as she saw the trajectory of the ball. In the end, adjusts into a defensive dab towards the offside. So another dot ball for our scorer Rajit Sinha to mark.
4: लगभग 68 किलोमीटर की रफ्तार उनकी गेंदों की, और इस बार इस गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ हटते स्वीप के अंदाज में खेला। गेंद वहां पर शॉर्ट लाइन लेग पर खड़े हुए फील्डर के पास पहुंची थी, लेकिन बहुत तेजी के साथ दौड़कर अपने बल्ले को क्रीज में टिकाने में कामयाब रही थी। इस अवसर पर ऋचा घोष, और वहां पर रनआउट की जो एक संभावना बनी थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई इस 1 रन की मदद से, जिसमें जोखिम भरपूर था। भारत 132, 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन उतनी ही रनिंग बिटवीन द विकेट ऋचा घोष की तारीफ करनी होगी इस अवसर पर, जिस रफ्तार के साथ उन्होंने वो दौड़ लगाई और उस 1 रन को मुकम्मल किया। दाएं हाथ की ऋचा घोष तैयार एक बार फिर से अगली गेंद का सामना करने के लिए। नाशरा संधु के द्वारा अंपायर और स्टंप के बीच में से निकलती हुई ये गेंद उनके हाथों से ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। अपने घुटने को जमीन पर टिकाते हुए स्वीप करना चाहती थी, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में किसी किस्म का कोई संपर्क नहीं था, और गेंद को वहाँ पर आसानी के साथ मुनीबा अली ने अपने दस्तानों में कैद कर ली। एक क्षण के लिए शायद लगा था कि गेंद और बल्ले के बीच में कहीं कोई संपर्क तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पवेलियन छोर की तरफ से एक बार फिर से नाशरा संधु तैयार हैं अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर। लेग स्टंप की तरफ हटते हुए कट करने के लिए जगह बनाना चाहती थी, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जाकर लगी, और गेंद पहुंची जरूर कवर क्षेत्र में 30 गज के दायरे के अंदर, लेकिन रन बनाने का कोई अवसर ऋचा घोष के पास नहीं था। अंतिम गेंद लेकर नाशरा संधु तैयार। लगातार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की नीचे रफ्तार की गेंदों को कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा तेज़ शॉट लगाने में भारतीय बैटर्स को कोई अवसर नहीं मिल रहा। अगली गेंद फिर से

0: സമയം 8:44:45. ഇനി 8:45 സമയ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की. दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा. दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना. महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत. ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की. दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं. दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया. इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है. 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे. इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं. इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं. इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है. इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स.
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं. उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं.
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है. और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noël Barrot and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolos. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
8: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
7: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
8: दुनिया में अलग-अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं अलग-अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ-साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है
7: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
9: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
7: The French president also lauded India's achievements, including Chandrayaan mission, as examples of India's technological excellence.
9: With the Chandrayaan 3 mission in July 2023 that allowed the very first moon landing on the south pole of the moon that was led in record time by ISRO with cost, with record force, is a demonstration in terms of strength, innovation, but also in terms of implementations at the industrial level and something that is very concrete. And this has to lead many countries of the world to see India how it's like today. Not only a country full of contractors, no, it's a country of innovation.
7: Speaking at the event, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said India is emerging as a trusted and reliable partner at a time of global geopolitical and technological transformation.
10: The world seeks trusted and reliable partners, and that is what India brings to the table. We bring the energy of the world's youngest large nation, the finest talent pool available, and a scale that few can match.
7: Following the inauguration, Prime Minister Modi and President Macron visited the exhibition and interacted with startup founders, researchers, and investors participating in the event. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. We have more from our correspondent.
11: A ceremonial welcome will be accorded to the Prime Minister on Monday morning. Sri Narendra Modi will meet President Pellegrini and Prime Minister Fico during the visit. The Indian diaspora in Slovak Republic is highly excited about the maiden visit of an Indian Prime Minister to the country. Smithy M. Palluruthi, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
7: Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation and a rapidly expanding innovation ecosystem. Our correspondent has filed this report.
12: Programs such as Swachh Bharat, Digital India, Digital Health, Deep Ocean Mission and Gaganyaan have helped position science and innovation at center of India's development journey. Missions such as Chandrayaan 3 have transformed space science into a subject of widespread public interest, creating unprecedented awareness and engagement among citizens across the country. India's growing capabilities in frontier sectors such as space, atomic energy and advanced technologies have strengthened the country's global standing. With Suparna Sekia, Ishani Yadav, Akashvani News, Delhi.
7: So National Testing Agency NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download their admit cards from NTA's official website, neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on the 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district this afternoon. 5 injured were shifted to Pandharpur for treatment. An investigation has been launched into the incident. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an ex gratia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the News at 9. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature on 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government to bring ease of living in the lives of the country's citizens. A report.
13: Twelve years of reforms have become 12 years of trust. Whether it is GST, faceless tax or Digital India, every step has made citizens feel that they too are nation builders. Comprehensive revisions to income, tax slabs and rates in the Union Budget 25-26 have been designed to benefit all taxpayers. Next generation GST has simplified taxation and made life easier for citizens. Talking to Akashwani News, film producer and distributor Samir Dixit said GST reforms are one of the biggest policy decisions of this government.
14: The GST has completed 10 years and now we have got a very better structure of GST for the all services and product. And as far as the film production and the other things are concerned, so that way now the GST becoming more the user friendly and it is fully online. It's a good and simple tax and that is now it is happening.
13: Narendra Modi government has embraced digital technology and has leveraged this technology within both the realms of politics and policy making. India is poised to become a global leader in 6G technology. The goal is to contribute approximately 10% to global patents related to 6G. Talking to Akashwani News, Mahendra Tiwari, CEO of Ethernet Express, said Digital India is helping people living in remote areas and people who are at the bottom of the pyramid.
5: Digital India is going to shape up the country of ours. This paradigm shift is truly worth appreciating. The initiative like BharatNet, which is being complemented by the infrastructure which is being created by telco, or the infra providers is something which is going to surely pave path for a glorious future of India.
13: Over the past 12 years, NDA government has envisioned the nation's dreams on a grand scale and worked to ensure saturation of programs designed to enhance public amenities. Ease of living is no longer just a phrase, it has become the government's guiding mantra. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
7: Indian Embassy in Oman has said that all 14 Indian crew members from the Indian flag mechanized sailing vessel Virat 1 have been rescued. The vessel had suffered an engine failure off the coast of Oman. The embassy said that the crew members are safe and in good health and are on board another vessel MV Jabal Ali 9. The embassy added that the crew members are being headed to Mumbai. Indian Embassy in Muscat, Oman today said it remains in active coordination with local Omani authorities, port officials and the shipping company regarding Indian national Nishant Urthanathan, who died on board MT Celestial.

0: shake her head all she wants now. However, the truth is that catch is expected to be taken on a good length, and Muniba Ali stepped out like she had decided yesterday, tried to go inside out, ended up slicing the ball and running towards her left from backward point. Arundhati got to the ball, got two hands to it, and yet couldn't hold on. Next delivery, a good looking drive towards deep cover, produces a single and marks the end of the fourth over. 30
1: Arundhati ready ne unka catch chhoda aur nishchit roop se is tarike ki jo chetrakshan में चूक है वो भारतीय टीम पर दबाव काफी बढ़ा सकती है, भारतीय टीम के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। भारतीय टीम ने आज बल्लेबाजी अच्छी की, खासतौर से स्मृति मंदाना की बात करें या फिर हरमनप्रीत की बात करें या ऋचा घोष की बात करें, लेकिन अब भी गेंदबाजी में वो धार देखने को नहीं मिली है जिसके लिए भारतीय टीम से अपेक्षा की जा रही है।
0: इंटरेस्टिंग थिंग देयर आशीष, इवन स्मृति मंदाना वाज ड्रॉप्ड ट्वाइस, लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर ड्रॉप्ड ट्वाइस, द सेम हैज हैपेंड इन पाकिस्तान्स इनिंग्स एज वेल, एंड इंडिया डेस्परेटली नीड टू पुल देयर सॉक्स अप, दे डेस्परेटली नीड अ विकेट, बिकॉज इफ दिस पार्टनरशिप गोज ऑन फॉर अ व्हाइल प्रेशर विल बी ऑन इंडिया एंड इन ट्रबल। Call whom? Call Deepti Sharma. Deepti Sharma has been summoned and delivers a very good delivery to start off with. Slow through the air, just 70 kilometers per hour, delivered from over the wicket, pitches round about the off stump and then spins sharply to beat Muniba Ali's tentative poke. A good start from Deepti Sharma. However, can she produce a wicket in this over and swing the momentum towards India? Muniba Ali shuffles towards the offside. Deepti Sharma goes even wider. However, Muniba Ali is able to stretch her arms out and slash this one straight to the fielder station at cover point. Two dot balls to start off with. Deepti Sharma's beginning has been solid, but can she continue bowling in tidy areas?
1: दीप्ति शर्मा से काफ़ी उम्मीदें हैं भारत को, दाएं हाथ से ओवर द विकेट स्टंप के नज़दीक से मुनीबा अली के लिए, और इस बार इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे, कामयाब जरूर रहे लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं और वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया स्क्वायर लेग की दिशा में 25 गज के दायरे के अंदर बिना किसी रन के। स्कोर पाकिस्तान की टीम का 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल 37 रन है बिना किसी विकेट के नुकसान के, जबकि पांचवा ओवर इस समय प्रगति पर है। अगली गेंद फ्लाइटेड, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंचे, गेंद को उठा करके खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, मिड विकेट क्षेत्र में गेंद को वहां पर फील्ड किया गया, क्षेत्र रक्षक गेंद से काफी दूर था लेकिन एक रन जरूर मिल जाएगा इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे वापस दीप्ति शर्मा के पास। इस एक रन की मदद से 38 पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर, मुनीबा पहुंचे 24 पर। 20 गेंदों का सामना करने के बाद उन्होंने ये 24 रन बनाए हैं और गुल फिरोजा इस समय 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। रनों की रफ्तार को थामने में जरूर कामयाबी हासिल हुई है दीप्ति शर्मा को इस ओवर के दौरान, पहली चार गेंदों में ये पहला रन था। अगली गेंद तो और रिवर्स स्वीप करने की कोशिश, गेंद हवा में और वहां पर कोई गलती नहीं की, पहला झटका लगता हुआ गुल फिरोजा के रूप में पाकिस्तान को ये झटका लगा है और दीप्ति शर्मा ने अपने पहले ही ओवर के दौरान ये सफलता भारत को दिलवा दी है। जिस उम्मीद के साथ हरमनप्रीत कौर ने उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया था, निराश नहीं किया और जैसे ही इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की वहां पर कोई गलती नहीं हुई और बहुत आसानी के साथ कैच कर लिए गए इस अवसर पर पाकिस्तान के गुल फिरोजा।
0: Catch taken at backward point by Bharti Phulmali. Now, interesting thing was that Deepti Sharma pushed backward square leg to the boundary. She also pushed mid wicket to the boundary. Remember, you are only allowed two fielders outside the 25-yard circle in the power play. So both those fielders were on the leg side and Deepti went around the wicket for this delivery, which means she wanted to give away a single by delivering it on the pad line. Gul Firoza was very well aware of it and therefore she tried to manufacture a shot by flipping in her stance and going over backward point. However, she wasn't able to find the desired elevation and Bharti Phulmali did the rest. And now inbox Aisha Zafar, who last month against Zimbabwe, which is not considered the strongest team in the world, but against that side she scored a century. Remember what I told you, in women's T20 internationals only 3 centuries have been scored by Pakistani batters, 2 by Muniba Ali, 1 by Aisha Zafar, both of them out in the middle. Last delivery of the 5th over is coming up. Deepti Sharma currently in play, she is delivering the last delivery of her first over, delivers this one on the pad line and there comes the sweep shot, well placed by Aisha.

0: Zafar, she beats the diving shot fine leg fielder to her left. However, the deep backward square leg fielder will be able to run around and cover up for the mistake done inside the inner ring. Hence, only a single end of the fifth. 39 for one.
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: तो दीप्ति शर्मा का कामयाब ओवर समाप्त होता हुआ भारत के लिए पहली सफलता उनके नाम के आगे दर्ज हो चुकी है और अब तक 162 विकेटें उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में हासिल की है, जो कि इस विश्व कप में खेलने वाले तमाम गेंदबाजों में से सबसे ज्यादा है। क्या शानदार प्रदर्शन रहा है दीप्ति शर्मा का, न केवल गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी में भी उन्होंने समय समय पर जौहर दिखाए हैं। और श्रियंका पाटिल के स्थान पर, जिन्होंने दो ओवर की गेंदबाजी की है लगातार, उनके स्थान पर अब अरुंधति रेड्डी गेंदबाजी के मोर्चे पर नजर आ रही हैं 39 एक विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद।
0: A slight delay because there's some problem with the zinc bail which is now being replaced. Looks like the replacement has been done and now we are set to go. Arundhati Reddy to bowl what will be her second over.
5: पहले ओवर में 8 रन उन्होंने दिए थे। देखना है कि अपने इस दूसरे स्पेल के पहले ओवर में क्या कुछ कर पाती हैं। पहली गेंद ओवर द विकेट, लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम्स के द्वारा एक रन उपहार के रूप में मिलता हुआ पाकिस्तान की टीम को। और इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 40 एक विकेट के नुकसान पर 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम एज वेस्टर्न पर इस समय भारतीय गेंदबाजी का मुकाबला कर रही है। अगली गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के से पुश किया, लेकिन एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद 25 गज के दायरे के अंदर फील्ड कर ली गई और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को वहां पर समाप्त कर दिया गया।
0: एंड देयर कम्स अ फ्लैट थ्रो टू द कीपर who fails to gather it once again. However, the overthrow doesn't cost India anything, but Richa Ghosh needs to tighten up.
5: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, कहीं ना कहीं न केवल एक कैच उन्होंने छोड़ा है बल्कि जो स्टंप के पीछे गैदरिंग है उनकी वो आज उतनी साफ नहीं है। अगली गेंद इसे बेच और उठा करके खेल दिया मिड विकेट क्षेत्र में, इस बार जफर ने गेंद सीमा रेखा से बाहर 5 रनों के लिए, 4 रनों के लिए माफ कीजिएगा।
6: ये लगा आभा का चौका।
5: 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंची हैं आयशा जफर इस चौके की मदद से। और आयशा जफर, जिसके बारे में अभी दर्पण बता रहे थे कि जिम्बाब्वे के खिलाफ जो घरेलू T20 मुकाबले हुए थे उसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और 102 रन बनाए थे पहले ही मैच में और उसमें आउट भी नहीं हुई थी। 47 गेंदों में वो 102 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। अगली गेंद बैकफुट पे जाकर खूबसूरती के साथ कट कर दिया और गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई एक बार फिर से 4 रनों के लिए।
6: ये लगा आभा का चौका।
5: पहले ओवर में 8 रन दिए थे अरुंधति रेड्डी ने और इस ओवर में लगातार यहां पर रन लुटाती हुई नजर आ रही है। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद लगातार 2 चौके और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी लाइन और लेंथ पर ज़रूर सोचना होगा। बहुत ज़्यादा रूम ना दें वो बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने के लिए, कुछ ऐसा उनको करना होगा। एक बार फिर से तैयार, इस बार इस गेंद को बैकफुट पे जाकर हल्के से पुश किया, दाईं तरफ जाकर गेंद को फील्ड करने की कोशिश जरूर की थी अरुंधति ने वहां पर, लेकिन अपने इरादे में कामयाब नहीं रही और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जा सके बहुत तेजी के साथ दौड़कर 1 रन और जुटा लिया पाकिस्तान की आयशा जफर ने। आयशा जफर इस 1 रन की मदद से दोहरे अंक में 10 के व्यक्तिगत स्कोर पर 5 गेंदों का सामना करने के बाद मुनीबा अली 24 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करेंगी। आज काफ़ी बढ़िया और आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन उन्होंने अब तक किया है एज वेस्टर्न के इस खूबसूरत मैदान पर। 20 गेंदों में 24 रन अब तक वो बना चुकी हैं। 2 गेंदों का आना बाकी है इस ओवर में, जो कि पावर प्ले का अंतिम ओवर है। रेड्डी की

0: स्मृति मांधना ने बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे की तरफ डाइव लगाते हुए उस गेंद को अपने हाथों में कैद किया और ये कामयाबी भारत की झोली में डाल दी।
1: विकेट वंस अगेन फॉर दीप्ति शर्मा, शी डिलीवर्स एवरी टाइम इंडिया नीड्स हर टू। व्हेन शी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अटैक, व्हाट डिड वी से? इन ट्रबल कॉल दीप्ति, and she has delivered with not just one but two wickets now. Two wickets in her 1.3 overs, 2 for 3, and in walks youngster Saira Jabeen now. Saira Jabeen and Muniba Ali in the middle. Pakistan still needing 117 in 80 balls here at Edgbaston, which has been an iconic ground and has witnessed many iconic moments in cricket, is witnessing another iconic match because both the teams are tussling it out there. Deepti Sharma still around the wicket, delivers this one on a good length, slow through the air, just 70 kilometers per hour, and that allows the batter to get onto the front foot and then nudge it towards backward square leg and pick up a comfortable single. In case you've just joined us, Pakistan have just lost their second wicket. Smriti Mandhana with an excellent catch at short fine leg, for which she had to fling herself forward and grab it inches from the ground, produce that wicket of the bowling of Deepti Sharma. Meanwhile, the next delivery, Deepti beats the bat. Good length, pitches outside off and then spins further away. Muniba Ali flayed her hands away from the body. The ball whizzed past the outside edge and Richa Ghosh once again fumbled in collection. Final ball of the over on a drivable length. In a measured manner, Muniba knocks it towards deep extra cover, where Jemima Rodrigues mops up a comfortable single added. Pakistan moved to 55 for 2 at the end of the 7th.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
0: अपना पांचवा T20 विश्व कप खेल रही दीप्ति शर्मा ने दो सफलताएं अब तक अपने पहले दो ओवर के स्पेल में हासिल कर ली हैं, और भारत की अब तक एकमात्र सफल गेंदबाज हैं। और उनका गेंदबाजी का विश्लेषण यदि आप देखें दर्पण, तो दो ओवर में कोई मेडल नहीं, 5 रन उन्होंने दिए और 2 सफलताएं, ना केवल सफल बल्कि साथ ही साथ किफायती भी, और जिसकी दरकार है भारत को गेंदबाजी में परिवर्तन। श्री चरनी इस समय अरुंधति रेड्डी के स्थान पर आती हुई पहली गेंद और इस गेंद को स्वीप करने के अंदाज में खेला, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद है। गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा जेमिमा रॉड्रिक्स के द्वारा, लेकिन तब तक 1 रन के लिए छोर बदल लिया था दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से मुनीबा का स्कोर हुआ 28, 25 गेंदों का सामना करने के बाद। और अब वहाँ पर श्री चरनी की यदि बात करें तो 21 मैचों में अब तक 28 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। शानदार प्रदर्शन रहा है चरनी का पिछले कुछ समय में। बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिन गेंदबाज हैं और अराउंड द विकेट आते हुए इस अवसर पर 1 रन के लिए खेल दिया था उस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में। इस 1 रन की मदद से सायरा का स्कोर पहुँचा 2 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर हुआ 57 2 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर इस समय प्रगति पर है। गेंद की रफ्तार यदि आप देखें तो चाहे श्री चरनी की बात करें या फिर दीप्ति शर्मा की, बहुत ज़्यादा गति नहीं दे रही हैं अपनी गेंदों को। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया वहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन का और इजाफा होता हुआ मुनीबा अली के खाते में। इस 1 रन की मदद से मुनीबा पहुँची हैं अब 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर और पाकिस्तान की टीम 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए फिलहाल पहुंच गया है 58 2 विकेट के नुकसान पर। दोनों सफलताएं दीप्ति शर्मा के खाते में। श्री चरनी की अगली गेंद और लीडिंग गेंद और इसके साथ ही एक और सफलता वहां पर भारत को। श्री चरनी जो कि बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई हाल फिलहाल में नजर आ रही है, एक बार फिर से उन्होंने अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा है एजबेस्टन के इस खूबसूरत मैदान पर। और सायरा जबीन ने जबकि इस गेंद को खेलने की वहां पर कोशिश की थी अक्रॉस द लाइन, बल्ले का मुंह बहुत जल्दी बंद हो गया था, गेंद बल्ले के बाहरी किनारे पर लगती हुई लीडिंग एज लेती हुई हवा में उछली और 25 गज के दायरे के अंदर वहां पर उस गेंद को लपकने में किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती कप्तान हरमनप्रीत ने। तो इस तरह से पाकिस्तान को तीसरा झटका लग चुका है। एक बार फिर से भारतीय टीम इस समय बहुत तेजी के साथ इस मुकाबले में वापसी करती हुई, हालांकि एक समय जिस तरह से उनके प्रारंभिक बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं, लेकिन 38 के कुल स्कोर पर भारत को पहली सफलता दीप्ति शर्मा ने दिलाई और अगले ही ओवर में एक और कामयाबी उन्होंने दिलाई दी थी आयशा जफर का विकेट लेकर। और मजे की बात है गुल फिरोजा और आयशा जफर दोनों ही 12-12 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए थे।
1: राइट, सो थर्ड विकेट डाउन नाउ, नतालिया परवेज मेक्स हर वे टू द मिडल एंड श्री चरणी प्रोड्यूसिंग द गुड्स फॉर इंडिया, लेफ्ट आर्म स्पिनर, द preferred left arm spinner should I say, why did I say that, we'll tell you after this ball. Around the wicket she comes in to deliver what will be the fifth ball of the eighth over. This one, an attempted slog sweep from Natalia Parvez for Kranti Gaur, can run in from long on, pick the ball up and hurl it back towards the 22-yard strip. A comfortable single will be taken, so not a very convincing shot, but it allows Natalia Parvez to get off the mark. Remember, Radha Yadav is a part of the squad and she is an all-rounder, she can bat a bit too. However, Team India prefers Shri Charani over her, even though she's a bit of a liability in the field or has not really been that good in the field of late. She has also, she doesn't have that kind of batting credentials either, yet she brings so much with the ball in her hand that India prefer her. The next delivery, which was the final one of the 8th over, was delivered on a drivable length. Muniba Ali inside edged it onto her pads. End of the 8th, 59 for 3 are Pakistan. And they are in pursuit of 171. Still need 113 more in the remaining 72 balls. So Shri Charani and Deepti Sharma, the successful bowlers for India. Deepti Sharma will continue and she will deliver her third over. Big appeal for LBW and shakes her head. Does umpire clear Polosak? This one was delivered from around the wicket, pretty much in line with the stumps. At least it looked so to my untrained eye. Attempted a sweep there, did the batter, and did not connect. And interestingly, India have challenged the decision. They have opted for the use of DRS and Claire Polosak makes the signal over to TV umpire.
0: तो भारत के लिए यहाँ पर एक और अवसर है, हालांकि अपील बहुत विश्वास के साथ की थी वहां पर दीप्ति शर्मा ने, अंपायर क्लेयर पोलोसेक ने उसे नकार जरूर दिया था, लेकिन एक लंबी मंत्रणा वहां पर दीप्ति शर्मा, विकेट कीपर ऋचा घोष और कप्तान हरमनप्रीत के बीच में हुई थी और उसके बाद हरमनप्रीत ने फैसला लिया कि वो DRS के लिए जाएंगे। तो देखना यह है कि टीवी अंपायर का वहां पर क्या निर्णय आता है। निश्चित रूप से भारतीय टीम को काफ़ी उम्मीदें हैं, जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज दीप्ति शर्मा अपनी इस अपील पर नजर आ रही थी और मुनीबा अली 29 रन बनाकर खेल रही हैं, नतालिया परवेज 1 रन बनाकर खेल रही हैं। इस समय प्रश्न चिन्ह उन्हें लेकर के है कि नतालिया परवेज क्या मैदान पर रहेंगी, बल्लेबाजी को जारी रखेंगी या फिर पवेलियन की तरफ वापसी करनी होगी।
1: The thing to be seen here is whether the ball pitched in line with the stumps or not, because remember Deepti Sharma went around the wicket to the right-handed batter. She often gets a lot of drift. Did the ball drift enough to pitch in line with the stumps is the question. Before that, of course, TV umpire Kim Cotton will go through the procedures. First of all, she will check if there is any bat involved or not, and ultra edge tells us, according to the graph that is up on our monitors, it tells us that there is no bat or no glove involved. Ball tracker coming up next. Yes, it has drifted in enough to pitch in line with the stumps. However, it is spinning or rather drifting a little bit too much, suggests ball tracker. It would have only clipped the off stump. Hence, it's two reds, pitching in line, impact in line, but wickets hitting is umpire's call. Two reds and an amber. India will keep the review. However, Natalia Parvez survives.
0: So नतालिया परवेज अभी भी बीच मैदान पर एक के व्यक्तिगत स्कोर के साथ टप्पा खाने के बाद गेंद ड्रिफ्ट होकर बाहर की तरफ निकल रही थी और अंपायर्स कॉल थी वो वहां पर, जिसका लाभ नतालिया को मिला था वहां पर। इसी बीच रनआउट की एक और अपील अगली गेंद पर आगे की तरफ निकली थी बहुत तेजी के साथ, दीप्ति ने वहां पर थ्रो किया था ऋचा घोष की तरफ और स्टंप के ऊपर से उन्होंने गिल्लियां बिखेर दी थी। देखना है कि क्या इस अवसर पर ये टीवी अंपायर का जो रिव्यू है वो भारत के पक्ष में जाता है या नहीं, लेकिन जो हमें स्क्रीन पर देखने से लग रहा है दर्पण, उससे तो ये लगता है कि बल्ला टिकाने में कामयाब हुई थी नतालिया परवेज अपनी क्रीज के अंदर। तो 8.2 ओवर की समाप्ति के बाद 59 विकेट के नुकसान पर 171 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम का स्कोर है फिलहाल एजबेस्टन पर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण के इन दोनों ही टीमों के पहले मुकाबले के बीच में। नतालिया एक बार फिर से स्ट्राइक पर स्टांस लेने के साथ तैयार और अराउंड द विकेट आते हुए दीप्ति शर्मा, और इस बार मिडल ओवर लेग स्टंप की इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ दिया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे जाकर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक आसानी के साथ एक रन जुटाने में कामयाब रही नतालिया परवेज और इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर अब 63 विकेट के नुकसान पर। मुनीबा अली ने अब तक बढ़िया बल्लेबाजी की है 29 के व्यक्तिगत स्कोर पर। ओवर द विकेट मुनीबा के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज मुनीबा ने इस बार ये गेंद जो कि ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर थी अपनी जगह खड़े होकर बल्ले को बिल्कुल आड़ा करते हुए किसी तरीके से इस गेंद को धकेलने में कामयाबी हासिल की कवर क्षेत्र की तरफ। आसानी के साथ एक रन और जुटा लेंगे इस एक रन की मदद से पाकिस्तान की टीम का स्कोर 61 विकेट के नुकसान पर। दीप्ति शर्मा ने काफ़ी कसावट भरी गेंदबाजी की है और दो सफलताएं अब तक भारत के खाते में डाल चुकी हैं अराउंड द विकेट, और इस बार इस गेंद को सेव करने के अंदाज में खेला लेकिन प्रोटेक्शन है वहां पर, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद हैं, गेंद को उन्होंने फील्ड किया लेकिन एक रन का इजाफा और हो जाएगा इस पांचवीं गेंद पर और 62 स्कोर हुआ पाकिस्तान की टीम का 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद का आना बाकी है, पिछली 3 गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करने में मुनीबा अली और नतालिया परवेज कामयाब हुए हैं दीप्ति शर्मा के सामने। अंतिम गेंद पर मुनीबा क्या बड़ा स्ट्रोक लगाएंगी, ओवर द विकेट मुनीबा के लिए और फ्रंट फुट पर आकर हल्के से गेंद को पुश किया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, 25 गज के दायरे के अंदर गेंद को फील्ड कर लिया गया और रन की तमाम संभावनाएं समाप्त कर दी गई। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, 9 ओवर के बाद पाकिस्तान 62-3 विकेट के नुकसान पर।
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
3: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: Pakistan need 109 more runs in the remaining 11 overs. Sri Charani begins a fresh over, delivers this one on a very full length. Nataliya Parvez wanted to step out of her crease. However, she had to abort the plan in between because the ball landed or dipped in the block hole. She was able to squeeze it back to the bowler. Deepti Sharma, before this, delivered her third over. Now that is interesting. That is interesting. Why? We'll tell you after this ball. Sri Charani runs in to deliver the next delivery. Delivers this one outside the off stump. And excellent bit of fielding from Harmanpreet Kaur might have produced another wicket for India. However, we will wait. We will wait for the umpire to make a signal. And Claire Polosak looks like is not very interested. Harmanpreet Kaur is celebrating. Radha Yadav, Smriti Mandhana and Deepti Sharma have run to her, hugged her. She has started celebrating but the umpire has not given it out. That is interesting. This one was pushed towards the extra cover region. Harmanpreet dived towards her right, picked it up and hurled a flat throw towards Richa Ghosh, who collected the ball, whipped the bails off. However, with an excellent dive, Muniba Ali had made her ground and Claire Polosak has not even attempted to use technology. She says, I've got eagle eyes, I've seen it with my own eyes, it is not out. Excellent bit of umpiring. The replay suggests that her decision was correct. Next delivery flighted outside the off stump, chipped towards Kranti Gaur at long off, who fumbles and therefore allows 2 runs to the Pakistani batters. But excellent bit of umpiring that, Ashish.
0: Bilkul, tarif karni hogi.

0: वहां पर क्लेयर पोलोसेक की, जिन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ वो निर्णय लिया। और टेक्नोलॉजी का भी जब हमने उपयोग देखा स्क्रीन पर होते हुए तो लगा कि वो बिल्कुल सही थी अपनी जगह पर। इसी बीच अगली गेंद और गेंद को वहां पर खेल दिया खूबसूरती के साथ, गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए।
1: ये लगा आभा का चौका,
0: स्वीप करने के अंदाज में खेला था मुनीबा अली ने इस अवसर पर। और गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा से होती हुई 4 रनों के लिए बाहर चली गई। श्री चरणी जो कि मात्र 21 वर्ष की हैं, आंध्र प्रदेश से आती हैं और पहला अपना विश्व कप खेल रही हैं। 2025 के बाद दर्पण अगर देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट भारत के लिए अगर किसी गेंदबाज ने बटोरे हैं तो वो श्री चरणी हैं।
2: That is why Radha Yadav has been kept out of the side. Next delivery lofts this one over, extra cover does Muniba Ali. The leaping fielder at the edge of the 25-yard circle would not be able to get to it, and hence a couple of runs will be taken. That takes Pakistan's score to 71 for 3 in 9.5 overs. This one was delivered from over the wicket, outside off by Shri Charani. One ball remaining in the 10th over, and Pakistan thus far seem like they are on track, given that India was 65 for 2 at the end of their 10th over. Next delivery induces the edge, does Shri Charani, but there is no slip in place, and the run out opportunity, if at all there was any, has been squandered too, because Richa Ghosh has not been able to collect this one cleanly. It was delivered outside off on a length. Muniba Ali went for the drive, got a thickish outside edge. The ball went towards Shefali Verma, who was stationed at short third, who picked it up, hurled a flat throw towards the Indian wicketkeeper, who could not quite collect it cleanly. The single was taken. Pakistan end the 10th over with their score reading 72 for 3. Just going back on the point of Deepti Sharma, her 3 overs have been used, and Ashish, she's the designated death bowler in this Indian team, but Harmanpreet realized that the need of the hour is give her the extra over, which means there could be trouble when it comes to death.
0: जी हाँ, हो सकता है, लेकिन शायद हरमनप्रीत की मंशा ये हो कि उस स्टेज तक उस मैच को जाने ही ना दिया जाए और पहले ही पाकिस्तान की पारी को समेट लिया जाए। और मुझे लगता है कि उन्होंने सही कप्तानी की है वहाँ पर, लगातार दीप्ति शर्मा को 3 ओवर करा के। श्री चरणी का ये ओवर महंगा ज़रूर साबित हुआ, 10 रन उनके इस ओवर में आए, 2 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने की है, 1 सफलता उनको भी मिली है, कुल मिलाकर 14 रन उन्होंने दिए हैं। और श्री चरणी, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पहला विश्व कप खेल रही हैं, और इनसे भविष्य में भी भारत को बहुत आशाएं हैं। फिलहाल पाकिस्तान 72 3 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद, और 10 ओवर के बाद भारत की पारी की जो स्थिति थी वो ये कि भारत ने 65 रन बनाए थे और 2 खिलाड़ी भारत के आउट हुए थे। तो 7 रन पाकिस्तान ज़्यादा बना चुका है, लेकिन 1 विकेट भी उसने ज़्यादा गंवाया।
2: Shreyanka Patil begins a fresh over, and something interesting has happened. This was delivered from around the wicket on a length, and Muniba pushed it towards the left of her. Shreyanka Patil wanted to gather the ball, however the non-striker came in the way and Shreyanka was not able to stop the ball, and hence the single was taken. Shreyanka looks at the umpire and says that this is not fair, but the umpire shakes her head. Next delivery delivered on a good length at the stumps, goes down on a knee as Natalia Parvez, and slog sweeps it towards the fielder on the leg side boundary. Jemima Rodriguez collects it and hurls a throw at the non-striker's end, which Shreyanka Patil has not been able to collect cleanly, and she has copped one in the groin region, and she's currently on the floor.
0: यहाँ थोड़ी बहुत पीड़ा में ज़रूर है, लेकिन बहुत जल्द खेल एक बार फिर से शुरू होगा। और पाकिस्तान की टीम की शुरुआत जैसा कि हमने कहा कि अच्छी ज़रूर हुई, लेकिन उसके बाद लगातार अंतराल के बाद भारतीय गेंदबाजों को सफलताएं मिली। 2 विकेट अब तक दीप्ति शर्मा चटका चुकी हैं, 1 विकेट श्री चरणी ने अपने स्पेल में हासिल अब तक किया है। श्रियंका पाटिल का ये 2रा स्पेल है, हालांकि पहले स्पेल में कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाई थी। मुनीबा अली की बात करें तो उन्होंने आज बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है, 40 रन अब तक उन्होंने बना डाले हैं 34 गेंदों का सामना करने के बाद, जिसमें 5 चौके शामिल हैं और लगभग 117 15 का स्ट्राइक रेट है और बाकी के बल्लेबाज आया राम गया राम की तर्ज पर नजर आए। पाकिस्तान की टीम की जहां तक सवाल है, गुल फिरोजा की बात करें, आयशा जफर की बात करें या साहिरा जबीन की बात करें, तो ये खिलाड़ी बहुत कम योगदान देकर वापस पवेलियन लौटते हुए नजर आए। लेकिन पाकिस्तान की दृष्टि से अगर आप देखें तो यहाँ पाकिस्तान की टीम को एक बड़ी साझेदारी की दरकार है, जबकि भारत नहीं चाहेगा कि एक बड़ी साझेदारी पाकिस्तान की तरफ से देखने को एज वेस्टर्न पर मिले।
2: Meanwhile, the team physio is out in the middle attending Shreyanka Patil. She's been given some water and some moments to breathe hard and collect her breath back. Renuka Thakur, one of the reserve players, is also out there in the middle. It is interesting that India have kept Renuka Thakur out, because remember, back in 2022, when the Commonwealth Games were held at this very ground, every match was played at this very ground during that competition, Renuka Thakur was super impressive. She picked up 11 wickets in that tournament, which was the highest, not just for India, but in the entire tournament. Rather, they preferred Kranti Gaur and Arundhati Reddy as the seamers over Renuka Thakur. Anyhow, Shreyanka is good to go. Around the wicket, she runs in to deliver what will be the third delivery of the 11th over. Delivers this one on a good length, in line with the middle and leg pole. Muniba Ali gets a healthy stride out and then uses her wrist to deftly turn it away towards mid-wicket. Picks up a comfortable single that takes Pakistan's score to 75 for 3. They need 96 more in the remaining 57 balls.
0: श्रियंका पाटिल ने 14 महीनों की इंजरी के बाद वापसी की थी और WPL में भी उन्होंने खासा अच्छा प्रदर्शन किया था। अगली गेंद फ्लाइटेड और इस बार इस गेंद को खेल दिया, लेकिन एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में वहां पर फील्डर मौजूद हैं। गेंद को उन्होंने फील्ड किया और रन बनाने की तमाम संभावनाओं को इसी के साथ समाप्त कर दिया। पाकिस्तान 171 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 75-3 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर इस समय प्रगति पर है। दो गेंदों का आना बाकी है। श्रियंका पाटिल एक बार फिर से और इस बार इस गेंद को खेलने के प्रयास में बल्ले का किनारा जरूर दे बैठी, लेकिन एक बाउंस के बाद वहां पर गेंद पहुंची थी बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े हुए फील्डर के पास। सीधा थ्रो वहां पर स्टंप्स पर आया स्ट्राइकिंग एंड के तरफ। क्या भारत के लिए ये रनआउट के रूप में एक और सफलता आ सकती है? जैकलिन विलियम्स ने टीवी अंपायर को रेफर किया है, काफी नजदीकी मामला हो सकता है तर पर।
2: गेस हू द फील्डर इज? दीप्ति शर्मा कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर इंडिया। The replay on our monitor is up and it suggests that the batter is short. Natalia Parvez got an outside edge. She wanted the single. However, Muniba Ali denied it and hence she had to turn back and go towards safety. Looks like she hasn't been able to ground her bat, or is it Muniba Ali who has been run out? We'll find out in just a second. However, it is Deepti Sharma's golden arm which has produced another wicket. Beg your pardon, it is Muniba Ali who failed to make her ground at the striker's end, and therefore another wicket produced for India. Pakistan are 75 for 4.
0: क्या सटीक निशाना था वहाँ पर दर्पण दीप्ति शर्मा का? और मुझे याद आता है कि किस तरह से क्रिकेट की और राह पकड़ी थी दीप्ति शर्मा ने। एक मैदान पर जबकि खेल हो रहा था, उनके भाई वहाँ पर खेल रहे थे और गेंद उनके पास पहुँची थी और बड़े कैजुअल अंदाज में उन्होंने गेंद को फेंका और वो सीधा जाकर स्टंप पर टकराई और वहाँ पर जो यूपी के चीफ सेलेक्टर थे उस समय, उन्होंने वहाँ से उनको अपनी छत्र छाया में ले लिया और आज भी उन्होंने वैसे ही कमोवेश कारनामा करके दिखाया है।
2: She was born with it, isn't it? She was born with it. The talent was gifted to her by Mother Nature. Anyhow, responsibility now on the shoulders of Pakistan skipper Fatima Sana, who now makes her way to the middle. Pakistan are 75 for 4 and have just lost the wicket of Muniba Ali, who has been their top scorer so far. 41 of 35 is what Muniba managed. She hit 5 boundaries in that innings of hers, and Shreyanka Patil's over has produced a wicket. Finally, remember, 2 drop catches of her bowling. This doesn't go into her account, this run out, but it produces a wicket for India and another drop catch. Looks like this was a cotton bowled opportunity which Shreyanka Patil has spilled herself on a length in line with the stumps. Fatima Sana pushed it with hard hands. The ball went uppishly back to the bowler, who failed to hold on to it in her follow through. 75 for 4.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
3: तुम हो ही भुलक्कड़।
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली।
5: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
6: आभा
5: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका

0: अपना सफर आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तो पिछला ओवर भारत के लिए सफलता लेकर के आया जब दीप्ति शर्मा ने रन आउट करवा दिया था मुनीबा अली को एक बिल्कुल डायरेक्ट थ्रो स्ट्राइकिंग एंड पर, और जिसकी वजह से मुनीबा अली 41 के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस पवेलियन लौटने पर मजबूर हुई थी। इधर श्री चरनी के स्थान पर अब शफाली वर्मा गेंदबाजी के मोर्चे पर है, जो कि दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती हैं, और पिछले कुछ समय में हमने देखा कि अक्सर भारतीय आक्रमण की शुरुआत उनके द्वारा की जाती रही, लेकिन आज उनसे आक्रमण की शुरुआत तो नहीं कराई गई, लेकिन फिलहाल बीच मैदान पर शेफाली वर्मा नजर आ रही हैं। बल्लेबाजी में मात्र 6 रन बनाए एक छक्के की मदद से, देखना यह है कि गेंदबाजी में भारतीय टीम के लिए क्या कुछ कर पाती हैं। अगली गेंद, और इस बार फातिमा सना ने इस गेंद को खेला लेकिन सीधा कवर क्षेत्र में, 25 गज के दायरे के अंदर, कोई रन नहीं बनेगा। पहली गेंद पर एक सिंगल, दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं, और तीसरी गेंद का सामना करने के लिए फातिमा एक बार फिर से तैयार। इस बार लेग स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर, निश्चित रूप से वाइड का इशारा वहां पर अंपायर की तरफ से आएगा। इस एक अतिरिक्त रन की बदौलत 77 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 4 अतिरिक्त रन उपहार के स्वरूप अब तक पाकिस्तान की टीम को दिए जा चुके हैं भारतीय गेंदबाजों के द्वारा। शेफाली वर्मा एक बार फिर से तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट, धीमी गति की गेंद, और इस बार इस गेंद को उठा करके खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, गेंद को लपक लिया आसानी से जेमिमा रॉड्रिक, स्मृति थी वहां पर दरअसल, उन्होंने गेंद को लपका और इस तरह से पारी समाप्त कर दी है। वहां पर एक बार फिर से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फातिमा सना की, खाता भी अपना नहीं खोल पाई 0 के स्कोर पर, 6 गेंदों का सामना करने के बाद वापस पवेलियन लौट रही है। धीमी गति की गेंद थी और इस गेंद को उठा करके खेलना चाहती थी, लेकिन वहां पर स्मृति मंदाना ने बहुत ही अच्छे पूर्वानुमान के साथ अपने पंजों पर उचकते हुए उस गेंद को, कैच को मुकम्मल किया और पारी को समाप्त कर दिया पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना के लिए।
2: गेट शेफाली टू बोल अ लिटिल बिट मोर। Do you or do you not remember the World Cup final from the last year when she produced a couple of wickets? Here again she has produced the goods for India. Shefali Verma with the wicket of Fatima Sana has pushed Pakistan on the back foot, 77 for 5. Meanwhile, I need to make a correction. The last ball of the previous over, I said Shreyanka Patil dropped a catch. However, the replays that appeared a little bit late on our monitor suggested that the ball had fallen just short of Shreyanka Patil, so she collected it on a half volley, or rather fumbled in the collection, but it was on a half volley. Alia Riaz meanwhile has now come out to the middle. She is the most experienced batter in this team. In fact, a lot of eyebrows were raised when Fatima Sana was appointed as the skipper, because Alia Riaz is far more experienced. Why was she not given the captaincy? But that is another matter. Currently she needs to bat Pakistan out of trouble. A delivery on a full length near the off stump, which has been squeezed along the carpet towards cover. Alia Riaz faces a dot ball to begin her innings. Next delivery, again on a full length, once again gets forward as Alia Riaz, and this time knocks it towards long off. A comfortable single will be taken that gets Alia Riaz off the mark, and Pakistan's score moves to 78 for 5 with a ball remaining in Shefali Verma's first over. Runs in the Shefali, once again a full-length delivery outside the off-stump. Natalia crouches and then heaves it towards deep mid-wicket, where Radha Yadav does the mop-up job. A comfortable single has been taken, but singles won't hurt India anymore because they are in ascendancy with the score reading 79 for 5 at the end of the 12th over. Pakistan need 92 more runs in just 8 overs. Safe to say that India Now are in the driver's seat.
1: जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और स्मृति मानधना की भी तारीफ करनी होगी, 68 रनों की बेहतरीन पारी और उसके बाद 2 शानदार कैच उन्होंने जो लपके हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेयर ऑफ द मैच के लिए भी वो एक प्रबल दावेदार इस मुकाबले में नजर आ रही हैं दर्पण।
2: Absolutely, catches win matches, the odds, the old saying. Shri Charni with a change of ends produces another wicket. Harmanpreet Kaur takes the catch at extra cover. Natalia Parvez has to say goodbye. India get another wicket. Pakistan, a collapsing Pakistan are crumbling. India on top. They were 75 for 3 and now they have been reduced to 79 for 6. This was a floated up delivery at the off stump on a very full length. Natalia stayed beside the line, tried to go inside out over extra cover, but could not find the desired elevation. Stretched her arms upward, did the Indian captain, and the ball stuck to the middle of her palms like a bug in a cobweb. Out for 7 of 13 balls, without scoring any boundaries, is Natalia Parvez. Pakistan down in the dumps, 79 for 6.
1: तो 26 रन बनाते बनाते पाकिस्तान ने अपने 5 विकेट गवा दिए हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है इस मुकाबले में भारत के खिलाफ. और भारतीय गेंदबाजों ने, खासतौर से स्पिन गेंदबाजी की यदि हम तारीफ बात करें, तो दर्पण ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन. तेज़ गेंदबाजी को लेकर चिंताएं पहले भी थीं और आज भी इस मुकाबले में हमने देखा कि चाहे क्रांति गौड़ हों या फिर अरुंधति रेड्डी, उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह के प्रदर्शन की अपेक्षा थी. लेकिन भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया. नए ओवर की शुरुआत, बल्कि श्रीचरणी वहां पर अपने ओवर को जारी रखते हुए पहली गेंद पर सफलता उनको मिल चुकी है और इस समय शमीम वहां पर बल्लेबाजी के लिए मौजूद हैं, रमीन शमीम. देखना है कि यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ा पाती हैं. पाकिस्तान की टीम इस समय खासी मुश्किलों में नज़र आ रही है. श्रीचरणी की अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन एज बेस्ट रन पर.
2: ओवर द विकेट डिलीवर्स दिस वन नियर द ऑफ स्टंप एंड इट वाज पुश्ड टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन फॉर अ सिंगल बाय शमीम हु गेट्स ऑफ द मार्क. द नेक्स्ट डिलीवरी कम्स अराउंड द विकेट. डज Sricharani delivers this one to Alia Riaz. Once again near the off stump, Alia Riaz with a deft push towards mid-off where the captain fumbles. Harmanpreet Kaur with a little bit of a misfield allows 2 runs and hence Alia Riaz takes herself to 3. Pakistan 82 for 6. Next delivery of Sricharani is over on a good length around the off stump, 78 kilometers per hour or thereabouts. Riaz has to adjust into a defensive push.
1: 44 गेंदों में 89 रनों की आवश्यकता है पाकिस्तान की टीम को और 4 विकेट मात्र सुरक्षित है पाकिस्तान की टीम के. अगली गेंद श्रीचरणी की और इस बार अराउंड द विकेट आते हुए अंपायर उस स्टंप के बीच से निकलकर, ये गेंद फ्लाइटेड थी, बैकफुट पे जाकर कट करने का प्रयास किया लेकिन सीधा 25 गज के दायरे के अंदर फील्डर के हाथों में गेंद पॉइंट क्षेत्र में पहुँचती हुई बिना किसी रन के. पिछली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं मिला है आलिया को और देखना यह है कि आलिया रियाज और रमीन शमीम मिलकर यहाँ पर पाकिस्तान की पारी को और कितना दूर ले जा सकती हैं. अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच के नज़दीक पहुँचकर गेंद को ड्राइव किया, वाइड एश लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर मौजूद है, गेंद फील्ड हो रही है लेकिन उससे पहले दोनों ही बैटर्स ने एक रन के लिए छोर बदल लिया और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर के अब हो गया है पाकिस्तान का 83 6 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर की समाप्ति के बाद.
3: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
4: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो.
3: तुम हो ही भुलक्कड़.
4: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ली.
0: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में.
4: आभा
0: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं. आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर. आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7.
1: 42 गेंदों में 88 रन. पाकिस्तान को जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए लेकिन शफाली वर्मा की पहली गेंद को वहां पर स्वीप करने की कोशिश कामयाबी मिली लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर मौजूद और इससे पहले कि गेंद फील्ड हो सके एक रन के लिए आसानी के साथ छोर बदल लिया बल्लेबाजों ने. इस एक रन की मदद से स्कोर पाकिस्तान की टीम का बढ़कर के अब 84 6 विकेट के नुकसान पर. शेफाली वर्मा को पिछले ओवर के दौरान सफलता मिली थी, क्या इस ओवर में भी वो भारतीय टीम के खाते में एक और सफलता दे पाएंगी? ऐसा कर पाती हैं तो भारत के लिए जीत की राह और ज़्यादा आसान हो जाएगी. फिलहाल मंत्रणा चलती हुई ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम के साथ शेफाली वर्मा की. 13.1 ओवर के बाद पाकिस्तान की टीम का स्कोर 84 रन है 6 विकेट के नुकसान पर. मुनीबा अली को अगर छोड़ दें दर्पण, तो बाकी के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए पाकिस्तान की टीम के. शफाली वर्मा एक बार फिर से तैयार अराउंड द विकेट क्रीज के कोने से. बाएं हाथ के बल्लेबाज रमीन शमीम के लिए और इस बार इस गेंद को स्वीप किया है, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है वहां पर और इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुंचे एक रन का अवसर था दोनों बल्लेबाजों के लिए। इस एक रन की मदद से 86 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान की टीम का स्कोर 13.2 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंद और रनों के बीच का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में इस समय पूरी तरह से झुका हुआ नजर आ रहा है। अगली गेंद आलिया के लिए और आलिया ने इस बार बैकफुट पे जाकर गेंद को कट किया, लेकिन बहुत ताकत से लगा हुआ स्ट्रोक नहीं था, ठीक तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद स्वतः ही जाकर के रुक गई थी। हालांकि एक दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका जरूर वहां पर दीप्ति शर्मा ने, थ्रो किया, लेकिन तब तक दो रनों का फासला तय कर चुके थे आलिया रियाज और रमीम शमीम। इन दो रनों की मदद से आलिया रियाज पहुंचे 7 पर और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर शफाली वर्मा इस बार ओवर द विकेट और इस गेंद को कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए मोड़ना चाहती थी। ऋचा घोष के पास अवसर था, अगर सीधा थ्रो उनका स्टंप्स की तरफ लगा होता तो गेंद स्टंप्स पर लगने के साथ ही बैटर आलिया रियाज को वापस पवेलियन जाना पड़ सकता था। हालांकि रिव्यू वहां पर जरूर लिया है।
2: Two things happened there. First of all, there was an appeal for LBW because Shefali thinks that her ball spun enough to beat the inside edge of the bat and hit Alia Riaz on the pads. After hitting the pad, the ball trickled away towards the onside and Riaz wandered out of her crease in order to search for a non-existent run. Richa Ghosh ran towards her left, picked the ball up and then attempted to hit a direct hit, score a direct hit at the keeper's end, but she was not able to. So Riaz survived the run out scare. However, for the LBW appeal, which was denied by umpire Jacqueline Williams, India have posed a challenge. Harmanpreet Kaur has shown the T signal, which calls for DRS. The first replay is on our monitors and it's a complicated replay because the bat and pad are close together. There is a definite spike on the graph of ultra edge. However, the bat and pad are super duper close. So we do not know whether that spike is due to the ball hitting the bat or it is due to the bat hitting the pad. And therefore, the wisdom of umpire Aloysius Sheridan, who is in the chair of TV Empire right now, matters a lot. It is her judgment which will decide whether or not we go to the ball tracking replay. Only if she decides that the ball is hitting pad first, we will go to the ball tracking replay and thereby the question of whether it was in line, whether it would have gone on to hit the stumps will arise. But the first question is whether it has hit the pad first or the bat first. Looks like umpire Sheridan has decided that it has hit bat first, which means India will lose a review and Alia Riaz will survive.
1: जी, काफ़ी नज़दीकी मामला था क्योंकि बैट और पैड जैसा कि दर्पण आपने बताया बिल्कुल साथ थे और वहाँ पर टीवी अंपायर के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद कोई बहुत आसान निर्णय नहीं था, लेकिन फैसला अंततः बल्लेबाज के पक्ष में रहा और पाकिस्तान की टीम का स्कोर 87-6 विकेट के नुकसान पर।
2: And that is why, Ashish, we need umpires. People say, do away with them, leave everything to technology. No, we need umpires. This is the reason.
1: जी हाँ, हर मशीन के पीछे एक मानव जरूर होता है और यहाँ भी हमने वैसा ही देखा। फिलहाल अगली गेंद पर एक रन का इजाफा, 88-6 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है पाकिस्तान की टीम के सामने 171 रनों का, यानी बची हुई 37 गेंदों में 83 रनों की आवश्यकता है और ये लक्ष्य जो है निश्चित रूप से किसी भी सूरत में आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल लक्ष्य है। और अगर यही स्थिति अगले 2-3 ओवर तक बनी रही तो मैं कहूँगा दर्पण फिर ये मैच जो है पूरी तरह से भारत के पक्ष में हो जाएगा और जो बचे हुए खिलाड़ी यहाँ पर है, बल्लेबाज हैं, उनसे ये उम्मीद की जानी कि वो यहाँ पर 36 गेंदों में 82 रन बनाएंगे, शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा।
2: Absolutely. It's a mountain to climb. A single to end the 14th over, which was played down to long on by Ramin Shamim. And that calls for a drinks break. The final one of this particular match. Pakistan are 89 for 6 and need 82 more runs in the remaining 6 overs. India have plenty of flexibility going into the final 6 because of the 2 overs. 2

0: excellent overs delivered by Shefali Verma, who, as we have been saying, should be getting more and more opportunities to bowl, as she has proven it again and again. Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Kranti Gaur, Deepti Sharma, Sri Charani and Shefali Verma, the six bowlers that have been used by Captain Harmanpreet Kaur. Of course, this match is being played at the Edgbaston, which is an iconic cricket ground in Birmingham in England. It hosted its first ever first class game back in 1885, first test match in 1902 and first women's test match in 1963. Of course, has hosted some iconic matches like the Commonwealth Games of 2022, the 1999 World Cup semi-final. Remember Lance Klusener, Alan Donald, that run out? That match happened here. Brian Lara, who scored 501 not out during a first class game, that happened here. So it's been an iconic ground, and looks like one more chapter will be added today when India beat Pakistan. Are we jumping the gun? No, we aren't, because this looks like an improbable climb, doesn't it, Ashish?
1: Yeah, और इतिहास भी अगर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं कहता है कि शायद इतिहास अपने आप की पुनरावृत्ति इस संस्करण में भी करे. T20 विश्व कप में पाकिस्तान कभी भी ग्रुप स्टेज से आगे नहीं पहुंचा है T20 विश्व कप के मुकाबलों में, और 2024 में भी उन्होंने जो चार मैच खेले अपने ग्रुप में उसमें सिर्फ एक जीता था. और उधर आप भारत की यदि बात करें तो भारत चार बार सेमीफाइनल में पहुंच चुका है. 2020 में भारत रनर्स अप रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने उसे पराजित किया था. और रैंकिंग के हिसाब से भी अगर देखें तो भारत मीलों दूर है, मीलों आगे है पाकिस्तान से. 3 नंबर की पोजीशन पर भारत है T20 रैंकिंग में, जबकि 8वें स्थान पर पाकिस्तान है. तो कागजों पर कोई मेल नहीं है, लेकिन जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि खेल के मैदान पर जो प्रदर्शन होता है नतीजे उसके हिसाब से आते हैं, लेकिन आज खेल के मैदान पर भी भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान के प्रदर्शन से काफी ज्यादा बेहतर अब तक नजर आया है.
0: However, there is something to play. There is something to play for, and that is net run rate. Remember, this group that India is in is called the group of death. India, Australia, South Africa, 3 contenders for the cup. Only 2 will make it to the semi-final, and therefore it could come down to net run rate at the business end, and therefore India would want to win by a big margin. Sri Charani will begin bowling. What is the 15th over of the innings? Delivers a tossed ball which Shamim gets a long stride forward to. She takes it on the full in front of the off stump and then bunts it towards the square leg region. That will allow for a comfortable single, which takes Pakistan's score to 90 for 6 after 14.5. Shri Charani switches her angle, goes around the wicket for the right-handed Alia Riaz, and Alia Riaz steps out to this good length ball and chips it towards the right of Sri Charani. Sri Charani wanted to run towards her right and attempt a catch. However, the non-striker was in the way.
1: Jiha. Non-striker ki wajah se Sri Charani us catch ko lene ki koshish bhi nahin kar paayin. Pakistan filal 91, 6 wicket ke nuksan par. Is baar ye gend over the wicket baaye haath ke batter ko. और उस गेंद को खेलना चाहते थे ऑफ साइड पे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क ठीक तरह से हुआ नहीं और इस बार रन लेने का कोई अवसर भी नहीं बन पाया. पहली दो गेंदों पर 2 सिंगल्स, तीसरी गेंद डॉट बॉल, 33 रनों में 80 रनों की आवश्यकता. समीकरण लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं पाकिस्तान की टीम के लिए. और इस बार इस गेंद को उठा करके खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई और वहाँ पर आसानी से कवर क्षेत्र में लपक ली गई. और एक बार फिर से पाकिस्तान मुश्किलों में पड़ता हुआ. 7वें विकेट का पतन हो चुका है रमीन शमीम के रूप में. 4 रन उन्होंने बनाए 6 गेंदों का सामना करने के बाद, और श्री चरनी को एक और सफलता यहां पर मिलती हुई. तो भारत अब काफी मजबूत स्थिति में आ चुका है. ये गेंद हवा में टप्पा खाने के बाद जैसे ही थोड़ी सी टर्न हुई अंदर की तरफ, उसको खेलने का प्रयास किया था ऑफ साइड में, कवर क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, आगे की तरफ गेंद को डाइव करते हुए लपकने में कामयाबी हासिल की क्षेत्र रक्षक ने, और इस तरह से पारी का अंत कर दिया रमीन शमीम का. तो 7 विकेट का नुकसान. श्रियंका पाटिल वहां पर क्षेत्र रक्षक थी, उन्होंने ये शानदार कैच लपका और 91 रनों पर पाकिस्तान की टीम अब 7 अपने बल्लेबाज गवा चुकी है। मात्र 3 विकेटों की और आवश्यकता है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। पाकिस्तान के लिए अगर मैं कहूं दर्पण कि यहां से अब जीत की संभावनाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।
0: Absolutely, they call it the game of glorious uncertainties. But Pakistan need more than a miracle if they are to win this. Nashra Sandhu is the new batter in. She's not in the side for her batting credentials. Sri Charani goes around the wicket for the right-handed batter, delivers this one on a drivable length on the stumps, and the batter will be able to work it towards mid-wicket and pick up a comfortable single that takes Pakistan's score to 92 for 7 with one ball remaining in the 15th over. Tried to step out and whack it, did Ramin Shamim on that occasion. Ended up slicing it. An excellent diving catch from Shreyanka Patil at backward point. Next delivery of the over, which is the final one of the 15th over, induces an outside edge and the ball goes trickling away to Deepti Sharma at backward point. And because it is Deepti, Alia Riaz doesn't even think of a single. They know what Deepti can do. They know what she did earlier. End of the 15th, 92 for 7.
2: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: श्री चरनी के 4 ओवर का कोटा समाप्त हो चुका है और 4 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 21 रन दिए, 3 सफलताएं हासिल की और इकोनॉमी उनकी 5.25 रन की। शानदार प्रदर्शन श्री चरनी के द्वारा एक बार फिर से। काफ़ी युवा गेंदबाज हैं और काफ़ी प्रभावित किया है 2025 के बाद से अपनी गेंदबाजी से। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है शफाली वर्मा के द्वारा और शफाली वर्मा के पहली गेंद पर 1 रन और दूसरी गेंद को खेल दिया था वहाँ पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन इससे पहले कि गेंद फील्ड होकर पहुँचे विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए वहाँ पर। एक अच्छा प्रयास वहाँ पर क्षेत्र रक्षण का गेंद को रोकने के प्रयास में राधा के द्वारा, और वहाँ पर रिले थ्रो के द्वारा गेंद अंततः पहुँची थी विकेट कीपर ऋचा घोष के दस्तानों में, लेकिन तब तक दौड़कर 3 रन बना लिए थे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने। आलिया इन 3 रनों के साथ 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर और अब नाशरा संधू तैयार हैं अगली गेंद का सामना करने के लिए। शफाली वर्मा की ये गेंद ओवर द विकेट और इस बार इस गेंद को स्लॉग शिफ्ट करने के अंदाज में खेला। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर मौजूद है, गेंद वहां पर फील्ड कर ली जाएगी, लेकिन 1 रन का इजाफा इसी बीच ज़रूर हो जाएगा पाकिस्तान के योग में। नाशरा संधू इस 1 रन की मदद से 3 पर और आलिया रियाज अब तैयार हैं वहां पर 12 के व्यक्तिगत स्कोर पर अगली गेंद का सामना करने के लिए। और इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, गेंद को पूरी तरह से चूकी, पैड पर लगी लेकिन नेक्सम के बाहर जाकर गेंद पैड पर टकराई थी जिसकी वजह से कोई अपील नहीं की वहां पर शफाली वर्मा ने। गेंद की रफ्तार इस बार थोड़ी सी ज़्यादा थी शफाली वर्मा की, लगभग 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर खेलने का प्रयास, कॉट बिहाइंड की अपील जरूर की लेकिन वाइड का इशारा आता हुआ ऑन फील्ड अंपायर जैकलिन विलियम्स के द्वारा, जो कि वेस्ट इंडीज़ की हैं अपने 91वें T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में इस समय अंपायरिंग कर रही हैं।
0: शफाली वर्मा आस्क ऋचा घोष, आवाज आई क्या? And Richa Ghosh shaked her head. Then why were you appealing? Anyhow, next delivery outside the off stump, lofted over backward point, and the ball goes skipping away to the fence. 100 up for Pakistan with this boundary.
6: ये लगा आभा का चौका।
1: अंतिम गेंद का आना बाकी है, 10 अतिरिक्त रन हैं इन 102 रनों में। गेंद शफाली वर्मा की बैकफुट पे जाकर कट किया बैकवर्ड पॉइंट और पॉइंट के बीच में से गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, लेकिन गेंद को वहां पर रोक लिया जाएगा क्रांति गोड के द्वारा। गेंद को फील्ड किया ऋचा घोष की तरफ थ्रो, लेकिन तब तक आसानी के साथ 2 रनों के लिए छोर बदला बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों के साथ पाकिस्तान की टीम का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति के बाद 104 7 विकेट के नुकसान पर। आलिया रियाज 18 रन बनाकर खेल रही हैं और नाशरा संधू ने अब तक 3 रन अपने बल्ले से योगदान के रूप में पाकिस्तान को दिए हैं।
0: Right, 4 overs remaining, and as we said, India will want to restrict Pakistan to as low a total as possible, because remember, net run rate could come into equation because Australia and South Africa are both the part of the same group. Yes, Pakistan not considered one of the contenders in women's cricket. They have shown a lot of improvement, but they are still far from being amongst the contenders. Netherlands and Bangladesh are also a part of this group, but those two teams are also lower ranked sides. So many believe that it is going to be between India, Australia and South Africa. Only two teams can progress. Anyhow, Deepti Sharma has now been given the ball in hand. She will be delivering what is her final over around the wicket to the right-handed Nashra Sandhu. She delivers this one down the leg side on the fuller side of good length, and Nashra Sandhu's deft sweep has been cut off by Kranti Gaur, who runs to her right from short fine leg and makes a tumbling stop. Interestingly, Kranti Gaur has bowled only one over so far, and I would like Harmanpreet Kaur to give the youngster a couple of overs in the remaining three. Anyhow, a single was taken off the first ball, and now Deepti Sharma halts in her delivery stride, looks at the non-striker and almost signals, mind you, do not leave the crease early because I won't spare you the next time. Deepti's done it before and she won't shy from doing it. Next delivery, tossed up delivery, and it has been lofted towards mid-wicket, where Jemima Rodrigues will make no mistake. She runs in from the boundary, settles underneath it, grabs it in her safe palms, and then gives the ball a little kiss before dropping it on the ground and running in celebration to celebrate the downfall of Alia Riaz. It was tossed up, was in the slot at the stumps. However, the mid-wicket boundary was too far for Alia Riaz to clear. She ends up finding Rodrigues, who makes no mistake in pouching it. And with that, Riaz has been dismissed for 18 of 17 balls. Pakistan, 105 for 8. Safe to say, India are now on the doorstep of victory.
1: भारत निश्चित रूप से जीत के द्वार तक पहुंच चुका है और अब मात्र औपचारिकताएं बची हैं. अगर ऐसा मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा. 22 गेंदों में 66 रन पाकिस्तान बना पाए, ऐसा सोचना शायद एक सपने के बराबर है इन परिस्थितियों में. और ये देखते हुए कि अब उसके सिर्फ दो ही विकेट बाकी हैं, भारत को दो विकेटों की दरकार है इस मुकाबले को जीतने के लिए. नए ओवर की शुरुआत, बल्कि दीप्ति शर्मा अपने ओवर को जारी रखे हुए हैं और वहाँ पर तस्मिया इस समय बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी हैं. पहली गेंद को बैक टू द बॉलर खेला दीप्ति शर्मा ने. अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 3 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं अराउंड द विकेट आते हुए. और निश्चित रूप से कहना होगा कि यहाँ पर दीप्ति शर्मा ने आज जो प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है. इसी बीच अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेल दिया एक बार फिर से हवा में मिड विकेट क्षेत्र की तरफ तस्मिया ने, और जेमिमा रॉड्रिक्स वहां पर मौजूद हैं. गेंद को उन्होंने लपका और ऐसा लगा दर्पण एक क्षण के लिए कि मानो रिप्ले हो पिछले वाले विकेट का.
0: यस, absolutely the same thing happening again. Rodrigues taking the catch, and Deepti Sharma with it has picked up her 4th wicket of the day, and with that she has drawn level with Tipacha Puttawong of Thailand, which means Deepti Sharma now has 165 wickets to her name, which is the joint most in women's T20 internationals. She's 1 wicket away from becoming the sole leading wicket taker, and she still has 2 deliveries remaining. This over reads 1 wicket dot wicket, which means the last 3 deliveries read WOW. Wow, Deepti. Sadia Iqbal is the new batter in. 16.4 overs done, 105 for 9 Pakistan. Deepti Sharma around the wicket, no, beg your pardon, over the wicket to the left-handed Sadia Iqbal, who's definitely not in the side for her batting credentials, delivers this one on a full length at the off stump. 71.6 kilometers are the speed of that delivery, and that allowed Sadia Iqbal to get onto the front foot, dink it towards the cover region and pick up a comfortable single. With this single, Sadia gets off the mark. Pakistan move to 106. 1 wicket left, 1 ball remaining for Deepti. Can she pick up a fifer? Here she runs in. Slog sweep straight to Harmanpreet Kaur, who holds on to the catch. Deepti has a fifer. She is the leading wicket taker in women's T20 internationals. with this breakthrough, her 166th in T20 internationals, alone at the top of

0: और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: तो भारत की शानदार सफलता इस T20 विश्व कप के 10वें संस्करण के अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रनों से पराजित करने में कामयाब रही भारतीय टीम। और T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये नवा मुकाबला था और इन 9 मुकाबलों में अब तक 7 भारत के पक्ष में रहे और 2 पाकिस्तान के पक्ष में। भारत की शुरुआत टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भले ही अच्छी ना हुई हो, लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने खासतौर से स्मृति मानधना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 68 रनों की एक शानदार पारी उन्होंने खेली। इसके अलावा कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रनों की बेहतरीन पारी खेली और ऋचा घोष ने अंतिम ओवर में जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ थी। 34 रनों की एक बेहतरीन पारी की वजह से भारत 20 निर्धारित ओवर में 170 रन बनाने में कामयाब रहा। 6 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान को 171 रनों की दरकार थी मुकाबले को जीतने के लिए। शुरुआत उनकी अच्छी हुई, मुनीबा अली ने अच्छा प्रदर्शन किया अपने बल्ले से, लेकिन खासतौर से मध्य क्रम में उनके विकेट एक के बाद एक बहुत तेज़ी के साथ गिरते रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। और भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने आज 5 विकेट हासिल किए। अब वो T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाली गेंदबाज बन चुकी हैं। एक शानदार सफलता। और श्रीचरणी ने भी आज भरपूर योगदान दिया। शफाली वर्मा का भी प्रदर्शन गेंदबाजी से बहुत अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर जो स्पिन गेंदबाजी रही भारत की वो काफ़ी अच्छी रही, जिसकी बदौलत भारत ने 17 ओवर में ही पारी को समेट दिया पाकिस्तान की 106 रनों पर और इस मुकाबले को 64 रनों से जीत लिया। तो मैं आशीष चंदगू अपने साथी कमेंटेटर दर्पण टिकिया, स्कोरर रजत सिन्हा और स्टैटिस्टिशियन
2: इदागशवाणी देवीकुलम स्पाइस एफएम।
3: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government, transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants are Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator is Anubha Rohatgi.
4: India has undergone significant economic, technological and social transformation in the 12 years of the NDA government under the stewardship of Prime Minister Narendra Modi. For the country's middle class, the focus on infrastructure expansion, welfare initiatives, tax reforms, financial inclusion and digital governance has given wings to their hopes and aspirations on the one hand and made their lives easier, fairer and more dignified on the other. And that is the topic of our discussion today. To share their insights and views on this issue, I'm now joined by political analyst Ashok Tandon and economic analyst Sharad Kohli. Mr. Tandon, Mr. Kohli, welcome to the program.
5: Thank you very much.
6: Thank you.
4: I'll start with a question to both of you. What are the most crucial and significant initiatives that have made the most impact on the middle class in the last 12 years?
5: Well, Anubha, if you see down the line, you know, 12 years, it may sound like a very long period. But then if you work out from the government perspective, there's been so much which has been done in these 12 years. It's almost seems like 120 years from the kind of output that we've had. I think it is transformational for the people of the country, especially and the burgeoning middle class of the country. To my estimate, as an economic analyst, I would say the total size of middle class is probably 65 to 70 crores today. Mm-hmm. This includes those 25 crore people who move from poverty to the neo-middle class. So if we add them, so we've got, I mean, we're almost twice the population of United States of the size of the middle class in India itself. I think every aspect of their life has seen a transformation. As you said, roti kapra makan once, I remember. I think the way they eat, the way they live, the way they travel, their own lifestyles, just about everything has been impacted. And as we go forward, we would love to, you know, go in, deep dive into each of those aspects.
4: Absolutely. Mr. Tandon.
6: मोदी सरकार ने जो सुधार कार्यक्रम लिए पिछले 12 साल में
4: जी,
6: उसमें जो मध्यम वर्ग की आर्थिक उत्थान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, टैक्स में छूट, जीएसटी का सरलीकरण, डिजिटल क्रांति, हाउसिंग सब्सिडी जैसे बड़े सुधारों से मध्यम वर्ग की बचत बढ़ी है।

0: जी
1: उनके पास जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है और उससे उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठा है। अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, जैसे हमने बात की तो टैक्स में बड़ी राहत, मैं उसकी
0: बिल्कुल
1: अभी डिटेल में नहीं जाना
0: जी
1: चाहूंगा। जीएसटी, रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है, और रेरा जैसे सुरक्षित घर का सपना लोगों का पूरा हुआ है पीएम आवास योजना के अंतर्गत। तो ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान भारत की हम बात करें,
0: बिल्कुल
1: प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, जनधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें, सामाजिक सुरक्षा की बात करें, पीएम स्वनिधि योजनाओं की बात करें, तो ऐसी कई योजनाएं हैं जो केवल मध्यम वर्ग को तो सहायक तो नहीं हो रही, लेकिन जो मध्यम वर्ग नहीं था उनको मध्यम वर्ग में लाने का जो
0: जी,
1: काम किया
0: जैसे
1: है,
0: भी शरद जी ने कहा
1: बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि भारत में हम जैसे कहते थे कि गरीबी रेखा के नीचे इतने प्रतिशत लोग हैं,
0: जी,
1: कितने लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर मध्यम वर्ग में लाया गया, क्योंकि भारत में मध्यम वर्ग की आप 15-16 कैटेगरी बना सकते
0: जी
1: हैं, तो उन सब कैटेगरीज को लाभ हुआ है।
0: जी
1: और जिसकी जो पहचान है वो ये है कि आज लोगों के जेब में खर्च करने के लिए पैसा आ गया है।
0: आपने और शरद जी ने दोनों ने अभी जितनी एक जो सरकार की जितनी पहल थी इनिशिएटिव्स की उनकी बात की, और आप दोनों ने एक जो बात की उसी से बात आगे बढ़ाते हैं कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग थे उनको, गरीबी रेखा से नीचे लोगों को जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से उठाकर ऊपर लेकर आए हैं, तो देर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन द लास्ट 12 ईयर्स, विद मोर देन 25 करोड़ पीपल एग्जिटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड एंटरिंग द न्यू मिडिल क्लास. हाउ बिग एन अचीवमेंट वुड डू यू थिंक दैट इज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, शरद जी?
2: I think it's a huge achievement because 25 crore may be a very easy number to speak,
0: Yes.
2: but this number itself may be more than Anubha, the population of many of the countries around the
0: जी
2: world. और देखिए हुआ क्या कि पॉवर्टी इंडेक्स की जो डेफिनेशन बदला गया, यू नो वी चेंज द डेफिनेशन, बिकॉज आप पॉवर्टी को पहले कैसे डिफाइन करते थे, इतने रुपए रोज का। आई थिंक नीति आयोग केम आउट विद अ वेरी न्यू एंड अ प्रॉमिसिंग डेफिनेशन कि आपका अगर जीवन का स्तर सुधर रहा है, यू नो ऑन न्यूट्रिशन, ऑन हेल्थ, आपके पास घर नहीं है, टुमारो यू गेट अ हाउस, यू डोंट हैव अ वाटर कनेक्शन, नाउ यू हैव अ वाटर कनेक्शन, लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट द टॉयलेट्स व्हिच इज बीन,
0: यस
2: यू नो सैनिटेशन हैज बीन वेरी क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट, यू नो जंगल में और खेतों में जाके यू नो टॉयलेट का इस्तेमाल करना या वहां पर इधर उधर बैठ के, महिलाओं के लिए खासकर बहुत, सो आई थिंक नाउ देर आर टॉयलेट्स एट, सो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीड्स टू बी अंडरस्टूड अनुभव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट नॉट दैट अ पर्सन हैज अ वेरी ह्यूज बैंक बैलेंस बट ही इज एबल टू अफोर्ड and live a lifestyle which any other normal middle class lives. So I think that has been the paradigm shift in the way we look at poverty, because those people are financially fine. They may be earning whatever they earn, but today they have facilities which are probably being enjoyed by some of the people who lead a more prosperous life.
0: The facilities that are very basic facilities,
2: Absolutely.
0: Which is everybody's right and which should they should get.
2: No, but the thing is that me and you can call them basic, but for them it was a luxury at one point of
0: right.
2: time. And today they feel that these were the basic amenities which I was lacking. And it is thanks to the government schemes like Pradhan Mantri Awas
0: Ji.
2: Yojana, you know, the whole sanitation program which
0: Ji.
2: Has been done. You know, Arbab, before you move forward, I would like to highlight that for me as an economic analyst,
0: Ji.
2: The biggest takeaway, because there's a long list. In fact, if we just named all the developmental and welfare schemes, I think the next half an hour may not be enough. So biggest takeaway for me, because we are hardcore economic analysts, for me is the massive 100 lakh crore plus infrastructure spend. Because that is one, in economics we call it, Anubha, the trickle-down effect. That has impact har work ko samaj ke usne fayda pahunchaya. Aur middle class to usme aati, kyunki isse naukriyan bani hain, isse logon ki income. Aur main aapko bahut interesting baat bataun, jo Tandon sahab meri baat se agree karenge. Ke mujhse jab log poochte hain, kyunki hota kya, jab aapki zindagi mein ye sab ghatnayen ghatti rehti hain, welfare schemes, to you take it in your stead. Aapko lagta hai, theek hai, ye to hona hi tha. भाई ये तो मेरा हक है वगैरह वगैरह, ऐसे ख्याल आते हैं। पर बहुत अच्छा तरीका इसको देखने का क्या है, विच आई एम श्योर द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी वुड लाइक टू ड्वेल अपॉन एंड डीप डाइव, इज कि आप 2014 में जब ये सरकार आई थी 12 साल पहले, आप कहां खड़े थे? शायद लोगों की मेमोरी इतनी अच्छी ना हो, इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर के व्हाट आई यूज्ड टू अर्न, व्हाट वाज माय नेटवर्थ इन 2014, और आज आप कहां खड़े हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर, क्योंकि हम तो कैसे देखते हैं, बहुत आसान तरीका है, आई थिंक मिस्टर टंडन वुड अग्री, इन 2014 वी वर अ $2 trillion इकोनॉमी, सो इन 67 years फ्रॉम जीरो वी रीच 2 trillion, एंड इन द लास्ट 12 years वी रीच 4 trillion. तो अगर इकोनॉमी डबल हुई है, तो इकोनॉमी तो हमको और आपको मिलाकर ही बनती है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय पीपल लाइक अस, सो आई थिंक दैट्स अ बेटर वे टू लुक एट इट, एंड दैट फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे।
0: अशोक जी, मध्यम वर्ग की, जैसे कि भी शरद जी ने भी हमारे डिस्कशन की शुरुआत

0: कहा कि तीन सबसे बड़ी चिंताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और इन तीनों के लिए ही जरूरी है रोजगार और नौकरी। तो पिछले बीते 12 सालों में भारत सरकार ने जो तेजी से बढ़ती युवा आबादी है देश की, उसके लिए नौकरी और खासकर स्वरोजगार के अवसरों को जो दिए हैं, उनको जो उसके लिए पहल शुरू की हैं, जो उसके लिए कार्यक्रम करे हैं, उन्हें आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इन सब योजनाओं का आबादी को नौकरी, रोजगार या स्वरोजगार दिलाने में कितना बड़ा योगदान है?
1: मैं आपकी बात पर आने से पहले
0: जी
1: स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। मुझे
0: चलिए
1: लगता है
0: स्वास्थ्य
1: कि
0: बात करते
1: समाज
0: हैं।
1: में
0: जी
1: स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रोटी, कपड़ा और मकान है।
0: जी
1: और उस दिशा में जो आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 22 करोड़ से अधिक नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए, जैसे अभी बताया गया
0: जी
1: था। और आवास नल यानी पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से अधिक किफायती घर बनाए गए हैं। आपने रोटी, कपड़ा, मकान की बात
0: जी
1: की। वहीं जल जीवन मिशन के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण और अर्ध शहरी घरों तक सीधे जल से साफ पानी पहुंचाया गया है। और जैसे अभी बात हो रही थी, अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो जीडीपी के दम पर। लेकिन इसमें एक राष्ट्र एक टैक्स यानी जीएसटी, और ये जो
0: जी
1: इसमें जो सरलीकरण किया गया, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक सुधार था
0: जी
1: जिसने हमारे देश के बिखरे हुए टैक्स ढांचे को खत्म कर पूरे भारत को एक बाजार बना दिया। मैं अगर स्टार्टअप की बात करना चाहूँ तो हम देखते हैं कि इसके पीएलआई योजनाओं के सहयोग से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है,
0: जी
1: और जिससे इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में घरेलू जो इन्वेस्टमेंट है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है।
0: जी
1: तो इस तरह से और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं।
0: शरद जी, मैं अपने अभी जैसे अशोक जी ने बात की स्वास्थ्य की, पर मैं वापस आऊंगी जो हम नौकरी की बात कर रहे थे उसमें उन्होंने, और अशोक जी ने जो एक और बात करी स्टार्टअप जो इकोसिस्टम की, तो हम जब बात कर रहे थे कि जो सरकार की जो पहल थी, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनमें रोजगार मुहैया करवाने में, उनके लिए रोजगार क्रिएट करने में कितना बड़ा, और खासकर अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के लिए जो उसको इंकरेज करने के लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, उससे मिडिल क्लास की जो एस्पिरेशंस हैं उसको कितना प्रोत्साहन मिला है?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है अनुभव। देखिए, गवर्नमेंट यू नो एज एन एम्प्लॉयर, सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरियां हैं अनुभव, वो तो सरकार उतनी देगी। आप देखें,
0: जी
2: प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है, समय समय पर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रधानमंत्री जी खुद बांटते हैं।
0: बिल्कुल
2: पर इसमें यह ध्यान रखना होगा दैट गवर्नमेंट के नॉट एम्प्लॉय एवरीबडी इन द कंट्री। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन एनेबलिंग प्लेटफॉर्म वेयर इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो आपने स्टार्टअप का बात किया, आई वुड लाइक टू कॉमेंट ऑन दैट। टूडे वी हैव स्टार्टअप इंडिया, जब शुरू किया गया था, मुझे याद है 2016 की ये बात है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल सेड दैट स्टार्टअप इंडिया, यू नो पीपल हैव बीन डूइंग बिजनेसेस हियर फॉर टाइम्स इमेमोरियल, सो वॉट इज न्यू? येस, देयर वाज समथिंग न्यू, बिकॉज स्टार्टअप फोकस्ड ऑन इनोवेशन, स्टार्टअप फोकस ऑन न्यू आइडियाज, एंड दैट इज वेयर द यूथ ऑफ द कंट्री और द यूथ इंटेलेक्ट ऑफ द कंट्री गॉट एक्टिवेटेड। A lot of youngsters, and today, just on Startup India, there are 2 lakh plus registered startups. And you know, you will not believe that the employment provided by these startups today is 2.3 million plus people who've been employed. And government has created a startup fund
0: yes.
2: where, you know, because these startups look for funding and they've been looking at funding to private sources, these angel investors and so on. So here, government became an angel.
0: Right.
2: And I think the whole setting up of incubation centers, setting up of those places where these startups can get trained, I think that has done magic to this country. And today, I'm telling you, when from being job seekers
0: yes.
2: to being job creators, when I talk to a cross-section of youth today, what they tell me is that, yes, we want to work, not that, but we only want to work to gain experience. Once they gain experience, they want to be, you know, there is a flame burning inside every youth. Yes, I have to do something of my own. And I think this aspirational India is driving the growth of the country. You know, if 65% of our population, Anubha, is below 35 years of age, we are a very, very young country. And, you know, for everybody to find employment, you know, may not be possible in
0: yes.
2: the times to come. So if you become job creators, you just don't employ yourself. You create jobs for so many people around you. And, you know, we talk of Mudra Yojana. which was focused on women entrepreneurs, where government gives you a loan for up to a certain level, up to 10 lakh rupees, 5 lakh rupees, you borrow, you start. I've seen so many women entrepreneurs, you know, you'll be surprised, the participation of women in the mainstream economic activity in this country is not as high as men. We all know that. There are so many although I treat homemakers as a very, very active GDP.
0: In fact, actually,
2: we did an analysis recently which said that if the GDP of women homemakers, it's not counted in the GDP,
0: right,
2: but then they contribute very, very significantly. But then those women who've now joined the main economic mainstream, their percentage is between 30 and 35%. This Mudra Yojana has helped women come forward. And I see so many women entrepreneurs today, not just employing themselves, but they've got a big team who follows them, who are employed with them. So I think the vision of this government was to make sure that you don't chase rozgar, you also create rozgar for other people. That for me, and the whole taxation system and ease of doing business, I think that has helped the middle class. There was a time when middle class person used to think, "Main business kaise karungi? Ye to bahut mushkil hota hai. Company kaise banayenge? Fir sarkar itne sare taxes lagati hai. 17 taxes ko mila ke GST jab aaya, aur jab se GST 2.0 aaya hai, usne to aisa lagta hai GST ko, I mean, people have opened their arms and embraced it. पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ गया है।
0: आपने जीएसटी की बात की, और उससे पहले कि हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें, क्योंकि एक वो बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, एक ऐसा सेक्टर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो मध्यम वर्ग परिवार हैं उनके जीवन में बहुत ज्यादा फर्क आया है, बिकॉज यू नो सम पीपल थिंक दैट द मिडिल क्लास हैज बीन यू नो अनफेयरली बीन बर्डन विद टैक्स बर्डन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनकम टैक्स. सो इन द लास्ट 12 इयर्स व्हेन वी लुक एट द टैक्स रिफॉर्म्स दैट द मोदी गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड, इफ वी लुक एट द जीरो टैक्स लिमिट एंड वेदर लाइक यू मेंशन द जीएसटी, नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन of GST, but after that, last year we saw the GST 2.0 also. How have these tax-related reforms in the past decade impacted middle class? Sir Tandon, what would you say to that?
1: देखिए, इसमें एक और पहलू भी है
0: जी,
1: कि जो पेंशनर्स हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका भी महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाया जाता है उस महंगाई के इंडेक्स के साथ मिलाकर. तो टैक्स रिफॉर्म जो है, आपने जिनके जिक्र किया, उससे भी हम लोग अपनी मिडिल क्लास की बात करें, हम लोगों को 40-40, 50-50 हजार रुपए साल का टैक्स बचा है. तो हम भी मिडिल क्लास हैं सब लोग, तो ये जो लाभ मिला है मिडिल क्लास को, और जो टैक्स के बारे में जितनी भी बातें हुई हैं, तो ये सब कुछ मिलाकर अगर देखें तो मैं समझता हूँ मिडिल क्लास आज बहुत खुश है. और शायद मिडिल क्लास की 4-5 लेयर्स को भी अगर हैं, अपर मिडिल क्लास की अगर अभी बात छोड़ भी दें, तो लोअर मिडिल क्लास को मुझे लगता है सबसे ज्यादा फायदा होगा.
0: शरद जी, यू नो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टैक्स रिलेटेड रिफॉर्म्स, इट्स नॉट जस्ट द एग्जेम्पशन, यू नो दैट द एग्जेम्पशन लिमिट हैज, यू नो, इनफैक्ट चेंज 4 times, इट इज इंक्रीज 4 times सिंस 2014, बट इट्स ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स, इट्स द प्रोसेस ऑफ, यू नो, द ट्रांसपेरेंसी दैट हैज बीन ब्रॉट इन दिस होल प्रोसेस. सो वट वुड यू से टू दैट, हाउ हैज इट मेड द लाइव्स ऑफ द मिडिल क्लास, यू नो, मच ईजियर? एंड नॉट मोर that, would you say that the fact that the government has made the process so easy, and if we look at the number of ITRs filed, in fact last year more than 8 crore ITRs were filed, that's also showing the government, the Modi government's trust in the people, in their honesty, and it's a salute to the middle class.
2: All right, we call that a sabka vishwas. A government has gained that vishwas where people come forward and file the, and I'll give you a very interesting, you know, dynamics of this whole tax, you know, number which you spoke of. About 9 crore returns were filed. And, you know, the real taxpayers, the people who actually paid tax, they were about 3 crore or so. But then because it's mandatory to file the return, so people participated in that activity, people came forward, and they have now understood with 12,75,000 rupees of income for the first time in India is tax exempt. You know, we did a case study of a couple who were both earning, one was earning about 5 lakhs and the other was earning about 7 lakhs, about 12 lakhs of earnings. Now, they were not able to save for earlier for investments, for SIPs, for health insurance. Combined together, they saved tax about 1 lakh rupees. Now, this lakh of rupees is going into health insurance, is going into insurance, is going into their retirement planning as well. And, you know, it'll be unfair, Anubha, if when we talk of tax, and we don't talk of the tax savings made by GST. Somebody asked me that only 3 crore people in India pay tax. I said, no, every citizen of this country pays GST because that's indirect taxation. So this GST 2.0 has put money in the pockets of people. And because primarily we are a consumption-driven economy, 55 to 60% of our economy comprises of when me and you and Mr. Tandon goes and buy goods from the shopkeepers, from service providers. So I think that has taken a big boost. And in the current scenario, when global economy is facing challenges, It is the Indian consumption anubhav which is driving the growth of the country.
0: Let's move on to the next, you know, area which I think has impacted the lives of the middle class in a very significant manner, which is digitization. And we all know that Prime Minister Modi is a big votary of digitization. So what role has digitization played in the empowerment of middle class? Would you say that initiatives such as Aadhaar or even, you know, DigiLocker or even Umang, I'm just giving some few examples, that they have not only made public services

0: mobile and paperless, but they've also in a way deepened the trust of the people in the government systems. Mr. Kohli.
1: I think it has brought the banking system, Anubha, in the pockets of people.
0: Financial inclusion?
1: Absolutely. Jan Dhan Yojana, more than 56 crore accounts, and these were the people who probably thought that banks are always a dream for us. Yeah. You know, they used to keep their money, you know, under the mattresses and so today all that money is in the bank and a very substantial deposit is there. I think 25 lakh crore rupees every month, 300 lakh crore rupees of transactions happening in a year.
0: Yes.
1: I think this has been transformational, and a lot of countries around the world now want to emulate that example.
0: Absolutely.
1: So many countries have borrowed this fintech innovation from us and they want to go for it, from buying a roadside nariyal to probably making big payments at the hotels. Just about, I have a feeling, Anubha, as an economic analyst, that to my mind, this has added about a percentage point to GDP, which means just the UPI has facilitated our GDP in stepping up by about 100 basis points, which is a very, very significant value for that matter.
0: Ashok ji, aap kuch kehna
2: chahte hain? Yeah, main ye kehna chahta hoon ki ye Jan Dhan, Aadhaar aur mobile, ye jo jam ki tikdi hai, isne bicholiyon ko khatam kar diya hai. और इसके साथ साथ जो 1600 से अधिक पुराने और ऑब्सोलीट कानून जिनको हम कहते हैं उनको खत्म किया गया है. सरकारी नौकरियां हो, निचले स्तर में इंटरव्यूज को खत्म किया गया है. दस्तावेजों के सेल्फ अटेस्टेशन को शुरू किया है. ये सब भ्रष्टाचार को भी समाप्त करते हैं और सबसे ज्यादा इसका लाभ जो है वो मध्यम वर्ग को हुआ है.
0: जी, हम क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं और हम बात करें टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बात करना बहुत जरूरी बन जाता है. पिछले 12 सालों में सरकार के विभिन्न प्रयासों के चलते लगभग 98% गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है और तेज इंटरनेट के चलते ग्रामीण विकास में काफी तेजी आई है. उसे आप कैसे देखते हैं, और साथ ही साथ डेटा इतना सस्ता हुआ है पिछले 12 सालों में, और ये जो हमारी जिस तरह से तेज कनेक्टिविटी मिली है, इससे मध्यम वर्ग के विकास पर किस तरह का और कितना प्रभाव पड़ा है?
1: जबरदस्त प्रभाव पड़ा है अनुभव. आपने ऐसा लगता है जैसे इस मध्यम वर्ग की जो दुखती रग थी उस पे हाथ रख दिया, बिकॉज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा हमारे देश में है. और क्या कमाल इसने किया है कि इसने जो गांव और शहर के बीच में जो एक खाई हुआ करती
0: डिजिटल डिवाइड, जिसको
1: डिजिटल डिवाइड क्या लाइफस्टाइल डिवाइड था, बिकॉज दीस पीपल इन द विलेज, अनुभव, दे नेवर यूज्ड टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन. टुडे व्हेन I go to a village, I find the things they use, the way they talk, what they wear, the lifestyle they lead is pretty much like a normal town citizen. And there are so many learnings which are happening. Prime Minister recently made an appeal which said ki aap online classes lijiye. Kaise ye COVID mein hum karte, padhai ke likhai band ho jani thi agar ye connectivity nahi hoti. Bachchon ka koi nuksan COVID mein nahi hua. Aaj bhi Pradhan Mantri ji, hum apne videshi mudra bachane ke liye unhone kaha ki aap online classes lijiye. Kyun keh pa rahe hain? Kyunki unko pata hai ki uske peeche internet और डिजिटल कनेक्टिविटी की पावर आज है.
0: सरकार ने जो पिछले 12 सालों में काम
1: जो
0: किया,
1: काम किया है,
0: हमें
1: उसके आधार पर उन्होंने बोला, उनको पता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा और लोग वैसे ही लाभ उठाते रहेंगे. सो आई थिंक दिस होल्ड और वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर फॉर दैट मैटर, मुझे ऐसे लोग मिलते हैं अनुभव हु यूज्ड टू लिव इन से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, आज वो कई पहाड़ों पर जाकर रहते हैं और बहुत सुकून की जिंदगी जीते हैं, और शायद उनके एम्प्लॉयर को, उनके क्लाइंट्स को ये मालूम भी नहीं होता कि वो कहां बैठ के काम कर रहे हैं. दैट हैज बीन द मैजिक ऑफ डिजिटलाइजेशन.
0: अशोक जी, आप कुछ कहना?
2: मैं इसमें सोशल सिक्योरिटी का एंगल जरूर लाना चाहता हूं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और जो लेबर है, श्रमिक है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आई है और अटल पेंशन योजना आई है, ये ऐसी योजनाओं के आने से, और पीएम स्वनिधि योजना है, इसके जरिए स्ट्रीट वेंडर जो है, सड़क पर जो सामान लगाता है, रेड़ी खोमचा लगाता है, और उनको फिर से अपना काम करने के लिए कितनी आसान शर्तों पर जो है वो लोन दिया जा रहा है. तो इसी कड़ी में मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि 12 सालों में ये जो गुड गवर्नेंस का मंत्र दिया गया, सुशासन, और भारत के जो प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो सिद्धांत पर चलते हुए सरकार ने ट्रांसपेरेंसी लाई है, स्पीड लाए हैं और टेक्नोलॉजी पर जो जोर दिया है, ये गुड गवर्नेंस भी अल्टीमेटली हम देखें तो मिडिल क्लास को ही इसका लाभ हो रहा है.
0: We have seen in the last 12 years, since 2014, when NDA government under Prime Minister Modi, you know, came in power, we have seen that there's been a continuous focus on expanding and improving infrastructure. In fact, every year in budget, we've been seeing an increase in the allocation for infrastructure. So how has this improved the quality of life of the middle class and fast-tracked their economic prosperity?
1: Oh, it's done in a huge way, because we pick up anything. For example, highways. Any middle-class family traveling from one town to another, 8 to 9 hours, Anubha, for a 200 kilometer distance was a normal earlier. Now you cover that distance in 2 hours and 2.5 hours. Look at the time saved. And if you're using your own vehicle to travel, look at the wear and tear that you save. And why forget metros? The way metro has been expanded, Anubha, over the last few years, I have stories of somebody in Delhi or Mumbai, you know, who used to spend 2 hours to reach the workplace, 2 hours to come back. Today, that journey happens in 25 minutes. Look at the saving in fatigue which that commuter does. And Uran, Hawaii Chappal se Hawaii Yatra tak.
0: Bilkul.
1: Well, a plane journey used to be a dream for people. Ke hum sari umar mein sochta tha, kab main hawaii jahaj mein baithungi, baithunga. Aaj mujhe lagta hai, aap agar kisi bhi hawaii yatra mein jaye, aapko ek aam aadmi usme dikhega. Ab wo aisi luxury nahi hai.
0: Bilkul.
1: Chote-chote airports ko bana kar, unko connect kar dena. Aur chand minton mein ya ghante mein pahunch jana, jiske liye aap sari raat ki journey karte the. Aapko yaad hoga Rajdhani aur Shatabdi.
0: Bilkul.
1: Akeli trains hua karti thi, jo ki premium boli jati thi, jaldi pahunchna hai. Aaj Vande Bharat leke, aap kuch ghanton mein ek jagah se dusri jagah aur aise comfort mein pahunch rahe hain, which is of international level. The things we used to watch internationally, ke is train mein TV bhi hota hai, isme reclining seats hoti hain, aaj wo mujhe lagta hai aam aadmi ki pahunch mein. So I think this government has brought luxury, which used to be called earlier, as a comfort and necessity to the people of the country.
0: And you know, that brings me to my next question, kyunki aap jaise baat kar rahe ki infrastructure mein jo improvement hua hai, be it roads, be it railways, be it, you know, airports, jo expansion hua hai, to humne dekha hai ki hawai yatra mein jaise bhi aapne kaha ki bahut tezi se badhotri hui hai, Vande Bharat jaise hamare paas world class trains hain, jahan 2014 mein sirf 74 airport the, ab wo badh ke 160 ho chuke hain, 225 tak. Jo metro rail ka network hai wo 26 shaharon mein phail chuka hai. तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम कार्यक्रम के शुरू में हम बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग की चिंता होती थी रोटी कपड़ा मकान, पर अब जब उनकी ये बेसिक नेसेसिटीज काफी हद तक वो आराम से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पूरी हो रही है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा है, इसको जो फैल रहा है तेजी से, इससे मध्यम वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे अशोक जी? पहले आपसे
2: इसके लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बुनियादी ढांचे हो रहे हैं, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है, और इसीलिए एक सेक्टर में जो प्रगति हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब एक दूसरे को जानते हैं, उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उससे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और उसमें स्टार्टअप भी लगे हुए हैं, ये सब काम कोई सरकार अकेले नहीं कर रही है, चाहे वो हम सड़कों की बात करें या रेलवे की बात करें, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हो रही है वो भी मिडिल क्लास को बहुत फायदा कर रही है। अब देखिए ना, जब रेलवे का एक्सपेंशन हो रहा है तो हम देखें लाखों मजदूर उसमें काम करते हैं, तो ये कुल मिलाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जीडीपी में केवल हाईवेज और रोड 1% तो जीडीपी में वही बढ़ोतरी करते हैं। अगर आप सोचिए रेलवे को अगर ले लें और हम एयर ट्रैफिक वगैरह की बात करें, तो इस मामले में अगर देखें तो जो एक डेवलपिंग कंट्री के नाते भारत रहा है अब तक, उसकी पहचान है, वो अब बड़ी तेजी से डेवलप्ड कंट्री की ओर जा रहा है। इसलिए जो लक्ष्य रखा गया है कि हम 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, उसकी ओर देश तेजी से बढ़ रहा है।
0: शरद जी, आप क्या कहेंगे? हम जब बात कर रहे थे एस्पिरेशंस की, आकांक्षाओं की, अब मध्यम वर्ग का जो पिछले 12 सालों में हमने देश में विकास देखा है, आर्थिक विकास देखा है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन देखी है, हर तरह से जो हमारा देश प्रगति की राह पर एक बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है, उससे मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं पर कितना असर पड़ रहा है, और उनकी आकांक्षाएं जो पूरी हो रही है उससे देश की पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट पर कैसा असर पड़ रहा है?
1: आई थिंक द पॉइंट यू हैव रेज्ड, अनुभव, रिलेट्स टू विकसित भारत 2047, और अभी आपने जब बुनियादी ढांचे की बात करी तो उसमें हर एक रुपया जो बुनियादी ढांचे पर खर्च किया जाता है, ये एक आर्थिक सिद्धांत है, उसका 8 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। आपने कहीं सड़क बनाई, उसके आसपास अस्पताल आ जाएंगे, होटल्स आ जाएंगे, अपार्टमेंट्स आ जाएंगे, मॉल्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आ जाएंगे। देखिए, एक सड़क बनने से, और ये ऐसे मेरे पास अनेकों उदाहरण है देश के, अगर मैं कोई भी एक सड़क उठा लूं, तो मुझे लगता है कि ये जो विकसित भारत की यात्रा है पूरी, ये जो आपने एस्पिरेशनल इंडिया की बात करी, ये विकसित भारत की यात्रा में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि मुझे याद है एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, और अगर आप उस फिल्म को याद करें और आज उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें, ऐसा लगता है उस फिल्म को हम 300-400 साल पहले छोड़ के आ चुके हैं। क्योंकि जब लोग देखते हो कहते हैं ये भी जमाना था क्या, रोटी कपड़े मकान के बारे में सोचना पड़ता था? क्योंकि आज आप सोचते हैं कि आप हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप वर्ल्ड क्लास हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, आज आप सोचते हैं कि आप एक इनोवेटिव स्टार्टअप चला रहे हैं। तो मुझे लगता है वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे, Anubha, from where we were.
0: You know, when we talk about the middle class now, one segment of the middle class that I think we have to talk about and we should mention is the women. Women, you know, are the backbone of any middle class family. What in your opinion, in the last 12 years, the various schemes, the various initiatives that the Modi government has taken, how have they uplifted and empowered women, especially of the middle class women, which in turn, you know, have made the middle class much more prosperous? Ashok ji, aap batana chahiye.
2: Dekhiye, humne jitni bhi jan kalyan yojanaon ki baat ki hai, agar hum dekhenge to fayda to usse har vargh ko hua hai, lekin vishesh taur se mahilaon aur kisanon aur yuvaon se jude hue jo hain. Ab aap dekhiye, agar hum baat kare Pradhanmantri Ujjwala Yojana ki, to jo gareeb

0: परिवारों की महिलाओं को धुएं से जो मुक्ति मिली और उससे स्वच्छ ईंधन की उपलब्धि हुई और मुफ्त एलपीजी भी, ये तो सीधा सीधा मैं कहूंगा महिलाओं के ही कल्याण के लिए हुआ है। इसी तरह से हम जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें और सामाजिक सुरक्षा के लिए, तो मैंने पहले भी कहा है, तो महिलाओं के लिए आवास की योजना हमने बात की, टॉयलेट के बारे में बात की, तो ये सब योजना, आयुष्मान भारत ये योजना से भी जो 5 लाख का मुफ्त इलाज है, इसमें महिलाएं सबसे ज्यादा इनको भी लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी यही है कि जिसको हम वेमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तो उसमें लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, स्टार्टअप में बहुत महिलाएं हैं, तो हर क्षेत्र में महिलाएं जब सामने आ रही हैं और उनकी अगर स्वास्थ्य सुरक्षा जैसे वेमेन सिक्योरिटी है, तो ये चीजें जब आज तसल्ली होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बाहर आकर काम करेंगी और इन सब योजनाओं का लाभ उठाते हुए वो आज खुद भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू या अदरवाइज स्टार्टअप के थ्रू वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही हैं।
1: जी अशरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?
2: आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट हैज बीन द थीम ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड महिला सशक्तिकरण जिसको हम कहते हैं, और महिलाएं चाहे उनकी एजुकेशन की बात हो, बिटिया की पढ़ाई की बात हो, बिटिया की सुरक्षा की बात हो, मुझे लगता है यहां से सारा का सारा ये जो उत्थान हुआ है वहां से निकल कर आया। एंड टुडे वुमेन, एज आई सेड अर्लियर, दे आर इन द मेन स्ट्रीम, द परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर इन्वॉल्वड इन द मेन स्ट्रीम दैट इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इज अनुभव नॉट जस्ट हैपनिंग इन द टाउन। I find lot of women, as Mr. Tandon said, that you know, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वहाँ पर महिलाएं इकट्ठी होके कुछ बिजनेस शुरू कर रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बन गई है, जहाँ से बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए महिलाएं आगे आ रही हैं। और आप अगर देखें इसका रिजल्ट कहाँ दिख रहा है अनुभव, तो आप देखें कि जब भी रिजल्ट आते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के, वहां महिला कैंडिडेट सबसे आगे होती हैं। ये इस बात को बताता है कि सरकार ने महिला एजुकेशन को और महिलाओं के सशक्तिकरण को कितना सीरियसली लिया है। और हमारी आधी आबादी है, तो मुझे लगता है कभी भी उनके साथ भेदभाव तो कभी भी जस्टिफाइड नहीं था, पर आज जो विभिन्न स्कीम्स की वजह से महिलाओं के हम स्कीम्स गिनवाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है महिलाओं की स्कीम की, पर मुझे लगता है कि महिलाओं का मेन स्ट्रीम में आना, और अगर मैं एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट, अगर महिला काम नहीं भी कर रही है, मान लीजिए वो कहीं कमाई नहीं करती है, तो घर बैठे बैठे प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर हैं, महिलाएं इस बात को मानेंगी पहले उनके नाम किए गए हैं। आप देखिए कि घर में अगर पुरुष, खाली पुरुष है तो अलग बात है, पर अगर महिला है तो घर बैठे बैठे महिला सशक्तिकरण हो रहा है। महिला अपने पति को कह सकती है, देखिए ये घर मेरे नाम है, मेरा भी इस घर में उतना ही योगदान है। और मैं समझता हूं उसने महिला को एक कॉन्फिडेंस दिया है। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं महिलाओं के मामले में मानता हूं ये उनका कमाई के जरिए बनना, इन्होंने उज्ज्वला की बात करी, वो सब तो है ही है, पर मुझे लगता है महिलाओं में एक जो कॉन्फिडेंस आया है, और ये कॉन्फिडेंस आपको बताऊं सबसे ज्यादा मुझे कहां दिखा, जब प्रधानमंत्री जी ने महिला का पार्लियामेंट में बिल लाने की इस सरकार ने मुहिम छेड़ी, किसी वजह से वो नहीं पास हो पाया, पर सरकार की इंटेंट बताती है कि महिलाएं आधी आबादी नहीं है, महिलाएं ज्यादा शक्तिशाली आबादी भी हैं, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा रही है।
1: आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि हम अब तक बात कर रहे थे कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल में जो उन्होंने कदम उठाए उसका मध्यम वक्त में कितना फर्क पड़ा, कितना असर पड़ा, बट व्हेन वी लुक एट यू नो इन द फ्यूचर, लेट्स लुक एट द इन द फ्यूचर, इन द नेक्स्ट डेकेड वेयर डू यू सी द इंडियन मिडिल क्लास, वेयर इट इज गोइंग टू बी, एंड हाउ मच ऑफ अ मेजर फैक्टर विल इट बी इन इंडियाज डेवलपमेंट? अशोक जी,
0: देखिए जब हम बात कर रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मिडिल क्लास भी हम मान रहे हैं कि उसका सबसे ज्यादा उनको फायदा हो रहा है, तो यही मिडिल क्लास देश को प्रगति की ओर भी ले जा रहा है, और यही मिडिल क्लास ही देश को आज हम देखते हैं तो खेलों के मैदान में जो हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे मिडिल क्लास हैं। पहले हम सोचते थे कई खेल ऐसे हैं जो बहुत अमीर लोगों के खेल हैं, आज जो है स्मॉल टाउन से क्रिकेटर्स आ रहे हैं, हॉकी के प्लेयर्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि टेनिस के प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो ये सब जो विकास हो रहा है तो खेलों में हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे ओलंपिक वगैरह ये देखें, तो ये सब मिडिल क्लास का ही आगे बढ़ना है, और इससे आगे चलकर मिडिल क्लास वो भी ये जो विकसित भारत का सपना है उसमें मुझे लगता है सबसे ज्यादा योगदान यही मिडिल क्लास देगा।
1: शरद जी, अशोक जी ने गरीब और अमीर का जो अंतर है वो बहुत कम होता जा रहा है।
2: देखिए जब भी कोई अर्थव्यवस्था विकास की ओर बढ़ती है, डेवलप की ओर बढ़ती है, तो वो खाई अपने आप भरती जाती है। मैं मिडिल क्लास को पर्सनली 3 हिस्सों में बांटता हूँ, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास। तो मुझे लगता है इन तीनों को अगर हम मिला दें, आपका क्योंकि सवाल था कि हम भारत के विकास में इनका क्या योगदान रहेगा, मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में आएगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में आएगी, और अपर मिडिल क्लास शायद अमीर बन जाए। द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज, if you take in the world of sports, you take in the world of innovation, you take in the world of space, you take in the world of anything, I think the biggest success stories are coming from middle class.
1: Mr. Ashok Tandon, Mr. Sharad Kohli, thank you so much for joining us in Akashvani's special series on 12 years of Modi government.
2: It was a pleasure.
0: Thank you.
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल सुधार, सुशासन और जन कल्याण से सशक्त होता मध्यम वर्ग। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044। In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming middle-class lives through reform and welfare. Participants were Ashok Tandon, political analyst, and Sharad Kohli, economic analyst. Moderator was Anubha Rohatgi. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on Air. This program is also available on our YouTube channel, News on Air Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
4: രാഘവാണി ദേവികുളം സ്പൈസ് എഫ് എം.